शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। हम लोग इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं अपने को समझने की, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म को समझने की, अपनी जिंदगी को जीने के एक अंदाज को समझने की। कुछ लोगों ने इसको बहुत गहराई से समझा, किस तरीके से हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं चैती मैम। बाकी जाहिर से बात है, जैसा हमेशा हमारे प्रोग्राम्स का सिग्नेचर रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान आपसे खुद ही बात करें, सम्मुख आएं। तो चैती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, वेलकम करते हुए मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी सुबह सुनने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं आज इस दिव्य दर्शन प्रोग्राम को सुनने के लिए, उनको थोड़ा बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं मैम?
1: जी, मेरा नाम चैती है, मैं नोएडा रहती हूँ और मैं करीबन समझ लीजिए 60 ईयर्स के करीब हूँ मैं, और मेरा काम बेसिकली पढ़ाई है, टीचिंग है, पढ़ाना है, खुद पढ़ना है, अभी थोड़ी सी ज्योतिष का चर्चा कर लेती हूँ, और लाजी मेरा काम है साहित्य का, मतलब स्पिरिचुअल टेक्स्ट पे मैं पढ़ती रहती हूँ, मुझे पढ़ना पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत खूब, तो हमें जाहिर से बात है कुछ गहराई मिलने वाली है इस कंटेंट के बारे में दोस्तों। मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनली मानना है कि हम ऊपर से यानी कि ब्रह्मांड से बहुत कुछ सीख कर आते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, फिर वो चाहे धार्मिक हों, चाहे समाज को समझने वाले कुछ लोगों ने लिखे हुए हों, उनको समझकर हमारी समझ और बढ़ती ही है। चैती मैम उस चीज़ में ठीक से पारंगत हैं, डूबी हुई हैं, लगातार अध्ययन कर रही हैं। तो चैती मैम, चलिए हमारी मदद कीजिए समझने में कि हम अपना जीवन इस धरती के ऊपर, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा, मतलब कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पर्शिया, कुछ नहीं, नथिंग। हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो कुछ नियम कानून या कह लीजिए बाउंड्रीज हमारे समाज हमको दे देता है कि देखो ऐसे जीना तो आपका जीवन सुखी रहेगा, उसको हम आध्यात्म कह देते हैं या शायद धर्म कह देते हैं। तो आपके हिसाब से जितना भी जानकारी आपके पास है, जितना भी आपने इन चीजों को समझा है, हमें आध्यात्म और धर्म के बीच का अंतर बताइए ना मैम।
1: धर्म है रहने का तरीका, धर्म किसी विशेष एक संस्था का नाम नहीं हो सकता। धर्म मतलब जो हमारे ऊपर ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दिए गए हैं, चाहे वो शास्त्रों के द्वारा हो, चाहे वो समाज के द्वारा हो, जिस भी स्थिति में हम हैं। अगर मेरी उम्र मान लीजिए 10 वर्ष की है,

0: फर्क आज हमें थोड़ा सा और क्लियर होने के बाद और साफ होने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे मैम कि आध्यात्म की प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास उसका हम कैसे करें और धर्म का अभ्यास कैसे करें, थोड़ा का दोनों को थोड़ा सा अलग अलग बताइए ना। 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे नियम जो हमें आसानी से समझ में आ जाए और हम आसानी से अपना सकें।
1: देखिए, धर्म के जो 1, 2, 3, 4 नियम होते हैं वो हमारे बड़ों से बूढ़ों से पता चल जाते हैं। जैसे कहते हैं सत्य बोलो, जैसे कहते हैं मेहमान आते हैं उनका स्वागत करो, जैसे कहते हैं झूठ मत बोलो, जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनको धर्म के रास्ते में माना जाता है। हम अक्सर इसी को मानते हैं धर्म, कि चोरी नहीं करो, सत्य कहो, किसी और के धन को अपना धर्म धन मत कहो। फिर जो साफ सफाई है, जो शरीर की सफाई है, जो मन की सफाई है, उन सबको धर्म में मानते हैं। और अध्यात्म वो हो गया उसको प्रैक्टिस करने का तरीका। प्रैक्टिस कैसे करते हैं? अपने मन के सफाई से, अपने मन की सच्चाई से, जब हम जीवन की क्रिया को सतह ले लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करते, जो जैसा आता है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन की सफाई, मन की सच्चाई के ऊपर खास ध्यान देते हैं, मन में शांति रहे, और उस शांति से ही हम जीवन में बर्ताव करते हैं, सबके साथ हम यूनिफॉर्म बर्ताव करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर नीचे का फर्क नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं और उसकी जरूरत भी है। टोपी को टोपी की जगह रहते हैं, जूते को जूते की जगह लगाते हैं, उन सबकी इम्पोर्टेंस को हम बरकरार रखते हुए हमारी अपनी जिंदगी और साथ में सामने वालों के, हम अपने साथ सबको लेके अकेले चलने चलने का मतलब धर्म नहीं होता, सबको साथ लेके चलने का मतलब धर्म होता है, लेकिन उसमें अपनी प्योरिटी, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्लैरिटी लाना, वो अध्यात्म है।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत प्यारी बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिससे हम अध्यात्म को और धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। चैताली मैम, ठीक है, आपने तो इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स या स्क्रिप्चर्स या मतलब जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड आपने काफ़ी सारा कंटेंट स्टडी किया है, फ़र्ज़ कीजिए आज आपसे बातचीत करके मेरा मन हो आए कि चलिए मैं भी थोड़ी सी स्टडी करता हूँ, कोई एक बुक पढ़ता हूँ, कोई एक, तो समझिए मैं बिल्कुल एलिमेंट्री क्लास में एक छोटा सा बच्चा हूँ जो अध्यात्म या धर्म या इस पूरी विधा को सीखना चाहता हूं, तो मुझे कुछ किताब या कोई ग्रंथ या कोई चीज सजेस्ट कीजिए ना।
1: सबसे पहले तो जो संत हमारे देश में हुए हैं ना, और केवल हमारे ही देश में नहीं, विश्व ब्रह्मांड में जो भी संत हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़ें, क्योंकि वही हमारे रास्ते में बन, जो हमारे रास्ते बने हैं वही हमारे मार्ग प्रदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक वही है। उनके जीवनी को पढ़े, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद जी हो, या चाहे वो अपने ही हिंदू धर्म के कोई भी संत हो, और हमारे हिंदू धर्म के तो संत या किसी भी धर्म के संत हर गली, हर मोहल्ले में, हर प्रांत में मिल जाते हैं, हर भाषा में मिल जाते हैं। उनको अगर हम सही ढंग से पढ़ के केवल उन्हीं की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे हम स्वामी विवेकानंद को ले लें, चाहे हम गुरु नानक को ले लें, संत ज्ञानेश्वर को ले लें, या लालदेव को देख लें, किसी भी प्रांत से उनको देख लें, उनसे शुरुआत करें, तो पता चलता है उनकी जीवनी कैसी रही होगी। उनके हिसाब से अगर हम जरा जरा सी बात को लेकर चलने की कोशिश करें तो हम हमारे पथ की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हम धीरे धीरे कदम चढ़ाते, छलांग नहीं मारनी होती, धीरे धीरे। तो यही तो मेरे समझ में, इन इन संतों की जीवनी को पढ़ के ही हम अपने लिए अपना मार्ग बना सकते हैं।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो जाहिर सी बात है, बहुत एलिमेंट्री लेवल पर अगर हम इस दिशा में बढ़ने की कोशिश करें, तो जैसा मैम ने कहा है कि बहुत ज्यादा मतलब गूढ़ ग्रंथों में घुसने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रबुद्ध लोग हुए हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, गुरु हैं, जिन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, उनकी जीवनी ही पढ़ लें तो वहीं से हमें शुरुआत मिल जाएगी।
1: जी
0: बहुत बढ़िया बात कही। तो मैम चलिए आगे बढ़ते हुए, देखिए मैं बड़ा स्वार्थी किस्म का इंसान हूँ, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आपने जितने भी स्टडी करी, आपने जितने भी पढ़ाई करी ना, उसका फायदा बस मुझे 5 मिनट में मिल जाए। आपने तो सालों साल लगा दिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस

0: मिनट में मुझे मिल जाए। तो मेडिटेट करने का, ध्यान लगाने का, गुम हो जाने का, शून्य में चले जाने का, किसी भी व्यक्ति से घृणा ना करने का, गुस्सा ना करने का, सिंपल से तरीके बताइए ना मैम। तो मुझे लगता है मेडिटेशन करें तो चलो जी माला फेर लेता हूं आंखें बंद करके तो शायद कुछ शांति मिल जाएगी, तो ये कितना सच है मैम, और कोई रास्ता बताइए ना।
1: जी ऐसा है, मेडिटेशन एक प्रक्रिया है
0: जी।
1: जैसे हम खाना बनाए हैं तो खाना जब परोसा जाता है उसके पीछे एक प्रक्रिया है। हम सब्जी लेके आते हैं, उसको धोते हैं, उसको गैस पे चढ़ाते हैं, उसको पकने के लिए टाइम देते हैं। मैं अगर आलू लेके और आलू की सब्जी बनाऊं तो एकदम से मैं उसको टेबल पे नहीं ला सकती, उसके लिए उसमें गर्मी देने की जरूरत होती है, उसको ताप से उसको पकाया जाता है, मसाले से उस पे वो जो लेयर बनता है वही तो फिर फाइनल डिश बन के आती है। उसी तरह से जब मेडिटेशन करते उसके पहले कोई प्रेपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम सारे दिन में हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने माइंड को देखें, तो हम दुनियादारी में इतने फंसे पड़े हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, और कहाँ हम थोड़ी सी ग्रीड कर लेते हैं, कभी हम झूठ बोल के अपने ही स्वार्थ के लिए काम कर लेते हैं, इन चीज़ों में फिर अगर हम इसी में उलझ के रह जाते हैं, उसके बाद लगता है हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो मेडिटेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। मेडिटेशन के पहले भी जैसे योगा करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, हर प्रक्रिया के लिए जैसे एक सिस्टम बनता है, मेडिटेशन के लिए भी वैसे एक सिस्टम है। और वो सिस्टम क्या है, हम एटलीस्ट दिन में अगर हम 8 घंटे 10 घंटे हम जगे हुए हैं, 10-12 घंटे हम वेकिंग स्टेट में हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें कैसी हमारी दिन की दिनचर्या है, क्या क्या काम करते हैं और उस काम के पीछे हमारा मकसद क्या है। जब उस मकसद को हम सब अच्छे से समझ लेते हैं, फिर शांत होके बैठते हैं और शांत होके उन चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। छिपाना नहीं, अपने आप को अपने ही मिरर में देखना है। मेडिटेशन तो वो हुआ ना, शून्य में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम शून्य में बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। शून्य में अपने आप के हम अपने आप तो रहते ही हैं, उस अपने आप की पहचान होती है उस शून्य में। जो हमारे सामने आईना है उस आईने में हम अपने आप को देखते हैं बिल्कुल आंखों में आंखें मिला के, छिपा के नहीं, और वो जो सच्चाई नजर आती है वो है मेडिटेशन मेरे हिसाब से।
0: बहुत खूब मैम, थैंक यू सो मच। सिंपल सा मेथड है मेडिटेशन, लेकिन उसको समझ कर करना, तो जैसे मैम ने बताया ना, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से कि भाई आलू काट के हमने पकाने के लिए चढ़ाए, लेकिन इमीडिएटली उसको टेबल पर थोड़ी ला पाएंगे। सो वी गॉट टू बी रेडी, थोड़ा सा पहले से प्रिपरेशन करके तब करेंगे ना। अब मैंने सोचा माला हाथ में आ गए और फटाफट मैंने दाने घुमाने शुरू कर दिए और मैं शांत हो जाऊं। नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस, नो इट डजंट। सो देयर इज अ प्रोसेस। बहुत खूब मैम, यहां पर हम लोग एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं, और फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास।

बहुत सुंदर मैम, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हमें थोड़ा सा और गाइड कीजिए मैम। देखिए जमाना ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं ना मैम, दिव्य दर्शन प्रोग्राम है, अपने को समझने का, धर्म को समझने का, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने का वगैरह वगैरह, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस जमाने में टुडे, जो कि मतलब डिजिटल इरा कहा जाता है। अब मतलब आउट ऑफ द प्लेस ना हो जाए हम लोग बाहर, मतलब ऐसा ना हो कि जी हम पता नहीं कौन से प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम रह तो इंडिया में रहे हैं या इस धरती पे। तो इस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड

0: को या डिजिटलाइजेशन को यूज करते हुए हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और किस तरह से अवेयर हो। और फिर मेरा मानना यह है कि ज्ञान अगर आपके पास है तो उसे बांटिए, बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से कभी बढ़ेगा नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो डिजिटलाइज वर्ल्ड को यूज करते हुए इस ज्ञान को मैम कैसे बांटा जाए?
1: देखिए डिजिट हर जेनरेशन को कुछ ना कुछ जरूर मिला है। पहले वाले जेनरेशन में कुछ नया तरीका था, आज के जेनरेशन में कुछ और तरीका है। डिजिटलाइजेशन फैंटास्टिक है, कितने ही लोगों तक पहुंचने की कोशिश है, कितने ही लोगों को एक पेज पे लाने की कोशिश है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बाहर की तरफ देखना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने अंदर झांक के देखना। और अपने अंदर झांक के देखने में और अगर डिजिटलाइजेशन को ही इस्तेमाल करना है तो स्प्रेड दैट हैप्पीनेस, स्प्रेड दैट जॉय। आज के जमाने में जो हो रहा है वो कभी कभी लगता है खून खराबा, बेचैनी लोगों में, एक अस्थिरता कुछ ज्यादा ही है। उसको थोड़ा कम करके अगर अपने पे ही ध्यान देना है तो थोड़ा रुकने की कोशिश करते हैं। कल मैं कहीं गई हुई थी, वहां पर लिखा हुआ था पॉज, टेक अ ब्रेक, ब्रीद। ये चीजें कहीं हम भूल रहे हैं, अपने ब्रीदिंग को ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो इस सोशल मीडिया को, डिजिटलाइजेशन को साथ में रखते हुए हम अगर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं दैट वी कैन पॉज, वी कैन ब्रीद, वी कैन स्प्रेड हैप्पीनेस। हमेशा जरूरी नहीं है कि हम अस्थिरता को ही फैलाएं, लैंग्वेज पे अपनी दखल रखें और वहीं से तो शुरुआत होती है। हम अपने जो भी थॉट्स होते हैं उसको तो हम लैंग्वेज में ही प्रकाशित करते हैं। हमारे थॉट्स को देखने के लिए लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता है। अपने शब्दों पे पहले देखिए, अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में देयर आर पीपल जो बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग करते हैं और एक पर्टिकुलर किस तरह के लोग होते हैं जिनमें भाषा में दखल नहीं होती, सोच का फर्क पता चलता है और उस सोच से ही हम चेंजेस ला सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया तरीका है, सोशल मीडिया से ही तो ये चेंजेस आने के लाने के संभावनाएं हैं, तो वी कैन रियली टेक इट। पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये शुरू घर से होता है, बाहर से नहीं शुरू होता। घर में जिस तरह का माहौल होता है वहीं से बच्चे पल के बड़े होते हैं, वहीं से वो आगे बढ़ते हैं। तो घर का माहौल अगर सही है, हमारे आपस के जो जुड़ाव है, अपने जो कम्युनिकेशन है उसमें क्लैरिटी है तो आगे भी वही सोशल नेटवर्क है क्या? अपने ही चीजों को तो बाहर दिखाना होता है, उसी को अगर हम मार्जित परिपक्व के हिसाब से दिखाएं, इट विल बी अ वंडरफुल डोमेन, वंडरफुल प्लेटफॉर्म।
0: आई फुल्ली एग्री विद यू मैम, आई फुल्ली एग्री विद यू। आपने जब अभी बात कही ना पॉज की एंड ब्रीथ की, तो डिजिटल मीडिया से ही रिलेटेड मेरे को एक दिमाग में आ रहा था। मैं भी मैम ऐसा नहीं है कि इनोक्यूलेटेड हूं और सोशल मीडिया वगैरह से बिल्कुल डिटैच हूं, ऐसा नहीं है। आई वाज आल्सो वाचिंग अ रील, तो उसमें एक जानवर दिखाया गया था, वेरी फनी, चेहरा, सिर्फ चेहरा और कोई डायलॉग नहीं, नथिंग, जीरो, बट दैट एनिमल वॉज एक्चुअली जस्ट लुकिंग एट यू, मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन आपको वो उसमें टकटकी लगा के देख रहा था। एंड लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, अप्रोक्सीमेटली कह लीजिए 10-12 सेकंड, उसके बाद लास्ट में नीचे लिख कर आया जस्ट ब्रीद। आई केप्ट ऑन वॉचिंग दैट कि अभी कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, एंड नथिंग हैपेंड और नीचे लिख के आया जस्ट ब्रीद। आई मीन आई रियली लव्ड इट कि जिसने भी इस चीज को बनाया उसने क्या सोचा, हाउ ब्यूटिफुली थॉट कि यार लोग सांस लेना ही भूल जाते हैं 30 सेकंड्स के इंतजार में, तो रिलैक्स, टेक अ पॉज, जस्ट ब्रीद।
1: अच्छा, एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज मैं बहुत घूमती रहती हूँ, जो चीजें जो हम भूल गए, किताबें पढ़ना, अपने दिमाग प्रॉपर इस्तेमाल करना। जो मान लीजिए 40 साल पहले की अगर बात करें, 50 साल पहले डिजिटलाइजेशन जब इतना नहीं था तब लोग किताबें पढ़ते थे। वापस से अभी कई कंट्रीज में किताबों का दौर नए सिरे से चल पड़ा है कि किताबें पढ़ो। और अपनी इमेजिनेशन को तैयार करो। डिजिटलाइजेशन बुरी बात नहीं है, उसी को डिजिटलाइज करें ना, उसी पे काम करें। वंडरफुल कि डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में अपनी इमेजिनेशन को भी कहीं ना कहीं बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें। इट इज जस्ट नॉट आई मी माई सेल्फ, इट इज अस टुगेदर।
0: दैट्स वेरी राइट। आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू मैम कि आपने ये चीज मेंशन की। एक बात मेरे दिमाग में अभी अभी आ रही है जो अभी अभी मैं आपसे बात करता हूँ, तब तक हम लोग एक भजन सुन लेते हैं मैम, तब मैं वापस आता हूँ।
1: जी बिल्कुल।

0: थैंक यू सो मच मैम. तो दिमाग में मेरे ये आई थी, आपने बातें किताबों की की, अब ये किताबें जो हैं मेरे भी दिल के बहुत बहुत ज्यादा नजदीक हैं, और मैं कुछ सच कहूं सनकीपन के लेवल पर जाकर दुखी हो जाता हूं कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं. तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेंज और आउट ऑफ द बॉक्स, या कह लीजिए थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर करने लग जाता हूं मजबूरी में. फॉर एग्जांपल, मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूं और जैसे कहीं पर भी होता हूं, देखता हूं 99% लोग फोन में घुसे हुए हैं, और वहीं पर मुझे कोई व्यक्ति या कोई लड़की या कोई बच्चा, कोई भी बंदा बुक पढ़ता हुआ नजर आ जाता है.
1: जी.
0: बहुत रेयर होता है वैसे ऐसा, लेकिन ऐसा हो जाता है तो मैं उनके पास जाता हूं. ऑटोमेटिकली मैं रोक ही नहीं पाता अपने आप को, उनके पास जाता हूं, सिर्फ इतना ही कहता हूं, एक्सक्यूज मी, आई वुड जस्ट लाइक टू कंग्रेचुलेट यू, थैंक यू सो मच, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं इतनी भारी भरकम भीड़ में, यू आर द ओनली वन हु इज रीडिंग.
1: जी.
0: प्लीज कंटिन्यू.
1: जी.
0: तो वो जो भी होता है वो पहले तो बड़ी अजीब सी निगाहों से मुझे देखता रहता है कि ये क्या क्या बोल रहा है ये. लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है.
1: इतना ही रेयर हो चुका है ये किताब, कि जो किताबें आजकल अगर आप किताबों की दुनिया में जाएं, किताबें वही हैं, किताबें भी बन रही हैं, बट somehow हम लोग ही उस तक पहुंच नहीं पाते हैं. हमको लगता है डिजिटलाइज रील्स और ये चीजें इतना फास्ट मूविंग है कि दिमाग को पॉज करने का हम लोग टाइम नहीं देते.
0: जी.
1: तो उस पॉज के लिए भी, जैसे आप बात कर रहे थे मेडिटेशन की, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अपने पे समय लगाने की आध्यात्मिकता की, उस पॉज में हमको भी देखना है. तो जब किताब पढ़ते हैं अपनी इमेजिनेशन को भी देखते हैं, किताब को बंद करके थोड़ी देर केवल शांत रह के उसको भी सोचने को, वो भी तो बेटर.
0: तो मैम ऑफ कोर्स जहां तक किताबों की बात चल पड़ी है, मुझे तो ऐसा लगता है मैं किताबों के बारे में बात करता ही रहूं, करता ही रहूं, करता ही रहूं. मुझे ठीक से याद पड़ता है मैम, एक मेरे जब मैं कॉरपोरेट में काम करता था तो एक हमारे सीनियर थे, वेरी नाइस पर्सन, स्टिल ही इज देयर. उन्होंने मेरे को एक बुक दी, वेदांता. इट वॉज ऑफ कोर्स नॉट अबाउट एनी गॉड इन पर्टिकुलर, वेदांता. तो वो बुक मेरे पास कई सालों तक रखी रही. दो तीन बार मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्लिष्ट थी कि मेरे सर के ऊपर से निकलती थी.
1: जी.
0: खैर कुछ वक्त गुजरा, वही कहते हैं ना कि जब जिस वक्त आप उस चीज के लिए एलिजिबल बनते हो तभी वो ज्ञान आपके पास आता है, उससे पहले नहीं हो सकता. तो वक्त आया, उस बुक को पढ़ा, अचानक वो बुक समझ में आ गई और अमेजिंग थी. तब मैंने आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट मैंने उनको फोन उठाया, कॉल किया और उनको थैंक यू बोला. मतलब इस बात में शायद 5-6 साल निकल गए होंगे, और वो भी थोड़े से शॉक्ड हुए कि इतने साल बाद तुझे याद आ रही है.
1: जी जी. मैंने जी. सर
0: अब क्या करूं, आपने जो ज्ञान मुझे दिया था वो अब मुझे मिला है. तो तो ये चीज मैं बतला के आपसे पूछना चाह रहा हूं मैम, कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताइए ना, कुछ दो तीन किताबों के नाम लीजिए, सो दैट वी कैन, वी ऑल जो भी हमारे लिसनर्स हैं वो कोशिश करें उनको पढ़ने की. आपने
1: देखिए बहुत
0: बायोग्राफीज के बारे में तो बता ही दिया, आगे बढ़े.
1: जी जी. एक बहुत सिंपल किताब है, हालांकि अक्सर लोग शुरू करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, पर शुरू किया था गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा.
0: ओके.
1: बहुत सिंपल किताब है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि श्री रामकृष्ण थे बिल्कुल ही गांव से उठे आने वाले एक सज्जन, लेकिन वो बिल्कुल ही चरम आध्यात्मिकता की बात करते थे.
0: ओके.
1: लेकिन इतना सिंपल, इतना इजीली डाइजेस्टेबल, इतना इजीली असिमिलेबल कि कोई भी उसको उठा के पहले अगर पढ़ ले, क्योंकि उसकी रेपिटेटिव पढ़ाई की जरूरत होती है. इट्स लाइक स्टोरी बुक, एक किताब ले लें, एक कोई भी एक स्टोरी बुक ले लें, हम 10 साल पहले पढ़े, आज पढ़े, 10 साल बाद पढ़े, कितनी ही नई चीजें निकल के आती है. और गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण एक ऐसा ही एक ट्रेजर है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बिगिनर्स जर्नी है, उसी तरह से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण बिगिनर्स जर्नी है एंड एडवांस जर्नी है. हम वापस वहां पर भी जा सकते हैं. इट इज दैट ब्यूटिफुल.
0: That is beautiful. I understand, ma'am. इंसिडेंटली एंड फॉर्चुनेटली कह लीजिए, एंड कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी मैंने पढ़ी है कोई टाइम पहले, दो ऑफ कोर्स इट इज़ देयर इन माय माइंड, इन माय सबकॉन्शियस माइंड समवेयर. अभी मैं याद करने की कोशिश करूँ उसमें तो दो तीन चीज़ें मुझे याद आती हैं, बट स्टिल दूसरी जो बुक आपने बताई है गॉस्पल ऑफ रामकृष्णन,
1: जी श्री रामकृष्णन,
0: दैट इज़ वन मोर ब्यूटिफुल बुक. दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इस बुक को ले सकें तो देर वुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स विच एक्चुअली कुड बी मोर क्लियर इन अवर हेड. भाई जाहिर सी बातें इन संतों ने कुछ समझा था, और क्योंकि वो पूरी पूरी दुनिया को चीख चीख के बता नहीं सकते थे, बिकॉज तो उन्होंने उसको लिख दिया
1: जी.
0: हम वहां से वो शिक्षा ले सकते हैं. बहुत खूब. चलिए मैम जरा सा एक छोटा सा ब्रेक और एक प्यारा सा भजन, फिर मैं वापस आ जाऊं.
1: जी बिल्कुल.

0: बहुत सुंदर मैम। तो बस मैम आगे बढ़ते हुए अब एक चीज के बारे में और गाइड कर दीजिए, आप भी इस दुनिया में हैं, हम लोग ने डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में बात की, मैं भी हूं, हमारे सब दोस्त भी हैं, और चुपके चुपके धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ने अब लोगों को जरूरत महसूस होने लगी है कि साहब कुछ मेथड होना चाहिए जो शांति दे। हम एक दूसरे से बड़ी नफरत करने लगे हैं, सड़क चलते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुंह बिचका लेते हैं, गाड़ी काट लेते हैं तो गाली दे देते हैं, बट नाउ हो गया बहुत, हमें अब शांति चाहिए। तो आपको क्या लगता है मैम, आने वाले समय में आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी इसका क्या रूप होगा?
1: अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी जो पहले था, जो अब है, जो बाद में रहेगा, उसका स्वरूप सेम रहेगा। वो पहले भी सेम था, वैसे ही आज भी है। और जो आप कह रहे हैं शांति की तरफ, पीस की तरफ अगर लोगों की पहचान हो सकती है, तो पहले तो जो चीज जो सबसे पहले जो आता है, एक्सेप्ट व्हाटएवर इज कमिंग अक्रॉस विद अ स्माइल। हम फ्राउन करना भूल के थोड़ा सा अपने आप, केवल जरा सी बात तो है, स्माइल अ लिटिल मोर, इट इज अ नेचुरल मेकअप, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता
0: जी।
1: अगर राह चलते हुए किसी को देख लिया, एक सिर हिला के गुड मॉर्निंग बोल दिया, नमस्कार बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, उसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करके, और आसपास जितने भी हमारे लोग हैं, जिससे भी मुलाकात होती है, थोड़ा सा उनको जैसे वो हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, तो एक्सेप्टेबिलिटी से मन में पीस आता है। अगर आप दिल्ली के सड़कों में देखें, सबको जल्दी है, रोड रेज दिल्ली में सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी को टाइम नहीं है, हो जाता है, सड़क पे चलते चलते गुस्सा हो जाता है। शांत रहें, और शांत रहने का तरीका तो खुद से आता है। अब ऑब्जर्व द ब्रीदिंग, इमीडिएटली मन शांत हो जाता है। कीप योर टंग जस्ट बीच में लेके, थोड़ा सा टंग को रोल्ड अंडर की तरफ करके, पॉज फॉर फ्यू मिनट्स, टंग को पैलेट में लगा के पॉज फॉर 3 मिनट्स, मन इमीडिएटली शांत हो जाएगा। पानी, एक ग्लास पानी पी लें, मन शांत हो जाएगा। कितने ही तरीके हैं मन शांत करने का।
0: वाओ, बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आगे बढ़ती हुई जमाने में, तेज रफ्तार जिंदगी में, थोड़ा सा पॉज लीजिए, मतलब थोड़ा सा ब्रीद कीजिए, जैसा मैम ने बताया, हल्का सा एक ग्लास पानी पी लीजिए, अपने जीभ को यू नो ट्विस्ट करके पैलेट पे लगाइए। देखिए, प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, कोई भी मेथड आपको अच्छा लग सकता है, सो ट्राई, ठीक है। फिर इसके बाद खो जाइए अपनी रीलों में, मैं मना नहीं करता, लेकिन पूरे दिन में 2-4-5 सेकंड तो हम अपने को दे सकते हैं ना दोस्तों। ओके, चैति मैम, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपने आई, और बिल्कुल प्रैक्टिकल हम लोग ने बातचीत की, कोई थियोरेटिकल नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल जो आज की समय में संभव है ना, डिजिटलाइज वर्ल्ड को जो वो फोन लेकर हम हाथ में घूमते रहते, उसके साथ साथ जो संभव है उसके बारे में हमने बात की। बस चलते चलते जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, कुछ एक संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए जो दिल से निकला हो आपके और हमारे दिल तक पहुंचे।
1: एक सर जरा सी बात है, स्माइल अ लॉट मोर, वो स्माइल हाथों से सेवा, आंखों से प्यार, और लोगों को एक्सेप्ट कर लीजिए जैसे वो हैं। किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, इतना ही तो होना होता है। कंपटीशन है कहाँ, कंपटीशन अपने इनसिक्योरिटी में है, इनसिक्योरिटी को साइड करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्यार अपने आप हो जाता है, दुनिया से प्यार हो जाता है।
0: वाओ, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दिल मेरा बहुत हल्का हो गया है, मुझे ऐसा लगता है हमारे दोस्तों को भी बहुत बहुत शांति मिली होगी, कुछ रास्ते दिखाई दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, बहुत दिल से धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है बुलबुल।

बाल गीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल, आलेख डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर कुक्कू माथुर, अनुजा विसारिया, देवाशीष और बच्चे, ध्वनियांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन उपेंद्र नाथ, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: यह है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
0: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए,
0: कहिए कहिए ना।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी तनुषा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और लेकर आई हूं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड बातें इधर की उधर की। आज की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी मक्खी से, जिसे हम आम तौर पर देखते ही हाथ हिलाकर भगा देते हैं। हां जी, मैं बात कर रही हूं हनी बी की, एक छोटी सी मधुमक्खी। लेकिन जरा सोचिए, इतनी छोटी सी जान, इतना छोटा सा दिमाग, और फिर भी पूरी की पूरी कॉलोनी को कैसे पता होता है कि कब क्या करना है, कौन खाना ढूंढेगा, कौन छत्ता संभालेगा, कौन बच्चों का ध्यान रखेगा, कौन खतरे की खबर देगा, और सबसे बड़ी बात, ये सब डिसाइड कौन करता है? क्या कॉलोनी में कोई एक बड़ी सी मक्खी होती है

कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं होता जहां हर सुबह मॉर्निंग मैसेज आए, गुड मॉर्निंग टीम, लेट्स कोऑर्डिनेट। फिर भी ये छोटी छोटी मधुमक्खियां मिलकर एक ऐसी दुनिया चलाती हैं जो हैरान कर देने वाली है। साइंटिस्ट्स जब हनी बी के दिमाग और उनकी कॉलोनीज का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ आ रही है। पूरे ग्रुप को चलाने के लिए हमेशा एक सेंट्रल बॉस की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हजारों छोटे छोटे फैसले मिलकर एक बहुत बड़ा और बहुत समझदार फैसला बना देते हैं। मतलब एक हनीबी को पूरी कॉलोनी का प्लान पता नहीं होता, उसे ये नहीं पता होता कि आज पूरी कॉलोनी कितना खाना जमा करेगी, उसे ये भी नहीं पता होता कि अगले हफ्ते मौसम कैसा होगा, उसे सिर्फ अपना छोटा सा काम पता होता है, फूल ढूंढो, रस लेकर आओ, खतरा दिखे तो सिग्नल दो और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो दूसरों तक पहुंचाओ, बस इतना ही। लेकिन जब हजारों हनी बीज एक साथ छोटे छोटे काम करती हैं तो पूरी कॉलोनी एक इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह बिहेव करने लगती है। और यही बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक हनी बी अकेली शायद बहुत कुछ ना कर पाए लेकिन पूरी कॉलोनी एक अलग ही दुनिया है। सोचिए एक हनी बी को कहीं दूर एक ऐसी जगह मिलती है जहां बहुत सारे फूल खिलते हैं, वो अकेली वहां बैठकर ये नहीं सोचती मैं तो यहाँ सीईओ हूं, अब पूरी कॉलोनी को यहीं शिफ्ट करवाऊंगी। वो हाइव में वापस आती है, अपने तरीके से दूसरी बीस को बताती है कि खाना कहाँ है। दूसरी बीस उस इंफॉर्मेशन को समझती है, किसी ने ऑर्डर नहीं किया, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, किसी ने अनाउंसमेंट्स नहीं की, किसी ने वोटिंग नहीं करवाई, बस छोटे छोटे इंडिविजुअल डिसीजंस, और उन सब डिसीजन से एक बड़ा कलेक्टिव डिसीजन बन गया। अब जरा इसका कनेक्शन हमारी जिंदगी से देखते हैं। हम इंसानों को लगता है कि हर बड़े काम के लिए एक लीडर चाहिए, एक बॉस, एक जीनियस, एक ऐसा आदमी या औरत जो सब कुछ जानता हो, ऑल वाइज हो। लेकिन प्रकृति बार बार हमें कुछ और ही दिखाती है। कभी कभी पूरी समझदारी एक इंसान के पास नहीं होती, वो अलग अलग लोगों के पास थोड़ी थोड़ी होती है। किसी को एक चीज का एक्सपीरियंस है, किसी को दूसरी चीज का, कोई प्रॉब्लम को दूर से देख रहा है और कोई उस प्रॉब्लम के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। और जब सबकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचती है तब एक बेहतर फैसला सामने आता है, बिल्कुल बीज की तरह। कितनी अजीब बात है, हम अक्सर कहते हैं कि एक आदमी सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन बीज हमें सिखाती हैं कि कभी कभी इंटेलिजेंस किसी एक दिमाग में नहीं बल्कि पूरे कलेक्टिव ग्रुप के बीच होती है। और यही वजह है कि बी कॉलोनी को समझने वाले साइंटिस्ट्स के लिए ये दुनिया बहुत फैसिनेटिंग है। एक और चीज है जो बी से सीखने लायक है, हर काम इम्पोर्टेंट होता है। बी कॉलोनी में कोई एक बी पूरा काम नहीं करती, कोई फूड कलेक्ट करती है, कोई हाइव की सफाई करती है, कोई छोटी बीस का ध्यान रखती है, कोई कॉलोनी को डेंजर से बचाती है। हर बी का अपना रोल है और कॉलोनी तभी चलती है जब ये सब रूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब इसको अपनी जिंदगी में देखिए, हम अक्सर सिर्फ उस इंसान को याद रखते हैं जो स्टेज पर खड़ा होता है, जिसे अवार्ड मिलता है, जिसका नाम न्यूज़पेपर्स में आता है, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है ये अक्सर कोई देखता ही नहीं। एक टीचर जिसने कभी किसी बच्चे को एक बार कहा था, बेटा तुम कर सकते हो। एक माँ जिसने अपने बच्चे के सपने के लिए अपने सभी सपने छोड़ दिए। एक दोस्त जिसने मुश्किल वक्त में सिर्फ एक फोन कर दिया। एक एम्प्लॉई जो चुपचाप रात तक काम करता रहा।

एक ड्राइवर जो सुबह सबसे पहले पहुंच गया, एक हेल्पर जिसका नाम किसी को याद नहीं। ये सब लोग शायद स्पॉटलाइट में नहीं होते, लेकिन किसी भी बड़ी सक्सेस के पीछे ऐसे ही हजारों कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस, बिल्कुल एक हनीबी की कॉलोनी की तरह। हर बी अपना छोटा सा हिस्सा देती है और मिलकर एक बहुत बड़ा घर बना देती है। और सोचिए, अगर एक बी कहे मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, तो कॉलोनी का क्या होगा? लेकिन हर बी ये नहीं सोचती, वो बस अपना काम करती रहती है। एक छोटा सा काम, फिर दूसरी भी अपना काम करती है, फिर तीसरी, और धीरे धीरे एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। शायद जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ भाई, एक आदमी के करने से क्या होगा। लेकिन हर बड़ा बदलाव कभी ना कभी एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा एफर्ट, एक छोटा सा काइंडनेस का एक्ट, एक छोटी सी किसी की मदद, और फिर उसके बाद एक और और एक और धीरे धीरे कुछ बड़ा बनने लगता है। बीस की दुनिया हमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात सिखाती है, बदलते वक्त के साथ बदलना। फूल हमेशा एक जगह नहीं खिलते, मौसम बदलता है, खतरे बदलते हैं, खाने के सोर्सेस बदलते हैं, तो कॉलोनी को भी अपना तरीका बदलना पड़ता है। अगर बी सोचने लगे कि हमें तो हमेशा से यही करना था, तो शायद कॉलोनी देर तक सर्वाइव ही ना करे। लेकिन वो एनवायरनमेंट को देखती हैं, इंफॉर्मेशन लेती हैं और जरूरत पड़ने पर अपना रास्ता बदल देती हैं। और यहाँ हम इंसान कभी कभी बी से बहुत पीछे रह जाते हैं। हम कहते हैं लेकिन हम तो हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, पर दुनिया बदल गई है, सिचुएशंस बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, तो हम कभी कभी क्यों नहीं बदलते? बदलना हार नहीं होता, बदलना सीखना होता है। बी कॉलोनी का एक और सिंपल लेसन है, हर चीज को एक साथ समझना जरूरी नहीं, कभी कभी बस अगला सही स्टेप लेना ही जरूरी है। एक बी को ये नहीं पता होता कि पूरी कॉलोनी का फ्यूचर क्या है, उसे बस इतना पता है कि अभी मुझे क्या करना है, फूल ढूंढना है, रस लेना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और फिर अगला काम। हम इंसान अक्सर पूरी जिंदगी का आंसर एक ही साथ चाहते हैं, करियर क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, कहाँ जाना है, क्या मिलेगा। लेकिन शायद हमें कभी कभी बीस से सीखना चाहिए, हर चीज का पूरा जवाब अभी जरूरी नहीं, बस अगला सही कदम चाहिए। फिर देखिए, फिर सीखिए, फिर जरूरत हो तो थोड़ा डायरेक्शन भी बदलिए। जिंदगी भी एक कॉलोनी की तरह है, छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी कहानी बनाती हैं। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, एक डिसीजन, एक गलती, एक माफी, एक छोटा सा मौका। कोई नहीं जानता कि इनमें से कौन सी छोटी चीज कल कितनी बड़ी बन जाएगी। और शायद इसीलिए बीज हमें सिर्फ टीम वर्क नहीं सिखाती, वो हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाती है, कि दुनिया सिर्फ हमारे अराउंड नहीं घूमती, कि हम सब किसी ना किसी बड़े सिस्टम का एक हिस्सा है, एक किस्सा है। तो अगली बार जब आप कोई हनी भी देखें, तो उसे सिर्फ एक छोटी सी मक्खी समझकर भगा मत दीजिएगा, थोड़ा सा इज्जत दीजिएगा, थोड़ा रुक कर देखिएगा, शायद वो आपको कुछ सिखाने आई है, शायद वो कह रही हो कि हर चीज का बॉस होना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब खुद के पास होना जरूरी नहीं, बस इन्फॉर्मेशन शेयर करो, अपना काम ईमानदारी से करो और दूसरों की काम की इज्जत करो। और जब वक्त बदले तो अपना रास्ता बदलने से मत डरो, क्योंकि एक छोटी सी हनी भी अपने छोटे से दिमाग के साथ हमें एक बहुत बड़ी सी बात समझा रही है।
कभी कभी सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम वो नहीं होता जहां एक इंसान सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो। सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम वो होता है जहां हर कोई ये देखता है, हर कोई सुनता है और हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है पूरी ईमानदारी से। और दोस्तों यही है आज की बातें इधर की उधर की, जहां बात शुरू हुई एक छोटी सी हनीबी से और पहुंच जाती है हमारी जिंदगी तक। कभी कभी जवाब बहुत दूर नहीं होता, कभी कभी वो आपके आसपास ही उड़ रहा होता है, बस उसे देखने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और अजीब, इंटरेस्टिंग और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, क्यूरियस रहिए, और हाँ, अगर कोई हनी भी आपके आसपास गुनगुना रही हो तो उसे थोड़ा स्पेस जरूर दीजिए। क्या पता वो अपनी कॉलोनी की कोई बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रही हो, और सबसे अच्छी बात, उस मीटिंग में शायद कोई भी लेट नहीं होगा। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: दोस्तों कहते हैं ना कि हिचकी आए तो कोई याद कर रहा है। ए ऊपर वाले, अब हिचकियों में कुछ तो फर्क करो। अब कैसे पता करूं कौन सी वाली याद कर रही है?

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अजीब, इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा दिमाग को गुदगुदाने वाले एपिसोड में। बातें इधर की उधर की, और आज का टॉपिक थोड़ा अजीब है हमेशा की तरह। अगर आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल इंसान हैं, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक छोटा सा रियलिटी चेक जरूर हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके दिमाग की एक ऐसी आदत की जिसकी वजह से आपको कभी दीवार पर चेहरा दिखाई देता है, कभी बादलों में हाथी, कभी रोटी में गणेश जी, कभी कॉफी के फोम में कोई आंखों वाला आदमी, और कभी कभी तो बाथरूम की टाइल्स में भी ऐसा लगता है जैसे आपको कोई घूर रहा है। आपको भी ऐसा होता है ना? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इसी वक्त अपने आसपास देखिए, किसी वॉल को ध्यान से देखिए, किसी कर्टन को देखिए, किसी विंडो के बाहर देखिए, किसी चीज के पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और अब सोचिए क्या आपको कहीं कोई फेस दिख रहा है? दो आंखें, नाक, शायद एक छोटा सा मुंह, और अगर हाँ तो मुबारक हो, आपका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। आपको कोई भूत नहीं दिख रहा, आप पागल नहीं हो रहे, और ना ही दीवार के पीछे कोई सीक्रेट सोसाइटी आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं पैराडोलिया। नाम बड़ा साइंटिफिक है, लेकिन इसका काम बहुत सिंपल है। पैराडोलिया का मतलब है जब हमारा दिमाग रैंडम शेप्स, पैटर्न्स या ऑब्जेक्ट्स में कोई पहचानी हुई सी चीज देखने लगता है। सबसे कॉमन चेहरे। दिमाग को फेसेस बहुत पसंद है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इतने ज्यादा पसंद हैं, इतने ज्यादा आइडेंटिफाइबल हैं कि अगर कोई दो डॉट्स और एक कर्व भी दिख जाए कहीं तो वो तुरंत अनाउंस कर देता है, अरे ये तो फेस है। एक कार का फ्रंट देखिए, दो हेडलाइट्स, बीच में ग्रिल, और सडनली कार आपको गुस्से में घूरती हुई लगने लगती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ कार्स क्यूट क्यों लगती हैं और कुछ कार्स ऐसी क्यों लगती हैं जैसे आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आई हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उनके फ्रंट में फेस देख लेता है। दो हेडलाइट्स आंखें बन जाती हैं, ग्रिल मुंह बन जाता है, और बम्पर बस एक्सप्रेशन कंप्लीट कर देता है। और फिर हम कहते हैं यार ये कार तो बड़ी क्यूट है। कार बेचारी सोच रही होगी मैडम मैं तो एक मशीन हूं, लेकिन हमारा दिमाग मानता ही नहीं। अब जरा बचपन याद कीजिए। क्या आपने कभी बादलों को देखा है और कहते ही कहा है कि अरे ये तो एलिफेंट जैसा लग रहा है, या ये तो बिल्कुल रैबिट है, या फिर ये वाला क्लाउड तो इंडिया के मैप जैसा लग रहा है, और फिर 5 मिनट बाद अरे रुको अब तो ये क्लाउड कुछ भी नहीं लग रहा। यही है पैराडोलिया। बादल वही था, लेकिन आपका अमेजिंग दिमाग कहानियां बना रहा था। और यही तो हमारे दिमाग की सबसे इंटरेस्टिंग आदतों में से एक है। हमारा ब्रेन रैंडम चीजों में पैटर्न्स ढूंढता रहता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न्स पहचानना सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी एक तरह से बेसिक नीड है। सोचिए हजारों साल पहले एक जंगल में कोई इंसान चल रहा है, उसे बुशेस में कुछ मूवमेंट सा दिखता है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, अरे शायद हवा से पत्ते हिल रहे हैं। दूसरी, हो सकता है कि कोई डेंजरस सा जानवर हो। अब अगर आपने पहली पॉसिबिलिटी चूज की और सामने सच में शेर निकला तो कहानी खत्म। लेकिन अगर आपने दूसरी पॉसिबिलिटी चूज की तो आप भाग सकते हैं। इसीलिए हमारा दिमाग नेचुरली अलर्ट रहता है।
वो छोटी सी इंफॉर्मेशन से भी मीनिंग्स निकालने की कोशिश करता है, कभी कभी जरूरत से बहुत ज्यादा। मतलब दिमाग कहता है बेटर सेफ देन सॉरी, और फिर कर्टन हिलता है, देखो कोई है, कपड़े चेयर पर पड़े हैं, अरे कोई आदमी बैठा है। रात को किचन में बोतल गिरती है, बस आज तो सब कुछ पैरानॉर्मल है घर में। सुबह पता चलता है बिल्ली थी, और बिल्ली भी आपको ऐसे देख रही हो जैसे मैं तो रोज यहीं रहती हूँ, तुम्हें अब पता चला है। पैराडोलिया का एक और मजेदार एग्जाम्पल है दोस्तों, खाने में फेसेस देखना। टोस्ट पर भी किसी का फेस दिख गया, पैनकेक पर किसी की आंखें दिख गई, पिज्जा की टॉपिंग्स में, कॉफी के फोम में, और सबसे डेंजरस रोटी या पराठे पर। अगर रोटी पर हल्का सा शेप बन गया तो तुरंत फैमिली ग्रुप में फोटो, जय श्री गणेश, जय माता दी, भगवान का आशीर्वाद। और मम्मी किचन से चिल्लाती हैं, अरे वो आशीर्वाद नहीं है, जल गया है। लेकिन दिमाग को फर्क नहीं पड़ता, दिमाग को पैटर्न मिल गया, कहानियां शुरू। और यही पैराडोलिया का कमाल है, हम सिर्फ चेहरे नहीं देखते, हम मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। एक रैंडम शेप, एक रैंडम आवाज, एक रैंडम इवेंट, और फिर हम उसमें कहानी ढूंढने लगते हैं। कभी कभी तो हम इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि नेटफ्लिक्स वाले भी हमसे स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या आपने कभी किसी भीड़ में दूर से खड़े हुए किसी अपने को देखा है? आपको लगा अरे ये तो मेरा दोस्त है, आप हाथ हिलाते हैं, बहुत जोर से हाथ हिलाते हैं, और हाथ हिलाते हुए पास पहुंच जाते हैं, और सामने से कोई बिल्कुल अनजान आदमी, आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, आपके दिमाग में बस अब इज्जत गई, और उसके दिमाग में ये कौन है भाई। आप तुरंत फोन निकाल लेते हैं, एक्चुअली मैं किसी और को वेव कर रहा था। नहीं भाई, आप किसी और को वेव नहीं कर रहे थे, आपका दिमाग एक सेकंड के लिए कंफ्यूज्ड हो गया था, उसने डिस्टेंस से एक फेमिलियर सा फेस पैटर्न पकड़ लिया, और बस आपने अपनी सोशल रेपुटेशन दांव पर लगा दी। लेकिन पैराडोलिया सिर्फ मजाक नहीं है, इसका एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन हमारे इमोशन से भी है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग सामने की इमेज नहीं देखता, वो हमारे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और एक्सपेक्टेशंस को साथ लेकर चलता है। आप उदास हैं तो एक खाली सड़क भी ज्यादा उदास लग सकती है, आप रोमांटिक मूड में हैं तो सनसेट भी सडनली सिनेमैटिक हो जाता है, आप किसी को मिस कर रहे हैं तो भीड़ में हर दूसरा इंसान एक ही सेकंड के लिए बट उसी इंसान जैसा लगता है, और फिर दिल कहता है शायद वो था, दिमाग कहता है नहीं बेटा नहीं, दिल कहता है एक बार और देख लेते हैं, दिमाग कहता है चलो ठीक है। हम इंसान बहुत अजीब हैं, हम रियलिटी को सिर्फ देखते नहीं, हम उसका मतलब भी बनाते हैं, और कभी कभी हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, आपको सबसे अजीब जगह कहां फेस दिखा है आज तक? दीवार पर, बादल में, कॉफी में, किसी बिल्डिंग के विंडो पैटर्न में, या फिर किसी आलू में? हां जी, आलू भी कभी कभी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। किसी आलू का शेप थोड़ा अनयूजुअल क्या हुआ, गाइस लुक एट दिस, और उसकी फोटो पूरे इंटरनेट पर वायरल, लैक्स ऑफ लाइक्स, आलू फेमस, और आपका टैलेंट अभी भी पेंडिंग। हम सब अपनी लाइफ में पैटर्न्स ढूंढते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है,
कुछ लोग कहते हैं जब भी मैं ये नंबर देखता हूँ कुछ अच्छा होता है, कुछ लोग कहते हैं जब भी मैं बहुत हंस लेता हूँ तो मुझे रोना पड़ता है, कुछ लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और कुछ लोग हर चीज में साइंस ढूंढने लगते हैं। कभी कभी वो पैटर्न सच होता है, नो डाउट, कभी कभी सिर्फ कोइंसिडेंस, और कभी हमारा दिमाग दो रैंडम डॉट्स को आंखें बना देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी वॉल पर कोई फेस देखें तो थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि शायद दुनिया आपको कोई सीक्रेट मैसेज नहीं दे रही, शायद आपका दिमाग बस ये कह रहा है कि रिलैक्स, मैं बोरिंग नहीं हूं, मैं हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। और ऑनेस्टली हमारे दिमाग की ये आदत बुरी भी नहीं है, इसी वजह से तो हम इमेजिनेशन करते हैं, इसी वजह से तो हम स्टोरीज बना लेते हैं, और इसी वजह से आर्टिस्ट्स को ब्लैंक कैनवस में भी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, इसी वजह से राइटर्स एक छोटी सी बात से पूरी कहानी बना देते हैं, एक फोटोग्राफर एक ऑर्डिनरी वॉल में ब्यूटी देख लेता है, एक बच्चा बादल में ड्रैगन देख लेता है, और एक कवि बारिश की एक बूंद में पूरा समुंदर ढूंढ लेता है। शायद पैराडोलिया हमें एक और चीज सिखाता है, दुनिया में सिर्फ वो नहीं है जो सामने है, दुनिया वो भी है जो हम उसमें देखते हैं या देखना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा बैलेंस जरूरी है। हर रैंडम चीज को साइंस समझना बिल्कुल ठीक नहीं है, हर शैडो को भूत समझना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, हर कोइंसिडेंस को डेस्टिनी समझना भी जरूरी नहीं है, और हर आलू को गणेश जी समझना ये तो बिल्कुल आपकी श्रद्धा और इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगली बार जब आपको बादल में कोई जानवर दिखे, या दीवार पर कोई चेहरा दिखे, या कॉफी के फोम में कोई आदमी दिख जाए, तो उसे तुरंत इग्नोर मत कीजिए, थोड़ा देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, और फिर अपने दिमाग को शुक्रिया कहिए, क्योंकि उसने एक रैंडम पैटर्न को एक छोटी सी कहानी बना दिया है। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहां एक छोटी सी बात कभी दीवार पर बना चेहरा बन जाती है, कभी बादल में हाथी, कभी कॉफी में अजनबी, और कभी एक सिंपल सी साइंटिफिक फिनोमिनन, जिंदगी को देखने का एक नया तरीका। तो अब जाइए जल्दी और अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या पता आपको कोई फेस दिख जाए, और हाँ, अगर वो फेस आपको आंख मारता हुआ भी लगे तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, वो आपका दिमाग है, मैं नहीं। मिलते हैं फिर एक और अजीब अनोखी और इंटरेस्टिंग सी कहानी के साथ, तब तक याद रखिए, देखते रहिए, सोचते रहिए, और सबसे जरूरी अपने दिमाग को थोड़ा सरप्राइज करते रहिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की बोली, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूंगी। लड़का बोला, पर मैं दुखी कहां हूं? लड़की बोली, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूं।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त आरजे तनुषा आपके साथ आज की सुकून भरी मॉर्निंग में। आज की बात फिर से थोड़ी सी अजीब लगेगी, थोड़ी सी फनी लगेगी।

और अगर आपने इसे सीरियसली ले लिया तो शायद आज के बाद अब अपना मुंह खोलने से पहले दो बार तो जरूर सोचेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज हम बात करेंगे मक्खियों की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का हमारा ज्ञान किसी बड़े फिलोसोफर से नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं, बल्कि मक्खियों से आ रहा है। और एक मेक्सिकन कहावत कहती है, फ्लाइज डू नॉट एंटर अ क्लोज्ड माउथ, मतलब बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती। अब आप सोच रहे होंगे आरजे तनुषा को सुबह सुबह हो क्या गया है, इतने सारे टॉपिक्स हैं दुनिया में, प्यार है, पैसा है, पॉलिटिक्स है, चाय है, समोसे हैं, और मैडम पहुंच गई मक्खियों पर। लेकिन दोस्तों, इस छोटी सी कहावत के अंदर जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। जी हाँ, और वो लेसन है कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बोलने से पहले सोचनी चाहिए और कुछ बातें बोलनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, कुछ बातें सिर्फ इसीलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए मुंह है। आजकल तो सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। पहले जमाने में आदमी गुस्से में कुछ भी बोल देता था तो बात मैक्सिमम घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचती थी, और आज एक बार व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया, स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग फेसबुक पर कुछ लिख दिया, आर्काइव, और अगर किसी ने पुरानी कोई बात ट्वीट हुई भी ढूंढ ली तो बस आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की एक थ्रेड बन जाती है। बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी चुप ही बैठे रहें। नहीं, क्योंकि अगर हम सब चुप हो गए तो फिर रेडियो का क्या होगा और मेरी नौकरी का क्या होगा। मैं तो आपसे कहूंगी कि बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, बस इतनी सी इल्तिजा है कि थोड़ा सा सोच कर। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो बोलने से पहले सोचते हैं और दूसरे वो जो बोलने के बाद सोचते हैं, अरे मैंने ये क्यों बोल दिया। और फिर तीसरी कैटेगरी के वो होते हैं जो बोलने के बाद भी कहते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आपको पता है, मैं तो मजाक कर रहा था इंसानियत का सबसे पुराना इमरजेंसी एग्जिट है। आप कुछ भी बोल दो, किसी का दिल दुखा दो, किसी की बेइज्जती कर दो, किसी का राज बता दो और सामने वाला गुस्से में आ जाए तो तुरंत, अरे बाबा मजाक था। नहीं भाई, मजाक वो होता है जिसमें दोनों लोग हंसें। सिर्फ आप हंस रहे हो और सामने वाला घर जाकर रो रहा है तो वो मजाक नहीं है, वो आपकी सोशल स्किल्स का पोस्टमार्टम है। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन असली समझदारी शायद ये है कि आपको इतना तो पता हो कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। हर आर्गुमेंट जीतना जरूरी नहीं है, हर कमेंट का जवाब देना भी जरूरी नहीं है, हर ओपिनियन को डिफेंड करना भी जरूरी नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हर बात पे अपना ओपिनियन देना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया ने हम सबको एक अजीब सी आदत लगा दी है, किसी सेलिब्रिटी ने शादी की, हमारा ओपिनियन सामने, किसी ने डिवोर्स लिया, ले झट एक और ओपिनियन, किसी ने बेबी पैदा किया, बॉय गर्ल के ओपिनियंस, किसी ने बेबी का नाम क्या रखा, बिग फैट ओपिनियन, किसी ने क्या खाया ओपिनियन, किसी ने क्या नहीं खाया उस पर भी ओपिनियन, किसी ने ब्रेकअप किया ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन ओपिनियन, और अगर दो लोग चुपचाप खुश हैं तो हमारा ओपिनियन, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग। भाई, हर जगह घुसना जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों को जिंदगी जीने दो, दूसरों को जिंदगी उनकी तरह जीने दो, दूसरों की जिंदगी को दूसरों की ही जिंदगी रहने देना भी एक कला है। और इसीलिए साइलेंस यानी खामोशी बहुत पावरफुल चीज है। खामोशी का मतलब हमेशा वीकनेस नहीं होता,
कभी कभी खामोशी का मतलब होता है मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं इस डिस्कशन को अपनी मेंटल पीस के लायक नहीं समझता। वाह क्या बात है, आपको कोई प्रोवोक करे और आप चुप रहें तो सामने वाले को एक अजीब सी प्रॉब्लम होती है। उसने डायलॉग मारा लेकिन आपने रिएक्शन नहीं दिया, उसने दूसरा डायलॉग मारा और आप फिर भी चुप रहे, तीसरा डायलॉग और आप चाय पी रहे हो मजे से, चौथा डायलॉग आप बिस्किट खा रहे हो, 5 मिनट बाद सामने वाला खुद ही सोचेगा मैं अकेला ही पागल हूं क्या, और आप कहेंगे जी बस आर्गुमेंट खत्म, बात खत्म। तो दोस्तों कभी कभी साइलेंस इज द मोस्ट एलिगेंट रिप्लाई। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने नोटिस किया है कि हम दूसरों की बात सुनने के लिए कितने इंपेशेंट हो जाते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है और हमारे दिमाग में ऑलरेडी जवाब तैयार होते हैं, एक नहीं 3-4। वो कह रहा है मेरी प्रॉब्लम ये है और हम सोच रहे हैं अच्छा अब मैं बताऊंगा मेरी प्रॉब्लम क्या है। वो अपना दुख बांट रहा है और हम अपनी कहानी लेकर बैठ गए। वो अपनी सक्सेस बता रहा है और हम अपनी ही सक्सेस का ट्रेलर चला रहे हैं। वो कह रहा है मैं कल जयपुर गया था और हम तुरंत अरे जयपुर मैं तो एक बार उदयपुर गया था, और फिर कॉन्वर्जेशन जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से मुंबई, मुंबई से लंदन, लंदन से आपके कजिन के फ्रेंड के ब्रदर तक पहुंच ही जाती है। कॉन्वर्जेशन नहीं, इंडियन रेलवे नेटवर्क है ये। इसलिए कभी कभी बस सुन लीजिए। जी हाँ किसी को एडवाइस नहीं चाहिए होती कभी कभी, किसी को सॉल्यूशंस भी नहीं चाहिए होते, किसी को बस ये चाहिए होता है कि आप कोई उसकी बात बिना बीच में काटे और बिना अपनी कहानी लाए थोड़ी देर के लिए सुन लें, बस थोड़ी देर। और शायद इसीलिए बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती का एक मतलब ये भी है, जब जरूरत हो तो अपनी बात रोक कर दूसरे की बात सुनिए। लेकिन अब एक और सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा गलती हम कब करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं या जब हम बहुत खुश होते हैं? मेरा मानना है जब हम इमोशनल होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो बाद में वापस नहीं आते, और खुशी में कभी कभी ऐसे सीक्रेट्स बता जाते हैं जो हमें नहीं बताने चाहिए थे। अरे किसी को बताना मत, और फिर वो बात 2 घंटे में पूरे मोहल्ले की प्रॉपर्टी बन जाती है। आपने भी सुना होगा मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूँ। दोस्तों अगर कोई आपसे ये सेंटेंस बोले तो समझ जाइए कि आपको एक सीक्रेट नहीं एक जिम्मेदारी दी जा रही है, और अगर वो सीक्रेट आपके आगे किसी को भी आप बता रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं बस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा था। जी नहीं, हर इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए नहीं होती, कुछ बातें सच में प्राइवेट होती हैं, सीक्रेट होती हैं, पर्सनल होती हैं, और कुछ बातें सिर्फ इसीलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि आपको पता है नॉलेज और परमिशन दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आपको किसी के बारे में कुछ पता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया को बता देना है। यहीं पर आज की हमारी कहावत फिर से काम आती है, बंद मुंह में मक्खी नहीं जाती, और आज के डिजिटल जमाने में शायद इसका एक मॉडर्न वर्जन होना चाहिए, थिंक बिफोर यू स्पीक और डबल थिंक बिफोर यू पोस्ट। क्योंकि मुंह से निकली हुई बात शायद इंसान सुनता है, लेकिन इंटरनेट पे लिखी हुई बात इंटरनेट कभी नहीं भूलता ना भूलने देता है। इसलिए अगली बार जब आप गुस्से में किसी को एक लंबा सा मैसेज भेजने का मन बना रहे हैं, रुकिए, लिखिए, पढ़िए और फिर से पढ़िए, फिर फोन साइड में रखिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा वॉक पे जाइए, और अगर फिर भी आपका भेजने का मन हो तो पहले किसी ट्रस्टेड दोस्त को भेजिए, और अगर वो भी कहे कि भाई मत भेज
तो समझ जाइए, यूनिवर्स आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों। आज की बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम चुप रहकर सब कुछ सह लें, बिल्कुल नहीं। जहां इनजस्टिस हो वहां बोलना जरूरी है, जहां किसी के साथ गलत हो रहा हो वहां आवाज उठाना भी जरूरी है, जहां किसी को आपकी जरूरत हो वहां खामोशी नहीं साथ देना जरूरी है। लेकिन जहां सिर्फ ईगो की लड़ाई है ना, सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन की बात है, वहां साइलेंस। जहां गॉसिप हो वहां साइलेंस, जहां सामने वाला सिर्फ रिएक्शन चाहता हो वहां साइलेंस, और जहां आपको पता हो कि आपके वर्ड्स किसी का दिल तोड़ देंगे लेकिन आप सिर्फ गुस्से में बोल रहे हैं, वहां प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। क्योंकि वर्ड्स की एक अजीब सी आदत होती है, हम उन्हें बोल देते हैं और फिर चाहे हम कितनी बार भी सॉरी कहें, वर्ड्स अपना निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए शायद जिंदगी में एक छोटा सा रूल होना चाहिए, स्पीक लेस लिसन मोर, थिंक फर्स्ट एंड व्हेन यू स्पीक मेक योर वर्ड्स वर्थ हियरिंग। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका मन करे किसी आर्गुमेंट में अपना लास्ट वर्ड देने का, तो याद रखिए, आपको हर बार लास्ट वर्ड की जरूरत नहीं है, कभी कभी लास्ट वर्ड साइलेंस का भी होता है। और हाँ, आज से अगर कोई आपसे कहे फ्लाइज डू नॉट एंटर अ क्लोज्ड माउथ, तो आप भी उनसे कहना बिल्कुल। लेकिन भाई, व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज मैंने भेज दिया उसमें मक्खी नहीं, मैंने खुद को ही फंसा लिया। तो दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की में बस इतना ही। अपना मुंह बंद रखना हर वक्त जरूरी नहीं, लेकिन अपनी जुबान को अपना मालिक बनने देना ये बिल्कुल जरूरी नहीं। कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये समझ आ गया तो समझ लीजिए आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हुनर सीख लिया। मैं हूँ आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, एक नई कहावत, एक नई अजीब सी बात के साथ। और हाँ, तब तक मक्खियाँ दूर रखिए, और हाँ, वर्ड्स को संभाल के रखिए। नमस्कार।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

ना छुपाओ, बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ, बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

दोस्तों, खुद की तुलना किसी और के साथ करना अब बंद कीजिए। आप सबसे बेहतर हैं।

बदन पत्थर है और तुझ में दम नहीं है, इन हाथों को पत्थर कर ले फिर तू भी कम नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ।
2: दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबरा

तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए तीन ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कुंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्ज स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा, मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के माने सिर्फ इतने ही जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, न ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और मेरे अम्मा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं पसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां दो हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपने ज्यादा खुसूसी मजमून चुनना थे, यानी अपने स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था, तो मैंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT की तालीम के दौरान मुझे तीन टीचर्स ने बहुत मुतासर किया, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडले, प्रोफेसर नरसिंहा राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है, मेरे एप्टीट्यूड्स और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि जब वो अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और लगन है उस शोबे में जाने के लिए। प्रोफेसर KAV पंडले ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया और उसका तज्जिया भी, विश्लेषण, एनालिसिस भी। वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नजरिया लेकर आते थे कोर्स में। प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे, वो एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में दाखिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने दो मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का।

0: दोनों में अर्जी भेज दी और बयक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाऊं। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैं। मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तखलीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्र कर दिया गया 250 रुपए की महाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी यकताई खो बैठे हैं, बल्कि हमने एक और ही किस्म की खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहम दिल भी हैं और बेरहम भी, हसास भी हैं और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतने ही सतही। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुश रंग और खूबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो अपने हुक्मरानों की एक बेढब नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरम के सुकून और गहरे शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MGK मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला, मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनकुस्पार से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर एमजीके मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के ऊंगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में यह मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तदा थी, हल्की सी शुरुआत। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 माह के लिए अमेरिका भेज दिया गया नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इम्प्रेशन अमेरिकन के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है, जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की जूनियर्स और सबॉर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हतक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाकया हुआ, 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपाची। नाइकी अपाची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरजू, अपने ख्वाब का इजहार किया, एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो खुशुन कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का, जो साथ रहा करता था और जुर्क्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद। वो रॉकेट्स विलियम कॉन्ग्रीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंसी जबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेवारी अपने सर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इन स्पेस उड़ानों को, इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था, सहज पके सुमीठा होए। थुम्बा में दो रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोहनी, दूसरा मैंने कहा। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन VS नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके, बड़ी छोटी सी जगह में। شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میں کئی طرح کے جذبات سے بھر گیا، خوش بھی تھا، شکر گزار بھی، خوش قسمت بھی، اور ایک احساس ہوا تکمیل کا، فلفلمنٹ کا۔ 19ویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں، ہر دن کے لیے تیار رہو، ہر دن کو ایک طرح ہی ملو، جب اوکھلی ہو برداشت کرو، جب دستہ ہو تو وار کرو۔ ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار اسپیس ریسرچ کا 10 سالہ پروگرام تیار ہوا، جس کے آتھر تھے پروفیسر سارا بھائی۔ میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے اسپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو، جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو۔ اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا۔ نارائنن اور میں، ہم دونوں اس پینل کے ممبر تھے۔ اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایس ایل وی سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا ناک نقشہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ پروفیسر سارا بھائی اپنے دیرینا خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چنا گیا۔ اس پر پروفیسر سارا بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں۔ یہ معمول تھا، میرا عادت تھی کہ ہر میسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارا بھائی کو پوری تفصیل، پوری رپورٹ دیتا تھا۔ دہلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں ترویندرم لوٹ رہا تھا، اور اس دن پروفیسر سارا بھائی تھمبا میں ایس ایل وی کا معائنہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ دہلی ایئرپورٹ کے لاؤنج سے میں نے انہیں فون کیا، پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی۔ پروفیسر سارا بھائی نے مجھے کہا کہ میں ترویندرم ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کروں۔ میں جب ترویندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا۔ مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارا بھائی نہیں رہے۔ چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تھرا کے رہ گیا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی، میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر سارا بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشٹر پتا ہیں، جیسے راشٹر کے پتا مہاتما گاندھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے۔ کچھ عرصہ پروفیسر ایم جی کے مینن نے اسپیس ریسرچ کا کام سنبھالا۔ بالآخر پروفیسر ستیش دھون کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تھمبا کا پورا کمپلیکس ایک بڑے پیمانے پر اسپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارا بھائی اسپیس سینٹر وی ایس ایس سی کا نام دیا گیا۔ جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردانجلی پیش کی گئی۔ مشہور میٹلرجسٹ ڈاکٹر برہم پرکاش وی ایس ایس سی کے پہلے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو، معتبر ہو، اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو۔ شاید نجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے، آزادی، معتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو۔ شاید نجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے، آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ ہو، تبھی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں دو راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے۔ پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو۔ علم، نالج بڑا کارآمد ہتھیار ہے، بہت کام آتا ہے۔ علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حقدار ہو گئے۔ علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ٹیم کی رہنمائی تبھی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جب ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں، اگلے دن کے کام کی تیاری کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں، گرو سمجھیں، اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو. جو کرو اس پر یقین رکھو، یا جس پر یقین ہو وہی کرو، ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے. ایس ایل وی پروجیکٹ کے پہلے 3 سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے اسرار کھلے، اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ آنے لگا. ریسرچ اور عمل، ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتہ چلنے لگا. کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے، لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے، ایک اور سیڑھی بن جاتی ہے. کسی بھی تخلیق کی طرح ایس ایل وی 3 کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری. ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی. میرے دوست اور ہمدرد، میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا. کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگردے کا احساس ہوا، تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا. رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا. زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوکھ چکے تھے. تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج، ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی. بہت دنوں تک بہت ملال لگا، سب بے معنی لگتا تھا. پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے، کہتے ایس ایل وی پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی. 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے. 15 پوتے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے، اور ایک پڑپوتا. دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی. کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا، جھنڈا نہیں اتارا گیا، نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے، نہ سیاست دان تھے وہ، نہ ودوان کوئی، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار. ایک سیدھے سادے انسان تھے، فرشتہ صفت، اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے. میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا چپ چاپ، اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. ایس ایل وی 3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں. اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے ایس ایل وی 3 کا خواب 1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا. ہم نے ایس ایل وی 3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا. 23 میٹر لمبا، 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا. پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی، اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا. ہم سب دم خود رہ گئے، سانس روکے بیٹھے تھے. ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا. اچانک ہمارے خواب میں درار آئی، ہمارا سکوت ٹوٹا، ہماری خاموشی ٹوٹی. दूसरी स्टेज काबू से बाहर होने लगी थी। तीन सौ सत्रह सेकंड के बाद परवाज टूट गई। मेरी मेहनत और उम्मीद चौथी स्टेज को साथ लेकर तमाम मलबा श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जाके गिरा। इस हादसे से हम सबको सख्त सदमा पहुंचा। मैं गम और गुस्से से भर गया, नुचड़ गया बिल्कुल, जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी। मैं सीधा अपने कमरे में गया और बिस्तर में धंस गया। मैंने अपने कंधे पर एक दिलासे का हाथ महसूस किया तो आंख खोली। दोपहर ढल चुकी थी, शाम करीब थी। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश मेरे सराहने बैठे थे। उनकी इस हमदर्दी ने छू लिया मुझे। मैं उदास था, मायूस था, लेकिन अकेला नहीं। हर शख्स तकनीकी जमा तफरीक और बहस मुबासे के बाद मुतमईन हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था, लेकिन मुझे इत्मीनान ना आया और मुसलसल बेचैन रहा। मैं बेसाख्ता खड़ा हो गया और एतराफ किया प्रोफेसर धवन के सामने, सर मेरे साथियों को नाकामयाबी की वजह दरियाफ्त हो जाने से इत्मीनान हो गया, लेकिन मैं उसे काफी नहीं समझता। इस मिशन के डायरेक्टर की हैसियत से इस गलती को भी मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं। SLV-3 की नाकामयाबी की जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोच कर मैं दिल को ढारस देता रहा। यह ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वॉन ब्रॉन अपनी सैटर्न लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए।
1: मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है।
0: मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारे कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारे कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली दो दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत मैं यहां पहुंचा था। वो लोग मेरे साथ नहीं थे, मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाने से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फखर था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। पहली जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री आर वेंकट रमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के, हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टैक्टिकल कोर वहीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया। एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना खाव रेक्स को, यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को, मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे, जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर साराभाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहाँ तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकई हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था। फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो, या आम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1989 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरे मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी, वो फौरन ठीक कर दी गई, लेकिन उसी वक्त डाउन रेंज स्टेशन ने रुकने का हुक्म दिया। चंद सेकंड्स में कई रुकावटें सामने आ गईं और परवाज मुलतवी कर दी गई। अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, यह बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की परवाज के लिए। मगर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया। पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम

केएन सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था? क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1,00,000 पेड़ों की कोंपले लगाएंगे

0: गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी कार्यक्रम मां एक बार फिर तमारू बहुत बहुत स्वागत करिए से रेडियो टाटा भील 90.8 FM छापवानी आवाज आपड़ी हरू खेती बाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी हंगला किसान भाइयों तक खेती बाड़ी थी जोड़ेली अलग अलग जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वा नो प्रयास करे है। खेती बाड़ी ना इन कार्यक्रम ना माध्यम थी आपड़ किसान जो है आपड़ खेतरों में आवेरी अलग अलग समस्याओं ने तीनों निदान की कम करवानो ते हंगली जानकारी आपू इना रेडियो टांडिया व्हील ना खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम ना माध्यम थी आपू ली सकी। साथ ही आपड़ जो किसान है वो आपड़ रेडियो स्टेशन पर फोन भी करी सके अने हमू जो आपड़ केवी की है आपड़ कृषि विज्ञान केंद्र है आपड़ झाबुआ जिला ना तीना विशेषज्ञ थी तमारी बात करावी ने कि कम तरीके थी तीनी फसल में अगर जो नुकसान थी रो है तेना नुकसान थी कि कम वसवानू है अने अगर आप ते खेती करी रहा है तेने खेती बार वाड़ी मा एक पूरी तरीके थी जानकारी आपुन लेवानी जरूरत है ते जानकारी आपुन कहाती मल है तीनी जानकारी ने आपुन लेवा हरू जो केवी के ना विशेषज्ञ है तीना माध्यम थे भी हमू कोशिश करूँ कि जो भी जानकारी है जो भी किसान है तो आपड़ी आपड़ी जो अलग खेती करवा मांगे है तो तमु वो खेती नी जो मैसेज है जो फोन पर हमू आपू फोन पर तमु हमू बताड़ी सको अने हमू आपड़ केवी की ना विशेषज्ञ ना माध्यम थी तमारी तक तीनी खेती ना बारा मा पूरी जानकारी आलवानो प्रयास करूँ। किसान भाइयों आपू असल तरीके थी वाकिफ है कि हमने यो समय साली रो है ना समय में पानी पड़ी रो है अलग अलग प्रकार ना कीड़ा मकोड़ा है अपड़ आसपास तो अपड़ इनी पर्यावरण नो बदलाव थई रो है तेना पर्यावरण में अपड़ पशु ने अपन ध्यान रखवानी घनी जरूरी है केम के अपना जो पशु है अधिकतर पशु अपू घेर में बांधेलास राखी तो मतलब त्या तीनी मर्जी था हरे परे फरी नहीं सकी अपू जी तिना खावा आली रहा है तो अपू कोशिश करिए कि जहाँ भी अपना पशु रे है अपन वेड में तिना वेड ने आपू साफ सफाई थी राखी तीन में असल सारूँ आ लिये तिना केम के हमने समय है धूप नहीं निकली रही है कीड़ा मकोड़ा न संख्या बढ़ती जा रही है तो इना समय में आपड़ तिना देख रेख करवो घणो जरूरी है। साथ ही आज ना इना कार्यक्रम में आपू बात करी हूँ कि हमने आपड़ डगरा ने जो लंपी वायरस ना नामनी जो बीमारी है वो आजकल आपू रोज हामली रहा है कि अधिकतर डगरा लंपी वायरस ना नी वजह थी मरी रहा है तो इन्हीं इन्हीं बीमारी थी अपड़ वसेला की कम अपड़ डगरान राखूँ अने हूँ कारण से यहाँ डगरा ने ये सब बीमारी झेलवी पड़ी रही है तो इना बारा में आज ना इना कार्यक्रम में आपू चर्चा करूँ जाणूँ अने हम आशा करी हैं कि तमो जे भी जानकारी आज ने इना कार्यक्रम में मळे है तीनी जानकारी ने अपना पड़ोसी किसान भाई

0: और गांठें घाव में बदलने लगती हैं। इस बीमारी के लक्षण दिखने पर बीमार पशु को बाकी पशुओं से अलग कर दें, साथ ही बाहरी लोगों का प्रवेश बाड़े में बंद कर दें और पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं को सेहतमंद रखने के लिए पशुओं को समय समय पर टीके लगवाते रहें। ध्यान रखें कि टीकाकरण के समय पशु का स्वास्थ्य अच्छा हो। बीमार होने का अंदेशा होने के कम से कम एक महीना पहले टीकाकरण कराना चाहिए।
1: तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से कितना जरूरी हो जाता है कि इस मौसम में भी हम जो पशु स्वास्थ्य है उसका जरूर ख्याल रखें। और खासतौर से डॉक्टर केमल पाठक, अगर मानसून की हम बात करते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए तो बेहद ही लाभकारी ये रहता है, लेकिन पशुपालकों की कुछ ना कुछ चुनौतियां बढ़ा देता है। और इस बार मानसून में जब हमने देखा लंपी वायरस जो है इसका प्रकोप ज्यादा तौर पर देखा गया, क्या स्थिति आप देखते हैं इसकी?
2: बिल्कुल, देखिए पशु उत्पादन के लिए जरूरी है कि पशु का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, और पशु के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम पूरा ध्यान रखें, उसका जो खान है, उसका पानी है, उसका क्या भोजन देते हैं, उसका क्या आवास है। लेकिन साथ साथ बीमारियों का, विशेष रूप से अभी आपने जिक्र किया कि इस समय जो मौसम है, गर्मी की मौसम भी बनी हुई है, बरसात का मौसम भी है, हमारे देश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कई क्षेत्रों में बारिश कम हो रही है। ऐसे में जहां मनुष्य भी प्रभावित हो रहे हैं बरसात से, बाढ़ से, कहीं ना कहीं वहां पशु का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। बरसात के दिनों में सभी जो पशुपालक हैं उन भाइयों को हम सलाह देते हैं कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। इस समय एक नई बीमारी जिसको हम नई, हालांकि ये बीमारी हमारे यहाँ 2019 में भी आई थी, लेकिन उस समय इसका प्रकोप उतना नहीं था, लंपी स्किन डिसीज, जिसको हम जो है गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं, एक वायरस से होने वाला रोग है। और ये अभी हमारे 20 प्रदेश जो है, हमारे जो राज्य के हैं उनको जो है, हमारे देश के 20 राज्य हैं जिनके पशुओं को प्रभावित कर रही है। और ये बीमारी जो है विशेष रूप से गौवंश और भैंसों में, लेकिन ज्यादा गौवंशों को प्रभावित कर रही है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इस बीमारी से गौवंशों की मृत्यु भी हुई है। इसका वजह से जो है पशुपालकों को काफी नुकसान हो रहा है, पशु का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पशु बीमार हो रहा है। और जिस काम के लिए हमारे पशुपालक भाई पशुओं को रखते हैं, उत्पादन, अगर जो गाय भैंस है, ये दोनों जो है हमारे देश में दूध के लिए पाली जाती हैं, और दूध जो है, इससे ये देखा गया है कि जिन पशुओं में लंपी स्किन डिसीज हो जा रही है उनका दूध उत्पादन भी कम हो रहा है और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं हमारे जो पशु हैं और उनका जो पशु स्वास्थ्य है। यहाँ अजीत जी आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार कोशिश यही होती है कि जो हमारे पशु हैं उनका स्वास्थ्य

0: समय रहते उनसे बीमारियों से बचा सकते हैं। इसमें प्रमुख बात यह है कि किसान भाइयों को बार बार ये बताना जरूरी है कि आप समय पर टीकाकरण जरूर कराएं। आपने अभी सुना कि लंपी स्किन डिजीज अपने देश में आ गई है, अब ये बीमारी अपने देश के लिए नई है और इसमें भारत सरकार ने बहुत तेजी दिखाई है। अभी टीका इसका विकसित किया जा चुका है, लेकिन मैं किसान भाइयों को एक और बात बताना चाहूंगा, ये बीमारी अपने देश में बहुत तेज गति से फैल रही है, लेकिन भारत सरकार ने अपने प्रयासों में इसको रोकने की पूरी तैयारी की है और इसके लिए अपने पास गोट पोक्स
1: जी
0: जो कि पहले से बनी हुई वैक्सीन है उसको लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और किसान भाई अपने इस वैक्सीन को अपने पशुओं को जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी आने का खतरा बना हुआ है उसको लगवाएं और इसके साथ साथ ये पाएंगे कि हमें जिन पशुओं को ये बीमारी लग चुकी है उनको अलग कर दें अपने घर के अंदर, साथ में कोशिश ये करें क्योंकि ये मच्छरों से फैलती है, मच्छरों के काटने से फैलती है, तो इसमें मक्खियां भी आ गई, तो इसमें किसान भाइयों को क्या करें कि अपने उन पशुओं को जिनको ये बीमारी आ गई है उनको अलग तो करें, साथ में चूना का छिड़काव भी करें उनके जो दरवाजे हैं उनके जो दरवाजे के आसपास, और साथ में अगर कोई मच्छरदानी अपने लेकर के अपने दरवाजों पे लगा दें तो ताकि वो मच्छर उन बीमारी के पशुओं को न काटेंगे और आगे ये न फैलेगी। इसके साथ साथ ये पाया गया है कि जो बीमारी से ग्रसित है उनको अपने निकटतम पशु चिकित्सक को तुरंत इसके इलाज के लिए बुलवाएं और उसका इलाज तुरंत करवाएं क्योंकि इससे पशु बच सकता है। और साथ में ये मैं अभी और बताना चाहूंगा कि ये बीमारी तो बहुत अपने देश में नई है और इसके प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो आप किसान भाइयों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़ करके अपने पशुओं को एक प्रकार से टीकाकरण के लिए उत्साहित हो जाइए और अपने पशु चिकित्सक से जल्दी टीका कराएं।
1: यानी टीकाकरण जो है देखिए वो जरूर कराना होगा और उसमें गोटपॉक्स की अभी बात यहां कही अजीत जी ने, यानी जो बकरियों में चेचक का टीका लगाया जाता है वो यहां पर कारगर है, उसका सकारात्मक प्रभाव जो है हमने देखा है पशु स्वास्थ्य पर, तो इसलिए उसको भी यहां बताया जा रहा है कि आप उसको भी लगवा सकते हैं। और कुछ समय बाद जब हम विशेष टीके की बात कर रहे हैं वो भी शायद उपलब्ध होगा हमारे पशुपालकों के लिए। डॉक्टर संजीत आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि जब इस तरीके से कोई वायरस रोग आता है तो आमतौर पर पशुपालक भी घबरा जाते हैं, किस तरह की आवश्यकता के घबराए नहीं बल्कि अगर किसी को ये इस तरह का रोग हो भी जाता है तो कितने दिन में हम मान सकते हैं कि पशु उससे बाहर निकल कर आ सकता है, ठीक हो सकता है?
2: देखिए जो इसका पीरियड है कम से कम 14 से 21 दिन का इसका पीरियड रहता है जिसमें कि पशुपालक जो है ग्रसित रहता है
1: जी।
2: इसके अलावा इसमें सिम्टम्स बहुत जानने बहुत जरूरी है क्योंकि सिम्टम्स की पहचान के दम पर ही हम ये इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लंपी स्किन डिजीज है
1: जी।
2: इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, बुखार जो है 103.4 और कुछ दिनों के बाद तो देखा गया है हमने हमारे हॉस्पिटल में जैसे पशु आते हैं 106 के करीब भी बुखार होता है। इसके अलावा जो स्किन में लीजन्स आ जाते हैं पस्ट्यूल्स होते हैं, वेसिकल नहीं होती एक पस्ट्यूल होती है गोल 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के करीब और पूरे शरीर में वो हो जाती है
1: जी।
2: इसके अलावा स्कैपुलर लिम्फ नोड और प्री फेमोरल लिम्फ नोड जिसको एक पशु चिकित्सक इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है वो उसमें एनलार्ज हो जाते हैं
1: जी।
2: पशु जो है दूध प्रोडक्शन इसका कम हो जाता है और जैसा डॉक्टर अजीत यादव जी ने भी बताया है कि गोटपॉक्स वैक्सीन जो है ये हमें लगाना है, खास ध्यान ये रखना है कि जो भी पशु ग्रसित हो चुका है उसको हमें वैक्सीन नहीं लगानी है, ये केवल स्वस्थ पशु को लगाई जा सकती है। इसका भी 70% एफिकेसी बताई गई है, इस वजह से है क्योंकि यह एक कैप्री पॉक्स वायरस है जो कि गोट्स के उससे है और कैप्री फैमिली में से आता है और इसके जिस तरह से सिम्टम्स देखे गए हैं उसका हमें इम्यूनिटी जो है पशु की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसको हमें बढ़ाना है। सारे जो पस्ट्यूल्स हो जा रहे हैं उसका हमें उपचार करना है, कोई कई हर्बल ऐसी क्रीम और स्प्रे आते हैं जिससे कि उनके अंदर कोई वो फैले नहीं। इसके अलावा बरसात के मौसम में मैगट वूंड हो जाते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है।
1: आवश्यकता यह है कि हम कैसे पशु की प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको बरकरार रख सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर पाठक आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्या जिस तरीके से जब लंपी स्किन वायरस के अगर हमें लक्षण नजर आते हैं, पहला तो ये जो पशुपालक है उनको लगता है कि शायद अब जो पशु है वो बच नहीं पाएगा, इस तरह की धारणा जो है भ्रांतियां जो है वो पशुपालकों के जहन में आ जाती हैं, तो किस तरीके से क्या इसके साथ साथ दूसरी बीमारी भी कोई पशु में आ सकती है?
3: देखिए पहली बात तो मैं अपने पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि ये बीमारी है हाँ आ गई है और नई बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पशु का अगर समय से उपचार कर दिया जाए और इसका उपचार क्योंकि

0: वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाला रोग है, तो वैक्सीन ही इसका सबसे बड़ा जो है उपचार और बचाव है। तो ऐसा नहीं है कि पशु को अगर आप सही ढंग से इसका स्वास्थ्य और भी ध्यान रखेंगे, उसको खाना पीना ध्यान रखें, उसका जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छा रखें, साथ ही साथ जैसा अभी विशेषज्ञ बता रहे हैं हमारे साथ के कि जो इसकी वैक्सीन है गोट पॉक्स वैक्सीन उसको लगा के रखें, तो पशु की ऐसा नहीं है कि आप, और इसमें किसी तरह का पैनिक होने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े दिन पशु बीमार रहता है तो पशुपालक भाइयों को नुकसान किस रूप में रहता है, पशु का स्वास्थ्य खराब होगा तो उसका उत्पादन घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये बीमारी अगर आपके पास ज्यादा पशु हैं, एक पशु है कोई बात नहीं, ज्यादा पशु हैं बाड़ों में, एक पशु से दूसरे पशु में भी जाती है। हालांकि जैसा कि डॉक्टर यादव और डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो खून चूसने वाली जो मच्छर मक्खी और जो टिक्स होते हैं उनके द्वारा संचरित होता है ये वायरस, और इसके अलावा भी एक अगर बीमार पशु हो गया है तो बीमार पशु से जो दूसरे स्वस्थ पशु को भी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं इसमें जो काम आते हैं, या कभी कभी देखा गया है कि संक्रमित चारा है वो भी जो है इस वायरस को फैलाने में, या उसका सलाइवा है पशु का दूसरे में टच कर जाता है। तो इनका इसको जानने का तात्पर्य जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पशु को इस तरह के सिम्टम आ जा रहे हैं, एक पशु को आ गए, आपके पास 10 पशु हैं, तो उसको तुरंत उससे आइसोलेट कर दें और मन में कोई किसी प्रकार का डर नहीं बिठाएं। अगर समय से अगर आप ये सब सावधानी बरतेंगे, विशेष रूप से जो उसके रखरखाव की सावधानी है, तो आप अन्य पशु को भी उससे बचा लोगे। जो बीमार पशु है अगर उसमें लक्षण आ गए, क्योंकि शुरुआत में इसमें क्या होता है बीमारी में कि ये बुखार रहता है, इसमें 5-6-7 दिन जो है 41 डिग्री सेल्सियस बुखार रहेगा, 106 डिग्री जिसको बोलते हैं वो बुखार रहेगा, पशु स्वस्थ जो है सुस्त हो जाएगा, खाना पीना बंद करेगा, और आप धीरे धीरे देखोगे कि पशु का जो पूरा शरीर है उसके ऊपर धीरे धीरे करके जो है दाने दाने, इसीलिए इसका नाम लंपी स्किन डिसीज या दागदार जो है दानेदार जो त्वचा है इस बीमारी का नाम रखा गया। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो तुरंत अपने पशु को दूसरे पशुओं से अलग कर दें, बाड़े से अलग कर दें और दूसरे पशुओं के संपर्क में नहीं आए। एक चीज यहाँ और बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों में भ्रांति रहती है, क्योंकि अभी हमारा देश, हम लोगों ने, सबने, पूरे विश्व ने जो है सफर किया है कोविड से
1: जी।
0: तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो पशुपालकों में हो जाएगी। इस तरह की भ्रांति भी कुछ लोग करते हैं कि ये वायरस है तो क्या हो गया, पशुपालक में तो नहीं हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखिए कि ये बीमारी जो है पशुपालक में नहीं होगी, या जो हमारे साथ में, क्योंकि पशु हमारे परिवार का सदस्य होता है, हमारे बाड़ों में, हमारे घर में रहता है
1: जी।
0: लेकिन आपको अगर पूरी सावधानी बरतेंगे, अगर वहां ध्यान रखेंगे, सफाई रखेंगे, और जैसे डॉक्टर यादव ने भी बताया, क्योंकि ये इसका जो संचारण है, जो इसका ट्रांसमिशन है, ये वायरस जो है, जो चीचड़ होती है या जो मक्खियां होती हैं जो खून चूसती हैं पशुओं का, या मच्छर होते हैं उनका खून चूसने के साथ साथ इस वायरस को ये बीमार पशु से स्वस्थ पशु में ले जाके डाल देती हैं। तो आपको क्या करना है, जहां आपकी जो जो जो इसका घर है, जहां आप पशुओं को रखते हैं, बाड़ा है, वहां पे ऐसी व्यवस्था करें कि सुबह शाम आप धुएं की व्यवस्था करें, वहां मक्खी नहीं जाए, वहां मच्छर जो है पशु को काटने की व्यवस्था ऐसा ना हो कि पशु के पास वो इस तरह की व्यवस्था करें कि वहां कीड़े और ये जो चीचड़ है, अगर आपके पशुओं पर चीचड़ लगी हुई है, बरसात में पशु के शरीर पर चीचड़ लग जाती है, सब जानते हैं पशु पालक भाई चीचड़ों का, तो चीचड़ों की दवा आती है आजकल, अगर ज्यादा कम लगे हुए हैं चीचड़ को हटा दें। तो यानी अगर इस तरह का अगर आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपके गांव में या आपके क्षेत्र में अगर लंपी स्किन आ गई है
1: जी,
0: तो आपके पशु उनसे को आप उनसे बचा सकते हैं।
1: यानी साफ सफाई का देखिए विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसे में जो मच्छर मक्खियां हैं वो वाहक बन जाते हैं इस तरह के जब रोग फैलने लगते हैं। तो साथ ही यहां अजीत जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लंपी स्किन वायरस जब आ जाता है या पशु में, एक गांव में अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो क्या इस बीमारी को हम दूसरी बीमारियों से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्या उनके लिए भी ये किसी तरह का प्रवेश द्वार हो सकता है?
2: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और अपने किसान भाइयों के दिमाग में ये चल रहा है। देखो, कोई भी बीमारी आ सकती है या आ जाती है तो उसके अंदर दूसरी बीमारी आने के खतरा बना रहता है, क्योंकि इससे पशुओं की जो रोगरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है
1: जी।
2: तो मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि देखो ये बीमारी तो एक नई है, लेकिन पशुओं के अंदर और भी बीमारियां अपने संक्रमण टाइप की पैदा हो सकती हैं। इस बीमारी का तो हमने अभी आपने देखा कि उसके रोग बचाने के उपाय किए कि भी हमें वैक्सीन करनी चाहिए, लेकिन इस बीमारी के साथ साथ अगर, क्योंकि पशुओं में कई टाइप की संक्रमण बीमारियां हो सकती है, जिसमें खुरपका मुंहपका बहुत ही एक संक्रामक रोग है, इसकी साल में अपने को 2 बार वैक्सीन करवाते रहने चाहिए। ये बीमारी आ गई, साथ में खुरपका भी आ गया तो अपने लिए एक भयंकर रूप धारण कर सकती है। तो खुरपका की बीमारी भी आ सकती है, साथ साथ में गलघोटू नामक बीमारी भी है, वो भी अगर वैक्सीन नहीं करेंगे तो मेरी एक पशुपालकों को बार बार सलाह है कि जो बीमारियां पशुओं में संक्रमण टाइप की हैं और जिनसे बहुत अधिक हानि हो सकती है, खुरपका मुंहपका, गलघोटू, और एक अपने भारत सरकार ने अभी एक बहुत 2019 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था जिसके तहत हमें खूब खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस ये बीमारियों को एक प्रकार से अपने बचाव के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी को बचाने के कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसमें वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है।
1: मिशन मोड में यानी इसकी शुरुआत
2: मिशन मोड में इसकी शुरुआत करी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी है वो पशुओं में तो बीमारी करती करती है जिसके अंदर गर्भधारण गिर जाता है, और साथ में उसमें ये पाया गया कि वो मनुष्यों में बहुत भयंकर बीमारी पैदा करती है। तो ऐसे में पशुपालक क्यों नहीं अपना ऐसे तरीके अपनाएं जैसे कि उसको समय पर, और ब्रुसेलोसिस में 4 से 8 महीने की जो मादा बछड़ियां हैं उनमें टीका करना बहुत जरूरी है। तो ये कार्यक्रम अपने भारत सरकार ने एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर स्टार्ट किया हुआ है। ब्रुसेलोसिस भी नहीं आएगी, खुरपका मुंहपका नहीं आएगी, साथ में अपनी गलघोटू भी नहीं आएगी अगर अपन समय पर इनका टीकाकरण करते हैं।
1: टीकाकरण इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस बीमारी क्योंकि काफी खतरनाक बीमारी ना सिर्फ पशु बल्कि पशु से मनुष्य में भी आ सकती है। और आमतौर पर हम देखते हैं जब हमारा गर्भित पशु होता है तो उसकी आखिरी तिमाही के दौरान जो गर्भपात की समस्या आ जाती है, लेकिन ये जरूरी कि आप समय रहते टीकाकरण कराएं। डॉक्टर संजीत, जानना चाहेंगे आपसे जब टीकाकरण की हम बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पशुपालक है उनको ये लगता है अगर हमने पशु का टीका कराया तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा या बीमार हो जाएगा, इस तरह की जो धारणा बन जाती है तो कहीं ना कहीं पशुपालक पीछे हटने लगते हैं टीकाकरण से। क्या स्थिति देखते हैं आप?
3: देखिए, टीकाकरण की वजह से दूध उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। अगर जिस दिन टीकाकरण किया गया कि कुछ पशुओं में 1% 2% में जैसे बुखार की समस्या होगी या उनके अंदर कोई ऑफ फीड हो गया, इन वजह से उसका दूध प्रोडक्शन कम होता है, वो प्रोडक्शन भी केवल 1 या 2 दिन के लिए कम होगा, रेगुलर कम नहीं होगा, और वो वापस रिकवरी पे मोड पे आ जाता है। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने देखा है कि फील्ड में जब भी हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो या तो वो ये कहते हैं कि पशुपालक की इससे दूध कम हो जाएगा, या कहते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल है हमारा तो हम अगर इसको लगवाएंगे तो इससे अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भ जो है गिर जाएगा। तो इस तरह की समस्या कभी भी नहीं आती है। दूध उत्पादन 1 या 2 दिन के लिए कम होता है, और पशुपालक को यह समझना होगा कि अगर यह बीमारी आती है तो दूध प्रोडक्शन जो है 15 दिन 20 दिन और 1 महीने तक का नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। अगर 1-2 दिन का वैक्सीन की वजह से अगर कुछ पशुओं में होता है, वो भी केवल कुछ पशुओं में, हर पशु में नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर कोई उसको कैल्शियम है या मिनरल मिक्सचर है या इस तरह की चीज साथ में अगर हम देते हैं तो दूध प्रोडक्शन जो है मेंटेन किया जा सकता है।
4: किसान भाइयों, आपको लगातार लंपी वायरस की जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपको हामली रहा है, जेम के आपको ये हामलियों के लंपी वायरस जो बीमारी है इनकी समकवानी जरूरत नहीं मिला, केम के हाव इनो टीको बनी गयो है, नी दवाई आपने उपलब्ध थी गई है, लंपी वायरस में हूँ था ये अपना किसान भाइयों ये ना प्रोग्राम ने माध्यम थी हामलियों है, हमने आपको चर्चा करते ला के कहीं ना भी जो जानवर अपने जीव है अपने गाय बैल को जो भी है तो उनको अगर तिना अगर आप देखी के तिनाना जो सामड़ी है तिनी ऊपर अगर डवा हरकू थवा लागे गाठे बनवा लागे तो इन लंपी वायरस के है, तो इन लंपी वायरस थी वसवा हरू जो टीको है वो उपलब्ध है, तो आप हमने समकवानी जरूरत नहीं मिले इनकी आप निदान पावी सकी। अने साथ ही आप अगर आप देखी के जो भी पशु है जो हमने दूध आलतू है या दूध पी रू है तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा पोषण हम देख के ये आप यूँ इन पर भी इन टीको लगाड़ी दिन थी बचाव करी सकी है, तो इतना समकवानी बात नहीं मिले। इन्हीं हाथे इन्हीं चर्चा ने हजू भी आप आगे बढ़ाऊँ इनकी जोड़ेली हजू घनी खरी बातों ने लीन आप चर्चा करूँ, पर हमने समय थी गयो है एक नाना सा ब्रेक नो, आप हमने एक आप आहनी संस्कृति नो एक सुंदर छू गानू हमू तीनी बात इन चर्चा ने फिर था चालू करूँ। इतने बनेला रहो हमारी हाथें रेडियो डांडिया बिल 90.8 FM नी हाथें।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो डांडिया बिल 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: કિસાન ભાઈઓ, હમણે આપું એક સુંદર છું પ્યારું છું. આપણે પહેલી ગીતને સાંભળ્યું અને આપું લગાતાર લંપી વાયરસથી જોડેલી મહત્વપૂર્ણ વાતોને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યા હે. તો હમણે એના કાર્યક્રમમાં હજુ આપું એની એના લંપી વાયરસથી જોડેલી હજુ જાણકારીઓને હાસિલ કરી જાણીએ, કેમ કે ક્યાંક હજુ હું આપું કરી શકી, હું કારણ છે અને અલગ અલગ પ્રકારનો બી હોઈ શકે. તો એની પહેચાન કિકમ કરવાની અને કિકમ એનાથી આપણા બીજા જાનવરને બી વસાડેલા રાખવાનું.
1: પશુ સ્વાસ્થ્ય ઓર લંપી વાયરસ કે બારે મેં કિસ તરીકે સે જો લંપી સ્કિન ડિઝીઝ હૈ વો અલગ અલગ રાજ્યો કે પશુઓ મેં દેખને કો મિલ રહી હૈ ઓર ઉસકે સાથ સાથ જો પશુ સ્વાસ્થ્ય હૈ વો કૈસે હમારા પ્રભાવિત હો સકતા હૈ. ખાસ તોર સે યહાં ડોક્ટર પાઠક આપસે હમ જાનના ચાહેંગે કે જો હમારે ગર્ભિત પશુ હૈ અગર ઉનમે ઇસ તરહ કે લક્ષણ હમે નજર આ જાતે હૈ યા અભી નહીં હૈ લક્ષણ કિસી દૂસરે ક્ષેત્ર મેં ઇસ તરહ કે લક્ષણ સામને આ રહે હૈ તો ઉનકા જો ટીકાકરણ હૈ વો કબ તક કરાયા જા સકતા હૈ.
2: देखिए, अभी जैसे डॉक्टर यादव ने भी कहा, डॉक्टर शर्मा जी ने कहा, पहली बात तो है बरसात का मौसम है. जनरल बात कर रहा हूं कि पहले जितनी बीमारियां हैं, खासकर खुरपका, मुंहपका, एचएस और बीक्यू, इनका वैक्सीनेशन अगर कराया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराया है तो एक तो तुरंत करा लें. मन में ये भ्रम निकालते हैं कि इसका टीकाकरण से किसी तरह से पशु को कोई नुकसान होगा
3: जी.
2: अब आपने कहा कि जो है, जो सवाल किया कि जो गर्भित पशु हैं अगर एडवांस स्टेज में है, अगर हम लंपी स्किन की बात कर रहे हैं तो गोट पॉक्स की जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो अभी बताया गया है कि अगर उसमें लक्षण आ गए तो उसमें नहीं लगानी है. लेकिन क्योंकि ये प्रिवेंटिव है
3: जी.
2: जो स्वस्थ पशु हैं आपके, और ये बात भी हम कर रहे हैं गाय और भैंस की
3: जी,
2: हम और किसी पशु की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बीमारी इन्हीं दो पशुओं की है. तो आप जो है गोट पॉक्स की वैक्सीन जो कि अपने देश में उपलब्ध है, जैसा अभी डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि ये जो वायरस है ये पॉक्स वायरस की फैमिली का है
3: जी.
2: तो वो ये पाया गया है कि ये जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है वो पशु को नुकसान नहीं करती है. को और ऐसा नहीं है, कुछ किसान भाई सोच सकते हैं बीमारी तो मेरे को हो रही है लंपी स्किन मेरे पशु को और आप वैक्सीन दे रहे हो गोट पॉक्स की
3: जी,
2: तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो वायरस उनके साथ जो है उसका मेल है, उसके साथ जो उसका जेनेटिक मेकअप है. और ये पाया गया है कि जो लंपी स्किन डिसीज जो वायरस से हो रही है वो गोट पॉक्स की वैक्सीन लगने से वो पशु आपका सुरक्षित हो जाता है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि वैक्सीन के साथ साथ अगर आपके पशु में ये लक्षण आ गए, मैं फिर कहूंगा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है. आवश्यकता ये है क्योंकि इसमें जो शरीर के ऊपर गांठें हो जाती हैं इसलिए इसको गांठों वाला बीमारी या गांठों की त्वचा वाली बीमारी कहते हैं. कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों को मैंने अभी कुछ पशु पालकों से, मैं परसों कहीं गया था किसी गांव में, तो वो कह रहे थे कि भैया गांव में कैंसर की बीमारी आ गई है
3: जी.
2: तो मैंने उनसे सवाल करा कौन सा कैंसर पशुओं में आ गया, तो उन्होंने कहा जी वो स्किन में गांठ हो जाएंगी. तो ये कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, एक वायरस से जनित बीमारी है. और अगर इसका हम ध्यान रखें, पहली बात तो है कि पशु को जैसे डॉक्टर शर्मा ने बताया, मैं भी कहता हूं कि एक तो उसको संतुलित आहार दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए पशु को. बुखार अगर बुखार की स्टेज में भी अगर है, अगर आप वैक्सीन लगा देते अर्ली स्टेजेस में तो वो काम करती है. तो अगर आप उसका रखरखाव और उसका जो खाने का पीने का और जो असंतुलित आहार आप देंगे तो जो बॉडी इम्यूनिटी की डॉक्टर यादव बात कर रहे थे कि हमें शरीर की जो क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता पशु हो चाहे मनुष्य हो, अगर हम स्वस्थ हैं तो कब स्वस्थ होंगे कि अगर हमारे अंदर शरीर के अंदर पशु जो बीमारी है उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए. लड़ने की क्षमता काय से बढ़ती है, वो अच्छा खाने से बढ़ती है, अच्छा मिनरल मिक्सचर लेने से बढ़ती है. अच्छा, तो पशुओं में मिनरल मिक्सचर पे तो मैं हमेशा जोर देता हूं कि जो कभी कभी पशुपालक ये कहते हैं कि मेरे पशु जो है ब्याया ब्याने के बाद दूध ज्यादा नहीं दे रहा है, दूध की मात्रा कम हो रही है. कभी कभी कहते हैं कि हमारा पशु जो है हीट में नहीं आया, कभी कहते हैं कि जो है पशु का जो दूध है वो निकल नहीं रहा है. तो उसका कारण एक ये भी है, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने पशु को समय से मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं. मिनरल मिक्सचर की हम जब बात करते हैं, पशु के स्वास्थ्य से जोड़ता हूं हमेशा उसको कि मिनरल मिक्सचर भी एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है. जो पशुपालक भाई तमिलनाडु में है, जो पशुपालक भाई पंजाब के हैं, उन आपके क्षेत्र के हिसाब से जो है मिनरल मिक्सचर मिलता है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, यानी आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र की जलवायु, आपके क्षेत्र की जो सॉइल है उस हिसाब से पशु को कौन से मिनरल की कमी हो सकती है उनकी पूर्ति करने के लिए उसका एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर देते हैं. तो अगर आप उस हिसाब से पशु को मिनरल मिक्सचर भी देंगे तो जो पशु की रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। और खासतौर से अजीत जी अगर देखा जाए, क्योंकि अभी जो पशुपालक हैं, अभी जैसा डॉक्टर पाठक ने बताया कि एक सिर्फ इस तरह की जो अफवाह है वो फैला दी गई कि ये तो कैंसर रोग है, पशुओं की कैंसर बीमारी है, जो पशुपालक है वो अंतर नहीं कर पाते। कभी कभी उनका मानना कहना ये होता है कि जो पशु का थन है उस पर उन्हें किस तरह की गांठें नजर आई, जबकि कभी कभी जो लंपी स्किन में हम बात करते हैं कि शरीर पर गांठें नजर आती हैं, और जब अगर थन पे इस तरह की गांठें नजर आए तो थनेला का भी वो लक्षण माना जाता है, जो कि एक गंभीर समस्या है पशुपालकों के लिए, पशुओं की। तो वहां पर किस तरीके से वो सही देखरेख कर सकते हैं और अंतर कर सकते हैं बीमारी में?
3: ये आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल किया है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी अपने देश में लंपी स्किन डिजीज आ रखी है और उन पशुओं को आप देख भी रहे हैं। पहले बीमारी अपने देश में नहीं थी, तो उस टाइम क्या अगर थनों पर अगर कोई इस टाइप की गांठें आ जाती थी तो ये लंपी स्किन डिजीज नहीं मानी जाती थी। और अभी देखो आप सारे शरीर पर ही ये गांठें आ रही है, थनों पर भी आ सकती हैं। तो इस प्रकार से अगर सारे शरीर पर ऐसी गांठें नजर आ रही हैं तो इसमें माना जाता है कि एक प्रकार से लंपी स्किन डिजीज है। अगर सिर्फ वो थनों में रह रही थी और अपने देश में ये नहीं थी, तब तो ये माना जाता था ये किसी पॉक्स के लीजन से या किसी और बीमारी के लीजन से। तो किसान भाई अभी इस टाइम एक प्रकार से पहचानने की कोशिश करें कि लंपी स्किन का जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में दिखाई देता है, और गांठे भी ऐसी टाइप की आती है, आप देखना दिखाई देने में बहुत ही बद्दी नजर आती है और उनको एक प्रकार से कैंसर नजर आता है, क्योंकि ये बीमारी अपने देश में पहली बार इतने व्यापक रूप में फैल रही है। तो किसानों को डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर पाठक साहब ने, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समय पर सबसे पहला इसका कि पशु चिकित्सक को बुला करके पहचान करवाएं क्या उसमें टेम्परेचर तो नहीं है
1: जी।
3: अगर टेम्परेचर है तो उसी टाइम इसका इलाज स्टार्ट कर दें और वैक्सीन का भी काम उसी टाइम करवाएं, क्योंकि ये बीमारी जब ग्रसित हो जाता पशु और उसमें हम वैक्सीन के लिए इसके लिए रिकमेंड नहीं करते हैं
1: जी। तो यानी पहले से ही बचाव हम करके चलें, टीकाकरण जो है वो करा लें, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही डॉक्टर संजीत, अगर देखा जाए जैसा कि अभी अजीत जी ने भी कहा कि जब शरीर पर गांठें नजर आने लगती हैं और कुछ समय बाद वो गांठें जो है जख्म में तब्दील हो जाती हैं, तब हम मान सकते हैं कि लंपी वायरस का जो प्रकोप है वो हो सकता है। और ऐसे में भी जो हमारे पशुपालक हैं जो पशु की देखरेख करते हैं, वहां पर लाल दवाई या कोई और इस तरह का जो उपचार जो है वो आप बताना चाहें उनको बचाव के लिए?
4: जी, जो भी लीजन्स बनेंगे, पस्ट्यूल्स बनती हैं
1: जी,
4: उनके ऊपर सबसे पहले आप बीटाडीन ग्लिसरीन का लेप कर सकते हैं। अगर बीटाडीन आपके वहां पे एरिया में अवेलेबल नहीं है तो हल्दी जो है वो हर घर में अवेलेबल होती है, हल्दी को एलोवेरा के साथ मिला करके इसको लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे आपने बताया लाल दवा जिसे बोला जाता है
1: जी,
4: उससे उसको साफ कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि जो मैगेट जो होते हैं वो मक्खी होती है, वो बैठ करके उसमें अंडे दे देती है और जिसकी वजह से खूब सारे उसमें कीटाणु बन जाते हैं
1: जी।
4: इस तरह की कोई सिम्टम जो है डेवलप ना हो, क्योंकि अगर मैगेट्स बन जाएंगे तो उसको ट्रीट करना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा साथ में, क्योंकि ये नोड्यूल्स बनते हैं और वो जो नोड्यूल है स्किन में भी है और सबक्यूटेनस टिश्यू में भी जाती है और कुछ एरियाज में तो वो मसल को भी इफेक्ट करती है
1: जी।
4: इसके लिए दो तरह की एंजाइम्स हैं, सेरेशियोपेप्टाइडेज और ब्रोमोप्रोटीएज। ये दो एंजाइम्स को अगर आप खिलाते हैं उस पशु को, नोड्यूल्स जो है 5 दिन में 7 दिन में बिल्कुल रिड्यूस होती चली जाएंगे
1: जी।
4: और वो डाइजेशन करती हैं, साथ में पैरास्टामोल जैसे बुखार के लिए हम लोग देते हैं,
1: तो
4: सेरेशियोपेप्टाइडेज के साथ पैरास्टामोल के कॉम्बिनेशन आते हैं, उसको हम खिला सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर हम साथ में देंगे, लिवर टॉनिक हम इसमें साथ में देते हैं। घाव का हमें इलाज करना है, एक लिवेमिसोल एक इंजेक्शन आता है जिसको 1 ml/30 kg बॉडी वेट के हिसाब से सब क्यूटेरियस लगाया जाता है
1: जी।
4: इसको भी 15 ml/cow लगाया जा सकता है जो कि सब कट लगाया जाएगा
1: जी।
4: इसकी वजह से भी वो इम्प्रूवमेंट उसकी इम्यूनिटी में होता है। और अगर 5 दिन बाद 7 दिन बाद आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है और तो फिर इसमें एंटीबायोटिक्स के लिए भी हमें जाना पड़ेगा। और कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि 6-7 दिन के बाद कुछ पशु में बहुत ज्यादा गंभीर निमोनिया की शिकायत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पैरों में सूजन हो जाती है, और उस केस में आपको उसका सही तरह से इलाज कराना बहुत जरूरी है। सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी नजदीकी पशु चिकित्सालय है उससे संपर्क करके उसका प्रॉपर इलाज कराएं, क्योंकि उस समय पे अगर इलाज नहीं कराया गया तो यह बीमारी घातक हो सकती है और पशु की मृत्यु हो सकती है।
1: बिल्कुल, देखिए समय रहते जो एक तरीके से बचाव की बात कही जाए, इलाज की बात कही जाए, वो बेहद जरूरी। और अगर आपको कुछ भी असामान्य लक्षण दिखाई देता है तो जो आपके नजदीक पशु चिकित्सक हैं, उनसे आप जरूर संपर्क करें, उसके बाद ही किस तरह का जो उपचार अगर आप शुरू करना चाहते हैं वो करें। और जो घरेलू उपचार आमतौर पर हमारे पशुपालक करते हैं उस पर आप ज्यादा निर्भर ना रहें, जरूरी यही अगर आप चाहते हैं जो पशुधन है उसकी सार्थकता हो सके तो आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें। यहां डॉक्टर पाठक और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे, जैसा कि अभी हम बात करें कि जो लंपी स्किन डिजीज है ये कहीं प्रवेश द्वार ना बन जाए दूसरी बीमारियों का, लेकिन जैसे जैसे जो पशु कमजोर होता चला जाता है तो कभी कभी पशुपालकों को लगता है कि खुरपका मुंहपका की समस्या भी हो सकती है, या आमतौर पर हम देखते हैं जो हमारे पशु हैं उनमें ट्यूबरक्लोसिस की भी समस्या आ जाती है, तो जो अंतर पहचानना वो ज्यादा जरूरी है। और अगर इस तरह के रोग भी हो रहे हैं, अगर पशु में टीबी की भी समस्या आ रही है तो उसका इलाज भी शुरू किया जाए।
2: बिल्कुल आपने सही कहा, ये दिमाग में आने वाली बात है। देखिए एक तो जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में इस तरह की जो गांठें बनती हैं इस लंपी स्किन डिसीज में जब बन रही हैं, पशुपालकों भाइयों को यही हम लोग बताना चाहेंगे कि आप भ्रमित न हो और भयभीत न हो
1: जी।
2: भ्रमित और भयभीत ये दोनों चीजें नहीं रखनी है अपने दिमाग में। जैसे ही आपका पशु बीमार होता है, मैं तो कहता हूं लंपी स्किन डिसीज के अलावा भी अगर कोई बीमारी की शुरुआत भी हुई है तो सबसे पहले अपने नजदीक के पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। हमारे देश में पशुओं में ट्यूबरक्लोसिस भी बीमारी होती है, उसके अलग लक्षण हैं। फुट एंड माउथ डिसीज जिसको खुरपका मुंहपका की बात कर रहे थे उसके जो लक्षण हैं वो सभी, क्योंकि इसका नाम खुरपका और मुंह पका यानी मुंह में भी इसके जो वैसे वो बनते हैं जिनसे लार आती है और छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, इसके अलावा खुर में ही बन जाते हैं। जबकि लंपी स्किन डिसीज में हम क्या बता रहे हैं, और जैसा आप जानते हो कि पूरे शरीर में धीरे धीरे करके, क्योंकि ये जो वायरस है हमारी जो जो जो पशु की जो स्किन है यानी त्वचा है उसके नीचे जो है कुछ ग्रंथियां होती हैं, लिम्फ नोड होती हैं, उन लिम्फ नोड में ये वायरस पनपना शुरू कर देता है, उनमें बढ़ना शुरू कर देता है, तो वो गांठें बन बन के निकलती हैं उसमें, और वो गांठें पूरे शरीर पे धीरे धीरे करके पूरे शरीर पे आ जाएंगी। तो ये लक्षण जो है इस तरह के गांठों के लक्षण है वो सिर्फ लंपी स्किन डिजीज में ही होते हैं
1: जी।
2: तो इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और साथ में ये भी देखिए कि ये बीमारी आ कैसे रही है, आपके गांव में कहां से आ रही है, आपके क्षेत्र में कहां से आ रही है, या आप जहां आप रहते हैं जिस मोहल्ले में आपके पशु रहते हैं तो वहां देखिए कि चीचड़ों का प्रकोप ज्यादा तो नहीं है, वहां पर जू तो नहीं है, ये जू को भी पाया गया है कि वो भी जब खून चूसता है पशु से तो इसके साथ वायरस को ट्रांसमिट करता है। जो मक्खी है, जो खून चूसने वाली मक्खियां हैं
1: जी,
2: मैं उनकी बात करूंगा कि ये वायरस जो है खून चूसने वाली मक्खियों के माध्यम से भी जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अगर ये सब चीजें आप नजर रखोगे तो आप अपने गांव को, अपने क्षेत्र को इस बीमारी से बचा सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा भ्रम न माने मन के अंदर, मैं भ्रम की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाँ ये क्योंकि ये वायरस से बीमारी है और पहले ये शुरुआत हुई थी इसकी गुजरात से, धीरे धीरे करके एक स्टेट में गया, एक राज्य में गया, आज 20 राज्य के पशु गौवंश है हमारे, भैंसों में कम है लेकिन गौवंश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और हमारे जो गौवंश हैं, अपने जो स्वदेशी गौवंश हैं, हम ये कहते हैं, मैं खुद कहता हूं एक वैज्ञानिक रूप के रूप में, कि हमारे गौवंशों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है देसी नस्ल के जो गौवंश हैं, लेकिन फिर भी ये लंपी स्किन डिसीज उनमें भी हो रही है, उनके अंदर भी जा रहा है, क्योंकि ये वायरस है और ये वायरस जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप सब जानते हो कि जो वायरस है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं
1: जी।
2: तो आपके अपने पशुओं को अगर आप लंपी स्किन डिसीज से बचाना चाहते हैं, और बचाना चाहते क्या है, बचाना है
1: जी।
2: हमें अपने पशुओं में बीमारी नहीं होने देनी है लंपी स्किन, क्या ना फुट एंड माउथ डिसीज भी ने, अब तो इसके टीके के भी अभी हम बात करेंगे कि इसका जो गोट पॉक्स का टीका है वो अवेलेबल है, सरकार की तरफ से अवेलेबल है
1: जी।
2: और अभी जो डॉक्टर यादव कह रहे थे, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इतनी जल्दी पहल करी है, और पशु स्वास्थ्य पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है
1: जी,
2: जिसको हम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कंट्रोल प्रोग्राम जो सितंबर 19 में उन्होंने लॉन्च किया था
1: जी।
2: ये मैं कहता हूं ये तो हमारे पशु पालकों के लिए एक वरदान है
1: जी,
2: क्योंकि आपको ये 100% जो इसकी जो जो जो सहायता है फाइनेंशियल असिस्टेंट 100% भारत सरकार की तरफ से मिलती है
1: जी।
2: पशुपालक भाइयों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम के तहत आपके पशु का जो जो टीके लगते हैं, जो अभी डॉक्टर यादव ने भी बताया उसी बात को मैं फिर दोहराना चाहूंगा, आप ध्यान रखिए इन टीकों के लगाने के लिए आपको एक पैसा नहीं देना है
1: जी।
2: बस आपको क्या करना है, आपने अपने पशु को नजदीक के पशु चिकित्सालय में ले जाना है, और आपका जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉन्च प्रोग्राम है उसके तहत आपका पशु 100% इन बीमारियों के अंडर में कवर होगा
1: जी।
2: ये वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई है, अभी तक नहीं लगवाई है, तो कृपया अपने पशुओं को ये वैक्सीन लगवा लीजिए, एक बात।
1: दूसरा का यानी जो ख्याल है वो जरूर रखना चाहिए हमारे पशुपालकों को, और पशु स्वास्थ्य बेहतर रह सके, हमारे पशु निरोगी रह सके, इसके लिए निःशुल्क जो अभियान है देखिए वो चल रहा है टीकाकरण का। अजी जी, और जानकारी आपसे हम इस बारे में लेना चाहेंगे, क्योंकि जो पशुपालक है उनको जानकारी नहीं हो पाती कि क्या जो टीकाकरण है वो निःशुल्क है या कौन सा टीका कब लगवाना है। अभी का जो समय है, हालांकि आमतौर पर तो ये कहा जाता है जब मानसून के पहले से यानी बारिश आने से पहले अगर हम टीकाकरण करा लें, लेकिन क्या अभी भी समय है कुछ बीमारियों के लिए अगर टीकाकरण पशुपालक कराना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं इस महीने में?
3: मैं पशुपालकों को ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो टीकाकरण कार्यक्रम है खुरपका मुंहपका, उसमें साल में 2 बार टीकाकरण किया जा रहा है
1: जी।
3: एक बार बरसात से शुरू होने से पहले और एक बरसात के बाद 6 महीने के अंतराल पे, और ये टीकाकरण निःशुल्क बिना पैसे के अपने पशु चिकित्सा जो अधिकारी है वो घर घर जाकर कर रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अब भारत सरकार ने एक नई स्कीम जारी की है, पशु स्वास्थ्य इनका कार्ड बनाया गया है
1: जी।
3: उस कार्ड का क्या जानकारी है उसमें पशुओं के बारे में सब कुछ जानकारी उसमें रिकॉर्ड की जा रही है, ये एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। उसका फायदा क्या रहेगा कि इस पशु को कब टीका लगा था और कब नहीं लगा था, और इससे एक प्रकार से जरूरी किया जा रहा है। इसमें अपन देखेंगे कि अभी लंपी स्किन डिजीज आई है, अगर उसका स्वास्थ्य कार्ड पशु स्वास्थ्य कार्ड बना है तो वो उसमें एक प्रकार से दर्ज हो जाएगा कि हमारे इन पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का टीका भी लग गया है, पहले खुरपका मुंहपका भी लगा हुआ था, एक अपने पास ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी में पहले भी बता रहा था, इसका भी भारत सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण की योजना बनाई है
1: जी।
3: और इस योजना के तहत अपने को जो टीके किसानों को दिए जा रहे हैं वो बिना पैसे के और घर घर जाकर के लगाए जा रहे हैं
1: जी।
3: इसमें भी एक जरूरी यह है कि ये टीकाकरण सिर्फ जो मादा बछड़ियां हैं 4 से 8 महीने की, ये नर में नहीं लगाया जाता है,
1: और पशु
3: चिकित्सक इसको घर घर जाकर लगा रहे हैं, और अब लगता है कि अभी वो नहीं लगाए हैं ये टीके, तो आप तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और इन टीकों को तुरंत लगवाएं, और स्वास्थ्य पशु स्वास्थ्य कार्ड में इसकी जानकारी वो दर्ज हो जाएगी, और आगे चल करके ये भारत सरकार के प्रयास चल रहे हैं पूरे देश को सभी पशुओं के बारे में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उसकी जानकारी किसी को भी लेनी हो कि इस पशु में आपके पास 5 पशु हैं उनमें कौन कौन से टीके कब कब लगे थे, वो सारी आपके तुरंत आपको मुहैया की जाएगी और पशुपालकों को तुरंत बता भी जाएगी। और ऐसा अगर कोई नहीं कर रहा है तो आगे भारत सरकार कुछ नियम इस टाइप के बना रही है ताकि, क्योंकि अपना पशुपालन व्यवसाय एक बहुत अधिक आगे आय का अर्जित करने का एक साधन बन रहा है, अगर समय रहते, मैं बार बार कह रहा हूं समय रहते, जैसे कि अपने पास लंपी स्किन डिजीज आ गई
1: जी।
3: अब इस बीमारी को अगर अपन समय रहते जो पशु इससे ग्रसित नहीं हुए हैं उनके बारे में टीकाकरण के बारे में तुरंत सोचें और लगवाएं, सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे भी टीकाकरण आ रहा है आप लगवाएं ताकि ये उन पशुओं के पशु स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज हो सके और अपने देश में ये मालूम हो सके कि कितने पशु टीकाकरण किए जा चुके हैं और कितने बिना है।
1: बिल्कुल, यानी एक नई पहल देखी, क्योंकि तो जाहिर तौर पर हमें भी दिखता है पशुपालन क्षेत्र के लिए अलग से देखिए मंत्रालय अब हमारे देश में है, और जिसका जिक्र अभी यहाँ अजीत जी भी कर रहे हैं, जो हमारा जो ई पशु हाट पोर्टल की अगर बात की जाए वहां सारी जानकारी आपको मिल जाती है टीकाकरण पशु का कब हुआ है और कब हमें कराना चाहिए, और इसके साथ साथ यूआईडी नंबर जो है वो जनरेट किए जा रहे हैं जिससे आप पहचान कर सके, टैगिंग जो है वो लगातार चल रही है। और खासतौर से डॉक्टर संजीत, अगर देखा जाए जिस तरीके से ये एक आधुनिक बदलाव जो है अब हम पशुपालन क्षेत्र में भी देख रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जो डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र है उस पर बहुत से लोग हैं जो आत्मनिर्भर हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक हम देखते थे कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वहां पे कहीं ना कहीं कृषि एक रीढ़ की भूमिका निभाती थी हमारे देश के लिए, लेकिन अब वहां जो योगदान है लगातार पशुपालन क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है।
4: देखिए पशुपालन एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रहा है, इसके तहत पहले क्या होता था कि एक पशुपालक के पास दो पशु होते थे, चार पशु होते थे, दस पशु होते थे। अब क्या है, जैसे दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में बड़ी बड़ी डेयरी कॉलोनीज हैं। डेयरी कॉलोनीज के अंदर किसी पशुपालक के पास 500 बफलोज हैं, 500 भैंस हैं, किसी के पास 50 गाय हैं, किसी के पास 100 गाय हैं। इसी प्रकार जैसे भारत सरकार ने इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ावा देने के लिए, अपनी जो देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, तो जगह जगह पर जो हमारी गिर नस्ल है, थारपारकर है, उनको लेकर के अलग अलग जो पशुपालक हैं और जो उसको एक बिजनेस के रूप में ले रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं
1: जी।
4: और डेयरी जो है, डेयरी सेक्टर में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे एक्सपोर्ट है, बफलो मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, और मिल्क का है, मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जो सोमेटिक सेल काउंट होता है मिल्क के अंदर उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इन चीजों को देख करके भारत के जो दूध की डिमांड है विदेशों में बढ़ेगी, इसीलिए हमें इस पे कार्य करने की जरूरत है ताकि हमारा जो है दूध, हम दूध प्रोडक्शन में तो आज नंबर वन हो गए लेकिन एक्सपोर्ट की बात करें, बफलो मीट एक्सपोर्ट में है और बफलो मीट एक्सपोर्ट को भी आगे हमें लगातार मेंटेन करने के लिए जरूरी होगा कि जो एफएमडी है, जैसे
1: जी
4: जो भी एफएमडी अफेक्टेड एरिया होता है वहां से बफलो मीट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो जो भी कंट्रीज यहां से लेती हैं मीट, उनको ये देखना होता है कि उस एरिया में कोई भी एफएमडी का आउटब्रेक नहीं हुआ है, तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए भारत सरकार ने एफएमडी कार्यक्रम चलाया है। एफएमडी की वजह से 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ का एनुअल लॉसेस भी होते हैं
1: जी, बिल्कुल।
4: इसको भी रोकने की जरूरत है, दूध प्रोडक्शन में भी कमी आती है।
1: तो देखिए, अगर हम सावधानी बरतेंगे तो सीधे तौर पर जो हमें आर्थिक नुकसान होता है, एक पशुपालक को जो नुकसान हो सकता है वो आप रोक सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, और उसके साथ ही अगर आपका नुकसान थम जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो मुनाफा है वो बढ़ने लगेगा। और पशुधन के साथ साथ हर पशुपालक की उम्मीद यही होती है कि जिस तरीके से दूध उत्पादन वो चाहते हैं बढ़े, साथ ही उनका मुनाफा भी बढ़ता रहे, लेकिन इसके लिए सावधानी अपनाना बेहद जरूरी।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो, आपरी बातें।
1: जब आ जाती हैं हमारे पशुओं में तो क्या उनका इलाज हो सकता है, ना सिर्फ लंपी स्किन डिजीज की बात की जाए बल्कि जो तमाम रोग हैं, वहां पर आपको सावधानी अपनाना बेहद जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण यही कि जो सावधानी अगर आप अपनाएंगे, साफ सफाई अगर आप रखेंगे, तो काफी हद तक तमाम जो रोग बीमारियां हैं उनसे आप अपने पशु का बचाव कर सकते हैं। लेकिन यहां जिस तरीके से हमने डॉक्टर पाठक शुरुआत में बात की कि जो लंपी स्किन डिजीज है इसके लिए बाकायदा एक विशेष टीका जो है वो तैयार किया गया है, और ये टीका कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश में ही तैयार किया गया है, इस बारे में आप क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे?
2: हाँ देखिए मुकुल जी, ये बहुत अच्छी जो है ये खुशी की बात है, क्योंकि ये जो लंपी स्किन जितनी जल्दी हमारे देश में आया उतनी जल्दी हमारे जो पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने वो दिन रात उन्होंने मेहनत करके और स्वदेशी निर्मित, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एनिमल हेल्थ में, पशु स्वास्थ्य में अगर है तो ये है कि लंपी स्किन डिसीज की जो वैक्सीन है स्वदेश में निर्मित, हमारी तरह पूरी तरह से भारतीय, यानी भारतीय का कहने का तात्पर्य है कि जो वायरस हमारे देश में सर्कुलेट हो रहा है, हमारे पशुओं में वायरस सर्कुलेट हो रहा है, उसी वायरस पे काम करके दिन रात मेहनत करके हमारे जो वैज्ञानिक हैं पशु चिकित्सा क्षेत्र से, इसके लिए विशेष रूप से हमारे दो संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा और हमारे पूरे देश के पशु पालकों को जानकारी होनी चाहिए कि एक हिसार में इक्वाइन का, घोड़ों का एक संस्थान है, और एक इज्जत नगर में हमारा IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिसार का इक्वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके लंपी प्रोवैक वैक्सीन जो है वो बनाई है
1: जी।
2: ये पूरी तरह से स्वदेशी तेक्निक से बनाई गई वैक्सीन है और ये बड़ी इफेक्टिव है। इसके जो शुरू के जो परिणाम देखे गए और इसका जो इसको जो लॉन्च किया था वो हमारे माननीय कृषि मंत्री और माननीय पशुपालन मंत्री के द्वारा किया गया था, तो वैज्ञानिकों को मैं इस बधाई दूंगा और उनका जो प्रयास था, और इस तरह से एक नया एक आयाम खोला गया है कि धीरे धीरे करके जैसे ही बीमारी आई हमारे पशुओं में, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत शुरू कर दी और इसकी वैक्सीन आज हमारे देश में उपलब्ध है। हालांकि वैक्सीन का अभी कॉमर्शियली ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बहुत शीघ्र ही इस वैक्सीन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात हम करते हैं। क्या मतलब है, जिस तरह से FMD की वैक्सीन बहुत सारी कंपनी बना रही है, प्राइवेट कंपनी जो है इसको लेंगी, तो स्वदेश निर्मित यानी मेक इन इंडिया वैक्सीन जो है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा लंपी स्किन बीमारी के लिए बनाई गई है।
1: जी, तो देखिए लंपी प्रोवैक नाम से अभी तक जो वैक्सीन तैयार की गई है, और जैसे हमने आपको कहा, क्योंकि जब भी कोई नई वैक्सीन आती है तो उसमें समय लगता है, जितना समय पहले लगा शोध में, उसके बाद इसको बाजार तक पहुंचाने के लिए या पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए जो उसमें समय लगता है, अब उसकी प्रक्रिया हम मान सकते हैं कि वो लगभग शुरू हो चुकी है और कुछ समय बाद ये पशुपालकों को मिलने भी लगेगा। लेकिन अजीत जी, अगर देखा जाए तो कभी कभी जो पशुपालक हैं उनकी समस्या यही रहती है कि या तो उनको जो टीकाकरण है उसकी जानकारी नहीं हो पाती या जो वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं हो पाती। इस दिशा में किस तरीके से सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है?
3: मैं भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस बीमारी को एक प्रकार से रोकथाम करने के लिए बहुत अधिक तेज गति से प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि क्योंकि अभी डॉक्टर पाठक साहब ने बताया कि भाई देखो, हमारे पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई है
1: जी,
3: और ये वैज्ञानिकों के बहुत अच्छे प्रयास हैं और अपने देश में ही निर्मित है, तो एक प्रकार से ये मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन क्योंकि देखो, कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसकी एक प्रक्रिया है
1: जी,
3: उस प्रक्रिया में कॉमर्शलाइज करने के लिए कई एक प्रकार से कदम है जिसको एक प्रकार से जो कंपनी जाने उसमें समय लगेगा
1: जी,
3: और उस समय को नष्ट न करने के लिए, क्योंकि अपने पास ये पाया गया है कि जो अपनी गोट पॉक्स है, अगर गोट पॉक्स के टीके अपने पास कम उपलब्ध है तो शीप पॉक्स पे भी जा सकते हैं
1: जी,
3: वो भी इससे मिलती जुलती वैक्सीन है। लेकिन क्योंकि अब भारत सरकार के प्रयास हो रहे हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी कंपनी है
1: जी,
3: वो इसमें उनको ये कहा जा रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी गोट पॉक्स अभी आप तुरंत स्केल बहुत अधिक स्केल पे बनाएं, क्योंकि इससे क्या है ना कि अपने को बीमारी तो अभी आ रखी है
1: जी,
3: अब अपने को मान लो इस प्रक्रिया में और 6 महीने लग जाएंगे कमर्शियलाइजेशन में, लंपी स्किन डिजीज जो लंपी प्रोवैक जो बनाई है उसको समय को बर्बाद होने से और अपने पशुधन को बचाने के लिए अभी भारत सरकार ने नियम बनाए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अभी प्रोडक्शन बढ़ाएं गोट पॉक्स वैक्सीन का
1: जी।
3: और इसमें हमें कामयाबी ये मिल रही है कि ये प्रोडक्शन अच्छा दे रही है, मतलब पशुओं को बचाने में ये काफी कारगर सिद्ध हो रही है
1: जी, बिल्कुल। देखिए
3: इससे क्या होगा कि आगे चल करके अपने देश को अभी एक प्रयास किए जा रहे हैं कैसे न कैसे इसको यहीं रोका जाए, क्योंकि ये पशुधन को बहुत नुकसान कर रही है। गोट पॉक्स की बहुत तीव्र गति से प्रोडक्शन किया जा रहा है और इसकी सप्लाई चेन, क्योंकि ये देखो गोट पॉक्स भी एक प्रकार से कोल्ड चेन की जरूरत है इसको पहुंचाने में, तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे ये गुणवत्ता के साथ, देखो टीका जब बनाया जाता है और जब तक लगाया जाता है उसमें पाया गया है कि गुणवत्ता किसी तरह से कम न हो, तो उस प्रकार से नियम कायदे बनाए हैं कि भाई ये अपनी जो वैक्सीन है गोट पॉक्स की, ये जब तक लंपी प्रो वैक्सीन नहीं आ रही उस टाइम तक इसको अच्छी तरह से लगाया जाए, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करी जाए और सभी पशुपालन के जो विभाग अपने देश के उनको बार बार भारत सरकार ने कई प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए, और क्योंकि एक प्रकार से एक अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ा इस टाइम ये डिजीज का अटैक हुआ है, तो इसको प्रयास के रूप में भारत सरकार बहुत अधिक प्रयास कर रही है और इसमें अपने को ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी वैक्सीन इसको कारगर सिद्ध हो रही है उसको तुरंत लगाएं और आगे आने वाले समय में, क्योंकि अपनी एक प्रकार से ये जो लंपी प्रोवैक बनाई है एक बहुत अच्छी वैक्सीन,
1: विशेष टीका जब मिल जाएगा तो तभी सहूलियत रहेगी पशुपालकों को, और अभी अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप उस जो गॉड पॉक्स का टीका है वो लगवा सकते हैं, जिससे पशु इस तरह की बीमारियों से बचा रहे। साथ ही डॉक्टर संजीत, और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे बचाव के लिए, क्या जो हमारे पशुपालक हैं अगर किसी पशु में इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरे पशुओं को अलग कर दें बचाव के लिए, क्या ये भी संभव
4: है? आइसोलेशन जो है ये पहली चीज है, जब भी किसी पशु के अंदर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं उसको हमें अलग कर देना है। इसके अलावा मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये ध्यान रखें कि जब भी क्या होता है कि पशु जो है नया पशु को खरीद के लेके आते हैं या अपने पशु जो है उसको बेचते हैं, इसमें ध्यान रखें, जब भी कोई नया पशु आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने डेयरी फार्म पे, उसका ध्यान रखें कि उसमें कोई भी इस तरह के लक्षण ना हो। क्योंकि आपके अगर सपोज आपके पास 10 पशु हैं और कोई नया पशु आप लेकर के आते हैं, नई गाय आप लेके आते हैं, उसमें अगर थोड़े बहुत भी लक्षण हैं तो वो आकर के ये संभावना है कि 10 के 10 पशुओं को वो संक्रमित कर सकती है। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी नया पशु जो इंट्रोड्यूस ना करें, कोई भी बीमार पशु अगर है तो उसको आइसोलेट कर दे
1: जी।
4: जो चारा पानी और इवन जो बाहर के जो लोगों की विजिट है उसको अवॉइड करें। जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको एक संतुलित आहार दें, और किसी भी प्रकार के कोई लक्षण अगर नजर आते हैं
1: जी,
4: तो चाहे वो बुखार है, चाहे उसमें लेजन्स आ जाते हैं, कोई निमोनिया की शिकायत है, पैर में सूजन आ रही है
1: जी,
4: या कोई और भी किसी प्रकार का कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका समुचित उपचार करें।
0: किसान भाइयों, ते आपण हमने समकवानी जरूरत नहीं मळे, केम के जो भी ये लंपी वायरस है इनो इलाज है, आपण मेरेवाला स्वास्थ्य केंद्र पर जाइन आपू इनो इलाज करावी सकीए, आपड़ा जो भी डॉक्टर है इना टीका लगाड़वा शुरू करना क्या है। ते किसान भाइयों, यहाँ आहार के आपण समकवानी जरूरत नहीं मळे, जो भी पशु है अगर आपण लागी रहे के इना इना जानवर ने ये तकलीफ थई रही है, तो तेना पशु ने आपण बाकी पशु थी थोड़ूक अलग मेल देवानू, अने आपण असल तरीके थी उनो ध्यान रखवानी जरूरत है, तेना पौष्टिक आहार हलवानी जरूरत है। एमनी के आप बीमार थई गयो है, आप नहीं खबर एम करीने आपू नहीं आली, पर तीनों वहां पर वधु ध्यान रखवानी जरूरत है। तो किसान साथियों, आज ने ना कार्यक्रम में हम आशा करी है कि तमुन ना लंपी वायरस थी जे भी शिकायत थी, जो भी समक थी, ती आंगळी मरी गई है, अने हाव आपू इनी बीमारी थी लड़वा हरू आपू तैयार है, अने अपना जानवर जो है वो वसी सके है। तो आप एक एक काम करूँ है कि आप ढीले ही नहीं करवी है, कि अगर आपने लागी रहो है कि थोड़ी घनी तकलीफ है अपना पशु ने, तो आप हूँ करवानू के मेरे वाला स्वास्थ्य केंद्र पर ले जावानू, अने इना बारा में डॉक्टर ने बताड़वानू कि एम एम अपना डगरा ने ये तकलीफ है। साथ ही हम आशा भी करी है कि तमू आप मेरे वाला जो भी तुम्हारा किसान साथी है, पड़ोसी किसान मित्र है, तिनान भी इना बारा में बताड़ो कि हमने जो लंपी वायरस है इना बारा में जे बातें साली रही है, हमने घनी खरी भ्रांतियों भी साली रही है, तो इनी भ्रांतियों ने आप नहीं होसवानू। आप अभी आजना इना कार्यक्रम ना माध्यम थी आपने जानियो है कि इनो इलाज है, इनी दवा बनी चुकी है, और अपना पशु जो है वो फिर थी स्वस्थ थी सके, अने जो भी अगर दूध कम भी थी गयु है तो तीनों दूध भी पासू बराबर आवी जाए। इतने किसान भाइयों, आजना इना कार्यक्रम में इतरुस आपू अपनी काल मुलाकात था है इना समय पर, इतने बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो टाइटाबिल 90.8 FM पर।
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
7: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
6: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग है कला और पेंटिंग की सतरंगी दुनिया का। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपने पेशे से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों, संवेदनाओं और रचनात्मकता से एक अलग पहचान बनाते हैं। आज हमारी अतिथि ही एक ऐसी विशिष्ट व्यक्तित्व है। उन्होंने पिछले 45 वर्षों से कला साधना को अपना जीवन समर्पित किया है। भारत ही नहीं बल्कि पोलैंड, सिंगापुर, लेबनान और ब्रुनेई जैसे देशों में रहकर विभिन्न संस्कृतियों को करीब से देखा, समझा और महसूस किया है। एक और जहां उन्होंने वरिष्ठ भारतीय डिप्लोमेट की जीवन संगनी के रूप में विश्व के अनेक देशों का अनुभव प्राप्त किया है, तो दूसरी ओर उन अनुभवों को अपने कैनवास पर रंगों और भावनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उनकी कला यात्राओं ने देश विदेश की प्रतिष्ठित आर्ट गैलरियों तक ले गई, जहां उनके अनेक सोलो एग्जीबिशंस को बहुत ही सराहना और एप्रिसिएशन मिला। आज हम उनसे बात करेंगे उनके बचपन की, उनकी यात्राओं की, एक डिप्लोमेट जीवन के रोचक अनुभवों की और निश्चित रूप से उनकी कला की उस दुनिया की, जहां रंग केवल रंग नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों की भाषा बन जाते हैं। तो आइए स्वागत करें प्रख्यात चित्रकार, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला की छाप छोड़ने वाली आदरणीय प्रोफेसर कल्पना चौधरी जी का। कल्पना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, थैंक यू सो मच आलोक जी कि आपने हमको अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं अपने को, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ अपने बारे में कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ।
1: तो चलिए कल्पना जी, बहुत अच्छा लगा है, मैं आपकी आवाज ही सुन के बहुत अच्छा लगा। तो कुछ शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत आपके बचपन से कर लेते हैं। बताइए बचपन का जिंदगी कैसी थी, क्या आप लखनऊ में ही हमेशा रही हैं, आपकी फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे थे, उनके बारे में कुछ कुछ बातें हमारे साथ शेयर कीजिए।
2: आलोक जी, मैं यही कहना चाहूंगी बचपन

0: याद आते हैं।
1: आई नो, क्योंकि ये जो बचपन में जो स्पर ऑफ द मोमेंट पे आप कुछ भी कर गुजरते हैं उस वो हाँ, बात ही अलग होती है। बिल्कुल सही बिल्कुल, बात है
0: बिल्कुल, बिल्कुल इतना ना हम उसको वे करते हैं, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, बस इंजॉय करते हैं चीजों को, चाहे वो स्कूल हो, चाहे पेरेंट्स के साथ मोमेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ मोमेंट्स हो।
1: तो अब जैसे आपने इंग्लिश लिटरेचर किया, जर्नलिज्म किया, एजुकेशन किया और फाइन आर्ट्स जैसे इतने डाइवर्स सब्जेक्ट्स की स्टडी की, तो आपको क्या लगता है अब कि आपकी जो आज की पर्सनैलिटी है और जो आपकी थिंकिंग है या सोच है, उसने इन सब चीजों की जो मिली जुली आप एक तरह से उसने प्रभाव डाला, कुछ इसके बारे में बताएंगी आप कि इतना इंग्लिश लिटरेचर से लेके फाइन आर्ट्स तक?
0: जी जरूर बताऊंगी। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में बहुत बदलाव आया इतनी पढ़ाई करने के बाद। लिटरेचर से मैंने बहुत सीखा, इंग्लिश लिटरेचर से एक क्रिटिकल थिंकिंग की पावर डेवलप हुई, एक इमेजिनेशन डेवलप हुआ, इंग्लिश डिक्शन, पावर ऑफ स्पीच, ये सब चीजों में बहुत डेवलपमेंट आया। एंड आई कुड जो कैरेक्टराइजेशन इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेल्स में होता है या शेक्सपियर के प्लेज में होता है, उन कैरेक्टराइजेशन को पढ़ने के बाद हमें एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स में, रियल लाइफ के लोगों में एक इंसाइट मिलती है। हम उनको एसेस कर सकते हैं, उनके अंदर झांक के देख सकते हैं।
1: नहीं नहीं, ये बात बहुत बजा फरमा रही है आप। और चलिए, ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, थॉमस हार्डी के बारे में, शेक्सपियर के बारे में बात करने लग जाएंगे। तो पहले आप थोड़ी सी बात आपकी पेंटिंग के बारे में करते हैं। तो आप ये बताइए कि पेंटिंग से कहले कैसे आपका पहला परिचय हुआ, क्या कोई ऐसा ट्रिगर था या कोई ऐसा मोमेंट था कि आपको लगा यही मेरी कॉलिंग है और आपकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बनने वाली है पेंटिंग्स?
0: पेंटिंग शायद मैं, मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म से करती आ रही हूँ। छोटेपन में ही मैंने पेंसिल और कलर्स से खेलना शुरू कर दिया था। सारी जिंदगी मैंने पेंट किया है, स्कूल लेवल पे भी, घर में, कॉलेज लेवल पे भी, फिर पेंटिंग में पढ़ाई भी करी है। तो मुझे तो लगता है कि ये जन्म भी कम है पेंटिंग के अथाह सागर को पार करने के लिए। तो पेंटिंग तो मेरी एक बेस्ट फॉरेन सर्विस में एज अ डिप्लोमैट्स वाइफ, मेरी हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड। एंड आर्ट ने मुझे हेल्प किया है टू एक्सप्लोर माय इनर पर्सनालिटी।
1: तो कोई मतलब आपको ऐसा कोई रिकॉल करती है, किसी ने आपको कहा मैं पेंटिंग से आपको जोड़ा हो, आपको अपने आप ही शुरुआत से ही पेंटिंग से दोस्ती हो गई या रिश्ता बन गया?
0: शुरुआत से नहीं, मेरा किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं ड्राइंग अच्छी करती हूँ तो मुझे पेंटिंग करनी चाहिए। इट इज जस्ट दैट जैसे कि एक ऑटोमेटिकली अंदर से चीज आती थी और मैं अपना पेंट और ब्रश लेके बैठ जाती थी। यही मेरा घर में भी पास टाइम ही रहता था। तो बस ये है कि मैंने बीएफए, मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करूं, तो इसलिए मैं यहाँ से, इंडिया से, मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं ज्वाइन किया। और उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लिटरेचर का एक अपना ही आनंद है।
1: तो चलिए, इतना एक जो आपका पेंटिंग से रिश्ता बन गया था, इसी बात को याद करके हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक अच्छा सा गाना सुनते हैं। आपका ये जो एक बॉन्ड बन गई थी पेंटिंग से, उसी को याद करके एक गाना सुनते हैं कुछ देर के लिए, और उसके बाद में हम अपने इस इंटरव्यू को जारी रखेंगे।

0: वेलकम बैक कल्पना जी। तो अब एक आपके जीवन के एक दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, दूसरी एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। एक डिप्लोमेट की पत्नी के रूप में आपका जीवन थोड़ा सा सामान्य जी लोगों से अलग रहा होगा। तो ये जब आपको पहली बार इसमें आपने एंट्री ली होगी, तो कैसा महसूस हुआ, क्या आपको लगा था, क्या क्या बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है ये?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही डिफरेंट लाइफ लीड करी है एज अ डिप्लोमैट्स वाइफ, और एकदम अलग दुनिया में पहुंच गए थे। तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी एडजस्टमेंट में, लेकिन उसके बाद एक साल बीतते बीतते हम इस सर्विस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और हमने सोचा दैट ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने कंट्री के लिए, कंट्री का प्रमोशन करने की एज अ स्पाउस ऑफ डिप्लोमैट। तो मैंने उस एस्पेक्ट को देखते हुए मैंने अपनी आर्ट को भी बहुत मुझे प्रोत्साहन मिला, और वेरियस कल्चर्स से मिंगलिंग हुई, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से मुलाकात हुई, उससे इतना पर्सपेक्टिव बढ़ा है लाइफ का, इतने लेवल ऑफ मैच्योरिटी में इतना फर्क आ गया कि इट इज रिमार्केबल। और मैं तो यही कहूंगी कि डिप्लोमेटिक सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सर्विसेज।
0: तो आपने जैसे पोलैंड है, सिंगापुर है, लेबनान है, ब्रुनेई है, इन सब कंट्रीज में रहने का आपको मौका मिला है। तो अभी बताइए कि इसमें किस पोस्टिंग ने आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई, आप वहां से सबसे अधिक प्रभावित किस पोस्टिंग ने किया, और आपको कहाँ अच्छा लगा सबसे?
1: आई थिंक आलोक जी, मैं तो बिल्कुल द कंट्री दैट इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट इज लेबनान।
0: ओके,
1: बेरूत की पोस्टिंग बहुत ही अच्छी थी, बहुत बढ़िया पोस्टिंग थी, और वहाँ के लोग इतने वेलकमिंग थे टू फॉरेनर्स कि आपको बिल्कुल अपना लेते थे जैसे कहा जाएगा। और एंड द ब्यूटी ऑफ लेबनान, नेचर, हिस्ट्री ऑफ लेबनान, इन सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया।
0: हाँ, लेबनान के बारे में तो कहते हैं बड़ा ही खूबसूरत है, बिल्कुल वहाँ की फैशन और हर चीज बहुत मशहूर है।
1: इनफैक्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, लेबनान में ये लोग दे लिव फॉर द डे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री इतनी टर्मोइल भरी रही है कि उनका पॉजिटिविटी उनसे हमने सीखी है कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में भी, अपने टर्मोइल्स के बीच में भी अपनी लाइफ जी सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, आजकल भी देखिए लेबनान में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। पहले से लेबनान बदल गया। आप किसी नई कंट्री में जाते हो, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, कल्चर अलग होती है, लोगों की बातचीत का तरीका अलग, तो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो आप? आई मीन कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रूमिंग सेशंस होते हैं या कुछ ऐसा होता है? हाउ डू यू डू दैट?
1: व्हेन वी एंटर द फॉरेन सर्विस एज स्पाउसेस, सो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन किया जाता है, बट दैट इज राइट इन द बिगिनिंग ऑफ जॉइनिंग माई हस्बैंड फॉर अ फॉरेन पोस्टिंग। उसके बाद वी लर्न ऑन आवर वे, हम ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। बस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि थोड़ा सा इंसान को एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, इतना ज्यादा मिलना जुलना फॉरेन डिप्लोमैट से होता है, इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट है, कॉकटेल्स हैं, पार्टीज हैं, तो उन सब चीजों को फेस करने के लिए या उन सब चीजों में कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा इंसान को अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना पड़ता है, और थोड़ा सा अपने कंट्री के बारे में वेल रेड होना होता है, सो दैट यू आर एबल टू कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन।
0: That's very important. But आपको अपनी कंट्री, अपनी कल्चर, अपना हिस्ट्री, इसके बारे में बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वहां से कोई बात कर पाएंगे।
1: बहुत ना भी हो, लेकिन हाँ, काफी हद तक जानकारी होनी चाहिए। So that is very important. In fact, in my posting in Brunei, I was writing articles every week for the leading newspaper. बॉर्नियो बुलेटिन, उसमें मैं अपने कंट्री के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखती थी. सो दैट इज द वे आई वाज प्रमोटिंग माय कंट्री.
0: तो श्रोताओं देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग कई बार यहाँ बैठ के हमें अपनी कंट्री की बहुत चीजों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जब लोग हमारे यहाँ से एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स बाहर जाते हैं तो उनको अपनी कंट्री के बारे में प्रोजेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है. तो उनको जानकारी अपनी कंट्री, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए. तो चलिए अपने इस कंट्री की मोहब्बत के बारे में, इस प्यार के बारे में रुक के एक गाना सा सुनते हैं अच्छा सा, और फिर हम इस बातचीत को जारी रखते हैं.
1: जी

0: हाँ, वेलकम कल्पना जी।
1: जी
0: अब मैं भी ये जानना चाहता हूँ और हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी ये जानना चाहते होंगे कि
1: जी
0: जब कोई एम्बेसडर किसी देश के हेड ऑफ द स्टेट को अपना लेटर ऑफ क्रीडेंस या अपने
1: जी
0: क्रीडेंशियल प्रेजेंट करता है, तो ये
1: जी
0: सेरेमनी कैसे होती है, कुछ इसके बारे में हमें बताइए। और कुछ हमें हमें बड़ी क्यूरियोसिटी है इसके बारे में जानने की, कुछ बता
1: जी
0: सकेंगे?
1: श्योरली श्योरली। क्रेडेंशियल्स की जो सेरेमनी है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट होता है, और इस इवेंट में जो न्यूली अपॉइंटेड अम्बेसडर होते हैं वो फॉर्मली एक लेटर ऑफ क्रेडेंस दूसरे कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को प्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द पेरेंट कंट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया अगर किसी दूसरे देश के एम्बेसडर पोस्ट होते हैं तो ही हैज टू प्रेजेंट देयर क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एन ऑफिशियल सेरेमनी जो कि राष्ट्रपति भवन में
0: ऑर्गेनाइज होती है।
1: या ऑर्गेनाइज की जाती है। अब ये जो कैन आई स्पीक अ लिटिल मोर अबाउट
0: हाँ,
1: क्रेडेंशियल्स?
0: श्योर श्योर श्योर, प्लीज
1: या
0: प्लीज।
1: ओके, सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट सेरेमनी इन द सेंस कि ये एक ऑफिशियल पहचान है। ये फॉर्मली एम्बेसडर के स्टेटस और अपने देश की के रिप्रेजेंटेटिव, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के अधिकार को कंफर्म करता है। डिप्लोमेटिक ड्यूटी की शुरुआत इसी से होती है। एम्बेसडर क्रेडेंशियल दिखाने के बाद ही पूरी तरह से ऑफिशियल काम कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है, दोनों देशों के बीच में रिश्तों की मजबूती और दोस्ती और आपसी सम्मान और सहयोग का ये प्रतीक माना जाता है। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और परंपरा ये लंबे समय से चले आ रहे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रीति रिवाजों को बनाए रखता है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर क्रेडेंशियल सेरेमनी।
0: तब तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये मेरे ख्याल में परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। जब मोनार्क्स होते थे, किंग्स होते थे, उनके सामने भी जो एम्बेसडर जाते थे वो भी अपने क्रेडेंस करते। कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा एक्सपीरियंस इस सेरेमनी से रिलेटेड जो आपने खुद देखा हो या आपके हस्बैंड ने आपको बताया हो, कोई ऐसा कोई किस्सा याद है, कोई एनीथिंग अगर कुछ?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि इट इज अ वेरी प्योरली ऑफिशियल सेरेमनी, तो एंड इट इज मेनली बिटवीन द एम्बेसडर एंड द हेड ऑफ द स्टेट, सो इट इज नॉट मेंट फॉर रियली फॉर सो मच फॉर स्पाउसेस और फॉर पब्लिक, सो आई वुड लाइक टू दैट इज द वे इट इज।
0: ओके ओके ओके, दैट्स
1: या
0: ग्रेट। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि जो वहां की कल्चरल जो एक फैब्रिक होता है हर कंट्री का, और सोशल जो फैब्रिक होता है, तो उससे आप जो एसिमिलेट करते होगे, किसी तरह बातचीत करते होगे, तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हो? क्या आपको वहां का कोई लोकल कोई अपॉइंटी होता है जो आपको गाइड करता है साथ साथ में उस कंट्री का? हाउ यू मैनेज दैट, किस तरह से करते हो आप?
1: देखिए, अगर तो लैंग्वेज का इश्यू है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जिस कंट्री में रहे हैं वहां पे इंग्लिश हैज आल्सो बीन स्पोकन, लेकिन

0: इंटरप्रेटर हमेशा साथ रहता है एम्बेसडर के और विद द डिप्लोमैट इफ देयर इज अ नीड. And as far as the spouses are concerned, we mingle with the other diplomats' wives and wives. So most of them are speaking English, and if they are not speaking English, then we are able to manage because they are all able to speak broken English.
1: Okay.
0: So we tend to make friends with almost most of the people, most of the people around. I would also like to say that as a diplomat's wife, I have had the privilege of engaging with diverse cultures and, you know, participating in various public and diplomatic events. Just say it has really broadened my global outlook and strengthened my interpersonal communication skills.
1: तो चलिए, जैसे आप पोलैंड में भी रहे हैं, सिंगापुर में भी रहे हैं, इन दोनों कंट्रीज में से आप किसी के बारे में बताना चाहें कि पोलैंड की दिनों की यादें आपकी कैसी रही, या सिंगापुर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है उसके बारे में कुछ बताना चाहें, एनी इंसिडेंट दैट यू रिमेम्बर, कोई सी खास बात जो. हाँ बताइए.
0: वेल, सिंगापुर के लिए जो चीज बहुत ही इम्प्रेसिव लगी मुझे, वो सिंगापुर के रेगुलेशंस, उनकी क्लेंडिनेस, उनके रूल्स. दे आर वेरी फर्म अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड सो इट इज अ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंट्री. मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ नेचर बहुत थी, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड कंट्री था. और किंगडम ऑफ ब्रुनाई, दैट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. बिकॉज जब हम सुल्तान का पैलेस विजिट करते थे, सुल्तान ऑफ ब्रुनाइज पैलेस ऑन वेरियस फॉर्मल ओकेजन्स, तो मुझे तो ऐसा ही लगता था जैसे बचपन में हम लोग फेरी टेल्स पढ़ते हैं, किंग्स और क्वींस और पैलेसेस के बारे में पढ़ते हैं. तो दोज रीडिंग्स एंड दोज इमेजिनेशंस, दे जस्ट बिकेम अ लिविंग रियालिटी for me when I used to enter the palace of the king of Brunei.
1: मतलब बहुत ही opulence थी क्या, बहुत बड़ा था, larger than life.
0: Yeah, larger than life, absolutely. And the kingdom of Brunei, it's a very rich country. The Sultan of Brunei once upon a time was one of the richest man in the world. उनके यहाँ आप palace में जाइए, everything is in gold. I mean, like we see in movies. मूवी में तो सब आर्टिफिशियली दिखाते हैं, बट उनके तो लाइक पिलर्स हैं या उनके सोफा के हैंडल्स, एवरीथिंग वाज इन गोल्ड. इट वाज एब्सोल्युटली लार्जर देन लाइफ. और जैसे कि किताबों में हमने जो, एज मैंने पहले भी कहा, जो भी कहानियां हमने राजाओं के बारे में या रानियों के बारे में पढ़ी हैं या उनके पैलेसेस के फोटोग्राफ्स देखी हैं, आई थिंक इट वाज जस्ट लाइक बुक्स कमिंग टू लाइफ.
1: तो ये तो बहुत मजेदार बात बताई. हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जब डिनर वगैरह होता था, मैं वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूँ, तो जब डिनर वगैरह होता है तो के ये किंग ऑफ ब्रुनेई क्या आपके साथ इंटरमिंगल करते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, या बिल्कुल अलूप से रहते हैं क्या?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं. बहुत जैसे सुल्तान की बर्थडे ब्रुनेई में बहुत ही जोर शोर से मनाई जाती है. उनकी बर्थडे एक महीने तक सेलिब्रेट होती है. सारे डिप्लोमैट्स जो हैं उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. दे वी टुगेदर वी वुड होस्ट अ फंक्शन फॉर द सुल्तान ऑफ ब्रुनेई फॉर ऑन हिज बर्थडे, एंड ही यूज्ड टू ग्रेस द ओकेजन एंड मिंगलिंग विद एवरीबॉडी, टॉकिंग टू एवरीवन. ऑफ कोर्स दे आर वेरी फॉर्मल फंक्शंस, एंड हम लोग को सबको अपनी नेशनल ड्रेस में ही होना होता है. जैसे लेडीज हैं, दे हैड टू वेयर साड़ीज, एंड माय हस्बैंड वाज वेयरिंग अ शेरवानी बिकॉज इट हैड टू बी ऑल नेशनल ड्रेसेस दैट वी हैड टू वेयर एज वी वर रिप्रेजेंटेटिंग आवर कंट्री. तो दे डेफिनेटली बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत वेरी कल्चर, वेरी पोलाइट. So, I mean, it has been a wonderful experience.
1: That's great. चलिए, मजा आ गया आपकी बात सुन के. तो फिर ये सुल्तान ऑफ ब्रुनेई की बर्थडे की बात पे लेके हम एक अच्छा सा शानदार सा गाना सुनते हैं. वैसे ही ग्रैंड सा, और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं। और अब हम आपके दिल के करीब जो टॉपिक है पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे।
0: सो

0: हाँ, वेलकम बैक कल्पना जी।
1: जी
0: अब आते हैं आपके जो बहुत ही सब्जेक्ट आपके दिल के करीब है। अब ये जो लगातार आपकी यात्राएं रहती हैं और विदेश प्रवास के बीच में आप पेंटिंग आपके साथ साथ कैसे चलती रही, किस तरह से आप मैनेज करती थी, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: पेंटिंग हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी। तो पेंटिंग तो मैं इतना भी बिजी रहते थे लेकिन इतना नहीं कि पेंटिंग के लिए टाइम ना निकाल पाए। मॉर्निंग आवर्स में मैं हमेशा अपना पेंट करती थी और इनफैक्ट नेचर मेरे नेचर हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू मी। तो ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, सीइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर, अलग अलग रूप में नेचर को देखा मैंने और उस नेचर को मैंने अपने कैनवस पे डिपिक्ट किया है इन डिफरेंट फॉर्म्स। लाइक लेबनन की नेचर वाज डिफरेंट, इट हैड दोज ब्यूटीफुल सीडर ट्रीज। सिंगापुर डिडंट हैव मच नेचर बट देन इट हैड द सी, सो दैट वाज वेरी सीनिक। एंड आई वुड से दैट इट हैज बीन अ जर्नी विच इज जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। डिप्लोमेटिक सर्विस में मेरे हस्बैंड के साथ मेरी आर्ट ने बहुत फ्लरिश किया। आई इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट और ये शायद इसी कारणवश हो सका है क्योंकि मैं हमने इतना ट्रेवल किया, इतने कंट्रीज देखे, हर जगह की डिफरेंट रहन सहन, हर जगह की डिफरेंट नेचर, लैंडस्केपिंग, ऑल दिस हैज बीन सो वंडरफुल दैट उसको कैनवस पे उतारने का के लिए एक आर्टिस्ट वुड रियली वांट टू डू इट।
0: तो अब जैसे मैं एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, अजीब सा तो इन द सेंस के थोड़ा ऑफ द कफ है। अगर किसी ने, लिसनर्स ने आपकी पेंटिंग नहीं देखी हो और वो मैं आपसे कहूं कि उसके लिए आपका जो पेंटिंग का स्टाइल है या जो फॉर्म है उसको अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप किस तरह, क्या बताना चाहेंगे उसको, किस तरह की पेंटिंग आप बनाती हैं?
1: ओके, तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई द मीडियम जिससे मैं पेंट करती हूँ। मेरा मीडियम बेसिकली मेनली ऑयल्स ऑन कैनवस है। इसके अलावा मैंने वॉटर कलर्स, एक्रेलिक्स, टेंजोवर आर्ट, इन सबसे पे भी बहुत काम किया है लेकिन मेनली शुरुआत मेरी ऑयल्स ऑन कैनवस से ही हुई। बचपन में वॉटर कलर से, फिर मैं ग्रेजुएट कर गई थी काफी यंग एज पे ही ऑयल्स ऑन कैनवस पे। तो वही मेरे साथ हमेशा रहा है और मैं नेचर, जनरली नेचर डिपिक्ट करती हूँ अपने, नेचर एंड बुद्धा, गौतम बुद्ध हैज ऑल्सो बीन। सो लेबनन में मेरी बुद्धा की जो पेंटिंग्स थी मैंने ऑयल्स में बनाई थी और बाटिक में भी बनाई थी, वो काफी अप्रिशिएट हुई और काफी फॉरेनर्स ने उनको खरीदा भी पेंटिंग्स को। तो बुद्धा हैज बीन वेरी पॉपुलर इन लेबनन आई मस्ट से, एंड नेचर हैज बीन पॉपुलर इन मोस्टली ऑल द कंट्रीज।
0: तो ये तो आपने बता ही दिया कि कोई खास थीम या मोटिव जो बार बार आपकी पेंटिंग्स में रिपीट होते हो, यही आपने बता ही दिया कि बुद्धा, नेचर एंड बुद्धा, और कोई खास चीज ऐसी रिपीट करती हो?
1: सो मोस्ट ऑफ माय, आई थिंक एक समय आ गया था पेंटिंग करते करते कि मुझे ये रियलाइजेशन होने लग गया कि दिस आर्ट इज माय स्पिरिचुअल जर्नी। सो मोस्टली इन नेचर आई ऑलवेज ट्राई टू, मैं हमेशा एक स्पिरिचुअल एंगल से डिपिक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर हमें बुद्धा भी बनाने हैं तो वो भी इट विल बी सराउंडेड विद नेचर। मैं कभी बुद्धा ऑन कैनवस अलग नहीं बनाती, इट इज ऑलवेज सराउंडेड विद नेचर बिकॉज मेरे लिए नेचर इज द जर्नी, द स्पिरिचुअल जर्नी। पेंटिंग नेचर इज द स्पिरिचुअल जर्नी फॉर मी। नहीं, एंड आई जनरली डोंट डू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो उसमें जब मैं नेचर भी पेंट करती हूँ तो एक इट इज नॉट सो, इट इज रियलिज्म प्लस एक्सप्रेशनिज्म। उसमें मेरे वर्क्स ओरिजिनल होते हैं तो जितनी कलर थीम्स हैं या जो कलरिंग है या जो भी उसमें मैं ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ, दैट इज ऑल वेरी एक्सप्रेशनिस्टिक।
0: तो चलिए, ये जो आपने नेचर और बुद्धा की जो आपकी पेंटिंग्स का बातचीत की है, इससे हम आते हैं, आपने बहुत सारी सोलो एग्जीबिशंस भी की हैं, वेरियस कंट्रीज में की हैं, कोई खास ऐसी एग्जीबिशन जो आपको याद है, आपकी सोलो एग्जीबिशन, एनीथिंग, एनी इंसिडेंट दैट यू रिमेम्बर, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारी एवरी एग्जीबिशन हैज बीन अ सक्सेस and every exhibition has been so close to my heart because ये बहुत ही एक पूरे साल का hard work होता है एक solo exhibition में. लेकिन हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ब्रुनाई में जो मैंने solo भी करी है ब्रुनाई में, और एक exhibition हमने और Indonesian ambassador की wife ने मिलके करी थी to celebrate the birthday of the king sultan of Brunei.
0: Okay.
1: So that was a very big success for both of us, or it was really appreciated. And otherwise, hamari sari exhibitions, they have been by grace of God successful, and my hard work has been appreciated.
0: नहीं नहीं बहुत बढ़िया, तो मजा आ गया आपकी बात सुन के. तो ऐसा करते हैं, इसी बढ़िया सक्सेस के ऊपर हम रुक के गाना सुनते हैं, और फिर हम इस इंटरव्यू की आखिरी पायदान पर कुछ और बातें करते हैं.

0: हाँ, वेलकम बैक कल्पना जी। आपके
1: जी
0: हस्बैंड एक सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, तो
1: जी
0: आपकी ये जो आर्ट की जर्नी है या पेंटिंग की जर्नी है, उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका कितना सपोर्ट रहा है, कुछ उसके बारे में बताएंगी? क्या वो भी पेंटिंग की तरफ उनका भी झुकाव है, या वो किस आर्ट फॉर्म की तरफ उनका झुकाव है?
1: नहीं, मेरे हस्बैंड का जो इंटरेस्ट पेंटिंग से बिल्कुल अलग है, लेकिन ही हैज बीन द पिलर ऑफ माय स्ट्रेंथ एंड ही हैज इट इज बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट दैट आई हैव बीन एबल टू इवॉल्व एज एन आर्टिस्ट. बिकॉज उनका हमेशा प्रोत्साहन रहा है, उन्होंने हमेशा मेरे काम को देखा है. उसमें मैं उन्हीं से पूछती हूँ, अगर कोई भी चीज मुझे डाउट आता है तो वो मुझे उनसे पूछती हूँ, तो वो मुझे अपनी एडवाइस देते हैं दैट ओके, इसमें यू कैन ऐड दिस और यू कैन ऐड दैट. सो आई वुड से दैट माय हस्बैंड हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव इन माय जर्नी ऑफ आर्ट.
0: दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, तो फिर अब एक बात बताइए कि आपकी ये पूरी लाइफ जर्नी है, डिप्लोमेसी भी है, ट्रेवल भी है, आर्ट ही है, अगर इन सबको मिला के कैनवास पे अगर कोई चीज आप उतारेंगी तो, और उस पेंटिंग बनाएंगी, तो उसका टाइटल क्या देंगी? आपकी पूरी लाइफ जर्नी को अगर आप कैनवास पे उतारें, उसका क्या टाइटल देंगी? क्या उनमें कौन कौन से रंग? हाँ,
1: मैं तो मुझे तो एक ही टाइटल, एक दो टाइटल समझ में आते हैं. अगर मैं पूरा अगर अपने जर्नी को एक कैनवस पे उतारना चाहूं, अनुभवों का इंद्रधनुष.
0: ओहो, वंडरफुल, अनुभवों का इंद्रधनुष, दैट्स
1: इंद्रधनुष,
0: ग्रेट, बहुत बढ़िया टाइटल,
1: दैट इज
0: रेनबो ऑफ
1: व्हाट आई वुड.
0: एक्सपीरियंसेस,
1: रेनबो ऑफ एक्सपीरियंसेस.
0: एक्सपीरियंसेस, यस, वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, और आप अगर कोई एक मैसेज देना चाहें जो बडिंग आर्टिस्ट हैं अभी दुनिया में, लड़कियां, नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में कोई मैसेज हो आपका तो बताइए।
1: वेल, द मैसेज जो मैं देना चाहूंगी इज दैट किसी भी आर्ट में या किसी भी फील्ड में डेडिकेशन, लगन
0: हाँ,
1: और फोकस, ये तीन चीजों का बहुत महत्व है. इन तीन चीजों पे अगर आपने फोकस किया, अगर आपने लगन एक, और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत से आजकल मैं नोट करती हूँ कि लोग हैं या यंगस्टर्स हैं कि एक काम शुरू करते हैं, इन फील्ड ऑफ आर्ट ही मैंने नोट किया है, उसको बीच में छोड़ देते हैं कि हम बोर हो गए इससे, दूसरा शुरू कर देते हैं, तीसरा शुरू कर देते हैं. तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी दैट देर इज नो सच थिंग एज बोर्डम. आपने जो एक काम शुरू किया है उसको पहले खत्म करें, उसके बाद दूसरा काम उठाएं, उसी को लगन और डेडिकेशन कहते हैं.
0: बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आजकल पेशेंस बहुत कम है, इम्पेशेंट हो
1: पेशेंस
0: जाते हैं।
1: नहीं है, देर हैज टू बी पेशेंस एंड डेडिकेशन. व्हाई शुड यू से दैट यू हैव गॉट बोर्ड ऑफ दिस पेंटिंग. मैं जब एक पेंटिंग बनाती हूँ तो मेरा मैं यही देखती हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये पेंटिंग कैसी बन के आएगी व्हेन आई कंप्लीट इट,
0: ओके, सही,
1: एंड दैट इज व्हाट मेक्स मी कंप्लीट माय पेंटिंग.
0: ठीक है। तो कल्पना जी, आप आज की इस आत्मीय और प्रेरणादायक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपकी जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि कला केवल कैनवस पर रंग भरने का नाम नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों, यात्राओं, संस्कृतियों और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आपने अपना समय दिया और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की।
1: थैंक यू आलोक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. इट हैज बीन अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी टॉकिंग टू यू एंड टू बी शेयरिंग माई लाइफ विद यू.
0: रेडियो SN परिवार की ओर से हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, निरंतर सृजन और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज के लिए मुझे आलोक कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभरात्रि, और याद रखिए, यात्राएं हमें दुनिया दिखाती हैं, लेकिन कला हमें दुनिया को महसूस करना सिखाती है। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर सुनना ना भूलिएगा।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बन के तेरे पाँव पड़ेंगी चट्टाने, ठोकर की गर्द बन के ठोकर की

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ।
2: दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं नहीं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

0: छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई।
1: 70 और 80 के दशक में जब LP कहा जाता था तो उसे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स के साथ साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी समझा जाता था। इसका एक सीधा मतलब ये भी है कि उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स निकलते थे उनमें से बहुतायत LP पर बतौर संगीतकार मौजूद होते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत कोड़ालकर और प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के जिस अति लोकप्रिय युग का सृजन किया वो हिंदी फिल्मों के लिए आज धरोहर जैसा है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

अब इस बारे में तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शायद अकेली ऐसी जोड़ी रही है जिसने लोकप्रियता के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जहां अपने आरंभिक दिनों में शंकर जयकिशन की धुनों से प्रभावित थे, वहीं उन्होंने स्वतंत्र संगीतकार के रूप में कार्य करने से पहले कुछ दिनों तक कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर काम किया। स्वतंत्र रूप से संगीतकार बनने से पहले दोनों फनकार दूसरे बड़े संगीत निर्माताओं के लिए साज बजाया करते थे। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।

लक्ष्मीकांत एक बेहतरीन मैंडोलिन वादक थे, जबकि प्यारे लाल जुबिन मेहता से बुरी तरह से प्रेरित होकर वियना जाकर एक वायलिन वादक का करियर चुनने का मन बना चुके थे। हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में बनी नागिन के गीत जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया और सचिन देव बर्मन की लाजवंती के कोई आया धड़कन कहती है मैं लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन बजाया था। आइए सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

कहा जाता है कि प्यारे लाल से अच्छा म्यूजिक अरेंजर फिल्म इंडस्ट्री में हुआ ही नहीं। गौरतलब बात है कि प्यारे लाल के पिता राम प्रसाद एक बेहतरीन वायलिन कलाकार थे, जिनसे कल्याण जी, राजेश रोशन और हृदयनाथ मंगेशकर भी वायलिन और वेस्टर्न म्यूजिक के नोटेशंस सीखने जाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वाद्यों को सजाने की सर्वाधिक रचनात्मक शैली LP की बनाई धुनों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। आइए सुनते हैं उनका बनाया ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे आसरा, आए दिन बहार के, प्यार किए जा, अनीता, फर्ज, मिलन, पत्थर के सनम, शागिर्द, नाइट इन लंदन, बहारों की मंजिल और बहुत सारी दूसरी फिल्में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

piano, accordion, mandolin, organ, saxophone, trumpet, harmonium, congo, bongo, violin, guitar के साथ साथ सितार, सारंगी, सरोद, तबला, ढोलक, नाल, इन सभी का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपनी तर्जों को सजाने में लगे रहते। सैकड़ों फिल्मों के अत्यंत मनोग्राही संगीत से अलग उनको कुछ नया रचने में बहुत मजा आता था। आइए दोस्तों, सुनते हैं उनका ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई,

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

0: बात है।
1: प्यार

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उन्हीं का बनाया हुआ ये गीत सुने।

रविंद्र जैन साहब की पैदा होने के एक दिन बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनके पलके खोलने में सफल रहे लेकिन वो देखने में असमर्थ थे। ये जानकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेत्रहीन बच्चा कितना प्रसिद्ध होने वाला है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत

रविंद्र के पिता ने उन्हें संगीत प्रशिक्षण के लिए ये विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वो अपने संगीत का अध्ययन करने के लिए आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। रविंद्र ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे। और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एन एन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन ने एनएन सिप्पी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं सुनाया, और इसके बाद 1971 से बॉलीवुड में उन्होंने काम करना शुरू किया। सुनते हैं दोस्तों उनका ये गाना।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा संगीत बनाने के अलावा रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे ना याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से,
2: अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगी। अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगी। मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगी। वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहती है सब ठीक है, उस झूठ के पीछे दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगी। मैं लिख पाई कुछ तो, मैं लिख पाई कुछ तो मैं खुद को लिखूंगी। अपनी रूह के हर जख्म को अपना ही सम्मान लिखूंगी। नमस्कार, आदाब। 90.8 FM पर रेडियो SM और रेडियो टांटिया भील से मैं हूँ आपकी अपनी हमनफर, आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर की तरह है जिसके रास्तों में कई शहर आते हैं। हर शहर की अपनी एक हवा, अपनी एक खुशबू और अपनी एक कहानी होती है। जब कोई इंसान अलग अलग शहरों से गुजरते हुए हर जगह के कल्चर और सुरों को चुनकर अपने साथ समेट लेता है तो उसकी पर्सनालिटी एक खूबसूरत किताब जैसी बन जाती है। आज अल्फाज से एहसास तक में हमारे साथ एक ऐसी ही बेहद नफीस, सादगी से भरी और सुरीली मेहमान मौजूद हैं, वीना नायक जी। मुंबई में जन्म हुआ, लखनऊ की नफासत, अहमदाबाद का चुलबुलापन, अजमेर का ठहराव और उडीपी की जमीन की खुशबू, इन सब रंगों को समेटे वीना जी रेलवे की एक आला दर्जे की अफसर भी हैं और सुरों की दुनिया से बेहद प्यार भी करती हैं। तो फिर क्या, चलिए बिना किसी देरी के सीधे जुड़ते हैं हमारी आज की खास मेहमान वीना नायक जी से। वीना, हमारे इस अल्फाज से एहसास तक की महफिल में आपका तहे दिल से खैर मकदम है, खुश आमदीद, स्वागत है आपका, आइए तशरीफ रखिए।
3: थैंक यू आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मेरा नाम वीना नायक है और मैं बैंगलोर से हूँ। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार।
2: बहुत खूबसूरत, हमारा भी बहुत बहुत नमस्कार और हमारे दोस्तों का भी नमस्कार। वीना जी, आपका जन्म बेंगलोर में हुआ राइट? आपका जन्म
3: मुंबई में हुआ, यस।
2: हाँ जी, मुझे ना मुंबई कहने में बड़ी अटपटी सी लगती है, मैं अभी भी मेरे मुंह पर बॉम्बे,
3: यस।
2: तो आपका जन्म मुंबई में हुआ, चलो। बचपन आपका लखनऊ और अहमदाबाद में बीता और फिर पढ़ाई आपकी अजमेर में हुई
3: जी।
2: आपके पापा के वेस्टर्न रेलवेज में ट्रांसफर की वजह से आप इतने अलग अलग कल्चर से गुजरे। लखनऊ में आपने कथक सीखने से लेकर अहमदाबाद में भरतनाट्यम पतंग बाजी और साइकिल चलाने वाली वो एक्टिव टॉम बॉयश लड़की, जैसे आपने बोला आप थी। जब आप अजमेर पहुंची तो अचानक इतनी शांत और इंट्रोवर्ट कैसे हो गई? इस बदलाव की क्या वजह थी? हमारे साथ हमारे दोस्तों को बताइए ना जरा।
3: मैं जब खुद भी सोचती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं इतनी चुलबुली सी थी जब मैं अहमदाबाद में थी। मैं वहां जब भी फिर देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे लगता है कि जैसे बोलते हैं देश काल पात्र का फर्क पड़ता है, तो जैसे बी रोमन इन रोम लाइक, तो वहाँ राजस्थान में, हाँ राजस्थान के परिवेश में, और फिर नया स्कूल, और इतनी छोटी भी नहीं थी कि जल्दी से एडजस्ट हो जाए। मीन्स आई वेंट देयर व्हेन आई वाज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, तो नया स्कूल, नए लोग, नए टीचर्स, नया माहौल, तो वो थोड़ा अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मतलब यू रिमेम्बर योर ओल्ड स्कूल और ओल्ड फ्रेंड्स, तो वो और फिर वो एक तरह से यू टर्न हो गया। तो आई वॉज मोर इन टू स्टडीज एंड देन रीडिंग बुक्स, तो इस वजह से यस।
2: बहुत खूब बीना, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अलग अलग शहरों और कल्चर ने आपकी सोच को कितना रिच बना दिया अल्टीमेटली। तो आप हमें ये बताइए ना, आप पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही, बीएससी के बाद एमए इकोनॉमिक्स भी किया आपने ताकि आप यूपीएससी की तैयारी कर सकें, आपने जैसा मुझे बताया। लेकिन तकदीर आपको रेलवे में ले गई, जहां आपके पिताजी ने भी सर्विस दी थी, एक ही बार में आरआरबी और एसएससी जैसे कई एग्जाम्स क्लियर करना और रेलवे ज्वाइन करना। इस सफर को आप अपनी किस्मत यानी डेस्टिनी मानती हैं या अपनी मेहनत?
3: हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली इसे तो मैं डेस्टिनी ही कहूंगी। एक्चुअली जब मैं अजमेर में थी, जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई का और बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो हम लोग घर में ये कंपटीशन सक्सेस रिव्यूज वगैरह मंगाते थे, तो फिर उससे काफी नॉलेज बढ़ी और मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया था। और मेरे से बड़ी दीदी थी तो उन्होंने भी, तो हम दोनों इतना ये कॉम्पिटिशन के लिए हम लोगों ने अपने आप को इतना रेडी कर लिया था कि हम लोग ने जो भी एग्जाम्स दिए वो इन वन गो वी हैड क्लियर्ड। तो फिर ऐसा हो गया कि मतलब मैंने एक्चुअली यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर किया और फिर आरआरबी की जो एग्जाम थी रेलवे बोर्ड की और फिर स्टाफ सिलेक्शन की, तो मुझे आज तक वो डेट हमेशा याद रहेगी कि 3 मार्च 1991 को मैं अजमेर से अहमदाबाद आई टू गिव द एग्जाम ऑफ। तो मॉर्निंग के सेशन में मेरा आरआरबी का एग्जाम था और आफ्टरनून के सेशन में मेरा स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम था। और दोनों एग्जाम देने के बाद मुझे अंदर से ऐसी आवाज आई कि मेरा तो होना ही है सिलेक्शन। तो या आई हैड दैट मच कॉन्फिडेंस, मतलब मेरा आउट टू आउट ऐसा पेपर गया था। तो फिर बाद में और हो भी ऐसा गया, तब तक डैडी की भी ट्रांसफर हो गई, अजमेर से अहमदाबाद आ गए। तो फिर जो अहमदाबाद की आरआरबी से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैंने फर्स्ट जॉब वहीं पे ज्वाइन कर ली। तो ऐसा होता है ना कि जब आप ऑलरेडी किसी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर प्रोबेबली वो थोड़ा इंटेंसिटी टू कम्पीट फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज एक ठहराव से आ जाता है। और फिर लड़की होने के नाते पेरेंट्स भी चाहते थे कि नहीं, बाहर वगैरह नहीं जाना है, साथ में ही रहना है। तो फिर वो शादी वादी का भी उनके मन में था, तो फिर उस वजह से फिर वो यूपीएससी का तो फिर रह ही गया। और फिर स्टाफ सिलेक्शन में भी मेरा हो गया था, तो लेकिन वो बाद में मालूम पड़ा, उसका रिजल्ट थोड़े एक दो महीने बाद आए। तब तक मैं यहाँ ज्वाइन कर चुकी थी और फिर ग्रेड वगैरह सेम होने की वजह से फिर मैंने चेंज नहीं किया। तो इस तरह से आई लैंडेड इन रेलवे। और आपको मैं क्या बताऊं, एक्चुअली मेरी दीदी ने भी रेलवे का एग्जाम क्रैक करके, शी वॉज इन अकाउंट और वो सीनियर सेक्शन ऑफिसर थी जब तक, मतलब बिफोर हर पासिंग अवे। तो हमारी फैमिली से लाइक मी, माय सिस्टर, माय डैड और उनके डैड भी, मतलब मेरे दादाजी भी रेलवे में थे किसी जमाने में। तो ये तो डेस्टिनी ही हुई आई फील कि फिर मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, मतलब मेरा सिलेक्शन होते हुए भी मैं नहीं गई, तो ऐसा हुआ। यस, बट आई वुड लाइक टू से कि श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगी कि आप जो अपने एम्स हैं वो उस पर अर्जुन की तरफ फोकस्ड रहें और मतलब किसी कम उस पर सेटल ना हो, ताकि आपको किसी बात का गम ना हो बाद में कि मैं अगर ये कर लेती तो अच्छा होता, वो कर लेती तो अच्छा होता। तो आप अपना 100% दें जो भी करें, ऐसा मैं चाहती हूँ।
2: यस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही कहा आपने, अर्जुन के फोकस होना चाहिए। और फिर ये भी है कि आप बड़ी खुशकिस्मत भी रही कि आप फोकस थी और आपने जो जो रास्ता चुना, आपने जो जो चीज को फोकस किया, रास्ते बनते भी गए रहते आपने अपनी मेहनत।
3: यस बिल्कुल बिल्कुल, या दैट वाज अमेजिंग, या ऊपर वाले का हाथ था मेरे शायद, और मेरी भी तैयारी भी वैसी थी, मतलब इसीलिए मैं ये बार बार कहना चाहूंगी, आई विल रिट्रीट कि मेहनत तो आपको करनी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए ना इस नोट पर सुनते हैं आपकी गाई हुई इतनी खूबसूरत सी गजल, वक्त में और पथ को निभाएं तो निभाएंगे कैसे। आइए हमारे दोस्तों के साथ सुनते हैं आप दिल की गाई हुई ये गजल।

0: बहुत खूबसूरत गाई है आपने ना, बहुत खूबसूरत से गाई है।
1: थैंक यू।
0: ना आप ये बताइए, आपकी मम्मी एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान

0: थी, मेरे पापा की ट्रांसफर की वजह से गुजरात सेक्रेटरी गए थे, अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। आपने गाने का हुनर आपने बताया और कई लोग सुनी दे पाए हैं, आप मानती हैं कि किसी भी कला को सीखना 10-12 साल की साधना बहुत जरूरी होती है उसके लिए। अपनी माँ की सुरीली और मल्टी टैलेंटेड विरासत को आप अपने किस तरह देखती हैं?
1: हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि वो मेरी माँ थी और उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। वो अपने जमाने में रूपारेल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था बॉम्बे से, और वो शादी से पहले बॉम्बे ट्रस्ट में, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में काम किया करती थी। फिर पापा से शादी होने के बाद अहमदाबाद शिफ्ट हुई और फिर बाद में वहां पे वहाँ के गुजरात सेक्रेटरी में नौकरी कर रही थी। फिर पापा ने का डेप्यूटेशन हो गया एज ऑफिसर इन लखनऊ, तो फिर बाद में और मेरी दीदी का भी जन्म हो गया था, तो फिर बच्चों की देखभाल वगैरह करने के लिए फिर उन्होंने नौकरी छोड़ ही दी। लेकिन वो बहुत वो बहुत टैलेंटेड थी और बहुत अच्छे से उन्होंने हमको संभाला, बड़ा किया। तो यस, दैट इज द थिंग,
0: सैक्रिफाइस किया ना उन्होंने।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: घर परिवार को संभालने की खातिर। माँ की सीरीज और उनकी कला हमेशा बच्चों के सुरों में जिंदा रहती है, और ये भी आपकी आवाज से पता चलता है कि आपको कितनी अच्छी परवरिश मिली और उनकी आवाज आपको विरासत में मिली है। जैसे तो बिना, अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है जो कि बहुत सैड है कि 2008 में आप की प्यारी माँ का जाना, उनका इंतकाल हो गया, और फिर 2016 में 8 साल के बाद आपकी बड़ी बहन का भी अचानक हार्ट अटैक से चले जाना, ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका था। आपकी बहन जो हर रोज पापा से बात किया करती थी और जिनकी याद में आज भी आपके पापा की आंखें नम हो जाती हैं, इस पर्सनल लॉस ने आपके इमोशन और संगीत से लगाव को कितना और गहरा कर दिया?
1: बहुत गहरा कर दिया एक्चुअली। और हाँ, जैसे मम्मी और दीदी के जाने से ऐसा लगा कि जैसे माला से मोती बिखर गए। तो और मैंने पापा को दोनों की याद में काफी बार उदास देखा है, और फिर उससे मुझे काफी चोट पहुंची थी। मैं जब कार ड्राइव करके ऑफिस से आती जाती थी तो फिर मैं बेसमेंट में कार में ही आधे घंटे बैठ के रो लिया करती थी, क्योंकि मैं घर जाके मतलब हाँ मैं दिखाना चाहती थी कि नो आई एम ओके, और तो पापा को भी सहारा देना है इस तरह से। तो वो बहुत मतलब वी जस्ट कुड नॉट टेक की बिकॉज इट वाज सो सडन कि वो जस्ट और वो भी उनके 2 दिन बर्थडे से पहले वो सडनली गुजर गए। तो फिर दैट वाज अ बिगेस्ट जोल्ट,
0: आपका ये दर्द और अपनी माँ और बहन के लिए ये प्यार सीधे हमारे दिलों को छू रहा है मीना। दोस्तों, वीना जी ये अगला बेहद खूबसूरत नगमा अपनी महरूम माँ और अपनी प्यारी बड़ी बहन की
1: और पापा के लिए भी, क्योंकि पापा भी नहीं रहे अभी, और दीदी के जाने के बाद फिर पापा बीमार रहने लगे और फिर वो 2023 में चल बसे।
0: तो आप ये गाना अपने पापा मतलब तीनों की ही याद में आप डेडिकेट करना चाह रही हैं और पूरी मोहब्बत से आप डेडिकेट कर रही हैं, और ये नगमा है वो जब याद आए, बहुत याद आए बिना, तो दो लाइन्स अगर आप खुद अपनी अनप्लग्ड अपना गा के हमें सुनाए हमारे दोस्तों को, अगर आप गा सकती हैं तो।
1: हाँ, क्योंकि ये मेरे पापा का भी बहुत फेवरेट सॉन्ग था तो।
0: जी

0: वो जब याद आई बहुत याद आई।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपकी आवाज से साफ पता चल रहा है कि आप कितनी उदास हो गई। ये सब कुछ करके इतना सुंदर गाना गा, इतना सुंदर नगमा गा के। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। अरे, वीणा जी की आवाज में ये बहुत खूबसूरत नगमा जो कि उन्होंने अपनी मम्मी, अपने पापा और अपनी मरहूम बहन को डेडिकेट किया है। आइए सुनते हैं।

0: अपने फील्ड में, और आपको, आपने जैसे बताया ही कि आपको तो जीन्स में ही आपको सारा कुछ मिल गया ना,
1: हाँ
0: मम्मी की भी, पापा की भी,
1: यस
0: आपके बाकी लोगों की, आपकी बुआ और उनके बेटे, सारे परिवार में लाइक आपकी फैमिली लेगेसी है ना जो आपके पास आ गई।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत, और वाकई ऐसे एसोसिएट होना वाकई बड़ी गर्व की बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब नवीना ये बताइए कि आपकी बेटी और बेटा दोनों ने बीबीए पूरा किया है जैसा कि आपने बताया, और
1: जी
0: आपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है दोनों बच्चों ने,
1: जी
0: तो रेलवे में आप एक वर्किंग वुमेन होने के साथ साथ अपने बच्चों को इतनी अच्छी आपने परवरिश दी और फैमिली को संभाला, आपने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ये बैलेंस कैसे बनाया?
1: हाँ, इसका तो मैं क्रेडिट अपने हस्बैंड को भी देना चाहूंगी, क्योंकि
0: जी
1: उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। और कुछ टाइम तक पापा भी हमारे साथ थे, तो उनका भी काफी हेल्प हुआ मुझे। तो मेरे
0: जी
1: हस्बैंड
0: जी
1: एक्चुअली ही कम्स फ्रॉम ए वेरी बिग फैमिली, तो उनके छह,
0: ओ
1: वो खुद 6 भाई बहन थे, उनके घर में रिलेटिव भी थे, और मतलब दे वर स्टेइंग इन ए बिग हाउस विद इन हाउस सर्वेंट्स, उनके घर में सर्वेंट्स भी रहते थे। तो मतलब लड़का होने के नाते उनको कभी कुछ काम करना नहीं पड़ा वैसे घर में। बट जब वो बैंगलोर शिफ्ट हुए, उन्होंने अपना खुद का कारोबार वगैरह किया, तो एज ए बैचलर वो सीख गए खाना वगैरह बनाने में वगैरह खुद। और जब बच्चे, शादी के बाद बच्चे आए जिंदगी में, तो वी जॉयफुली डिड एवरीथिंग टुगेदर। तो
0: वाह,
1: आई विल गिव 100% क्रेडिट टू माई हस्बैंड। तो ऐसे तो मुश्किल नहीं लगा कुछ भी।
0: बहुत
1: इनफैक्ट
0: खूब, बहुत
1: हाँ, शादी के दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे 4 व्हीलर भी सिखाया एक्चुअली क्योंकि मैं तो स्कूटर वगैरह सब चलाती थी, तो फिर इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी, यू नो, बिकॉज गियर्ड स्कूटर चलाती थी, तो फिर बाद में गियर्ड 4 व्हीलर चलाने में भी मुश्किल नहीं हुई।
0: वाह
1: तो मतलब लाइसेंस आने
0: वाह
1: से पहले ही आई वाज वेल ट्रेन्ड बाय हिम टू ड्राइव अ
0: वाह,
1: कार, यस। और मतलब घर में
0: बहुत
1: उनका
0: बहुत
1: यही फंडा है कि घर में जो भी व्हीकल हो चलाने आना चाहिए सभी को। तो
0: बिल्कुल
1: फिर
0: बिल्कुल
1: यस, तो हाँ, तो इस तरह से आई आई विल से कि या इट्स अ वेरी नाइस पार्टनरशिप हमारी। तो वी आर गुड फ्रेंड्स देन स्पाउस, टिपिकल स्पाउस। तो हम लोग एक दूसरे को
0: बहुत
1: हर चीज में काफी सपोर्ट करते हैं। तो
0: बहुत बहुत खूबसूरत
1: यस
0: केमिस्ट्री है आपकी अपने हस्बैंड के साथ, और जब हस्बैंड वाइफ में इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री हो तो बच्चों के ऊपर उसका असर होना लाजमी ही होता है। बच्चे भी वही सीखते हैं जो माँ बाप उनके सामने एग्जाम्पल पेश करते हैं। आप
1: जी
0: बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले। मेरी
1: यस
0: तरफ से भी उनको हेलो बोलिएगा, और
1: जी
0: हमारे दोस्तों की
1: जरूर
0: तरफ से भी उनको बहुत बहुत मुबारक दीजिएगा कि आप दोनों की फैमिली लाइफ इसी तरीके से चलती रहे।
1: जी।
0: तो अब इसी नोट पर आइए दोस्तों, सुनते हैं वीना की गाई हुई ये बहुत खूबसूरत सी ये गजल है जो मौसम पिक्चर से है। रुके रुके से कदम, रुके रुके से कदम, रुक के बार बार चले, यही ना? जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: आई मस्ट से वीना, आप बहुत खूबसूरत आपने गाया है इसको, ये मुझे भी बहुत पसंद है। तो वीना, अब ये बताइए आप कि
1: जी
0: आपने बोला कि क्लासिकल म्यूजिक आपने फॉर्मल तरीके से नहीं सीखा,
1: जी
0: फिर भी आपकी गायकी में संगीत की बहुत अच्छी समझ है जो झलकती है आपके गाने में। आप
1: थैंक यू।
0: मानती हैं कि हर किसी को 2-3 साल बेसिक जरूर सीखना चाहिए, आपने ये भी बताया।
1: जी
0: आपके लिए म्यूजिक केवल एक पैशन है या आज की बिजी लाइफ में सुकून पाने का एक जरिया? दोनों में बहुत अलग अलग चीजें हैं।
1: जी एक्चुअली इट्स अ पैशन। मुझे ये थेरेपी जैसा लगता है, मुझे ये मेडिटेशन जैसा लगता है। तो या जब भी मैं खाना भी बनाती हूँ तो मैं भजन गाती हूँ, या फिर जो मुझे सॉन्ग्स आते हैं वो गाती हूँ, तो फिर
0: जी
1: अच्छा लगता है। सो इट देयर इज अ
0: बहुत
1: पॉजिटिविटी इन दैट।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: जी
0: वो कहते हैं ना, खाना बनाते बनाते अगर आप कोई भजन गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मेरी मम्मी भी बोला करती थी, तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके खाने में जायका ना आए, वो भगवान का
1: बिल्कुल
0: प्रसाद जैसे बन जाता है और वो बहुत जायकेदार बनता
1: यस
0: है ना।
1: हाँ जी
0: तो हमारे ख्याल आप कितने मिलते हैं
1: यस
0: ना
1: बिल्कुल
0: वीना। तो इसी नोट पर चलिए फिर, आपकी गाई हुई ये एक और खूबसूरत सी गजल अपने दोस्तों को सुनाते हैं जो आपने, बहुत मुश्किल है ये गजल, आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहले में बैठे रहो। दोस्तों आइए हमारी वीणा की आवाज में सुनते हैं ये बहुत ही रूहानी गजल, आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो।

0: बहुत खूबसूरत रीना, आई मस्ट से आपने बहुत खूबसूरती से इस गजल को निभाया है। बहुत बहुत बहुत मुबारक रीना। अल्फाज से एहसास तक में अपनी लाइफ को आपने इतनी सुंदर इमोशनल और सुरीली जर्नी को हमारे साथ शेयर किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जाते जाते हमारे उन सभी दोस्तों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपनी बिजी लाइफ के बीच में भी अपने सपनों और अपने पैशन को जिंदा रखना चाहते हैं?
1: अच्छा, ओके। मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप अपने एम पर कायम रहें, आप पूरा 100% दें और अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करें, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए आपको बड़ा करने के लिए। और अपने सिबलिंग से हमेशा बना के रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके भाई बहन हैं उनसे बना के रखें। और जीवन में चलते हुए अगर जो मास है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि आपको सभी तरह के अनुभव आते हैं, अच्छे बुरे। तो अच्छे तो अच्छे ही लगते हैं याद करने के लिए, बुरे अनुभवों से आप सीखें, आप उनसे लेसन लें कि और आप एक एक सेटिंग द बाउंड्रीज जैसे बोलते हैं कि आप खुद को भी बदलें और ऐसी बाउंड्रीज सेट करें कि आपको उस तरह के कटु अनुभव वापस से न आए जिंदगी में, और आप एक एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए। मैं यही कहना चाहूंगी। यस, खुशियां बांटें, खुश रहें। और मैं ये बोलना चाहूंगी हमारे एज ग्रुप के लोगों को कि आपने बहुत सारे कर्तव्य किए, एज अच्छे संतान का एग्जाम्पल दिया आपने, अच्छी बहू होने का या बेटा होने का, और आपने सभी कर्तव्य पूरे किए। और प्लीज बी नाइस टू योर सेल्फ, अपने लिए भी अब थोड़ा समय निकालें, अपनी सेहत के लिए, अपनी हॉबीज के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे, तो आप वो अपनी हॉबीज डेवलप करें, पुराने फ्रेंड्स से मिलें वगैरह वगैरह। तो फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन मेक यू हैप्पी, जो अपना जिसे कहते हैं मी टाइम, तो वो जरूर करें। यस, वो जरूर करें।
0: अपने बहुत फरमा रही हैं आप, मी टाइम होना तो ऐसा है सांस लेने के बराबर जरूरी हो गया है आजकल की रस्साकशी भरी जिंदगी में। तो यहाँ इसी नोट पर वीना, आप हमारे दोस्तों को कहिए बाय बाय।
1: सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे बुलाया और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और यस, श्रोताओं को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे सुना।
0: ये हमारे श्रोता नहीं है वीना, ये हमारे दोस्त हैं, सारे
1: फैमिली मेंबर्स।
0: फैमिली मेंबर्स हैं, और हमारे बाकी जो टांटिया भील के रेडियो के भी जो लोग हैं वो सब हमारे दोस्त हैं। वी आर ए फैमिली, ऐसे ही बोलती हूँ। हाँ बोलिए, आप क्या कह रही थी?
1: नहीं, हमेशा खुश रहें, खुशियां बांटें।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आपने दोस्तों, कितना कितना मधुर, कितना सुंदर पैगाम दिया है वीना ने। और अब जाते जाते उनकी गाई हुई हम गजल सुनते हैं, जो उन्होंने कौन सी गाई है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो बात कर ले तो रिश्ते खराब चलते हैं। बहुत खूबसूरत थी ना। आइए, आपकी गाई हुई ये आखिरी गजल हम सुनते हैं सब मिलके।

आपने दोस्तों कितनी खूबसूरत गजल गाई वीना ने, बहुत बहुत शुक्रिया वीना इतनी सुंदर गजल हमको सुनाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे वीना की पसंद की ये आखिरी खूबसूरत गजल। आज वीना के साथ बात करते हुए ये एहसास हुआ कि जिंदगी में चाहे कितने भी शहर बदल जाएं, अगर दिल में संगीत का प्यार है, अपनों की यादें जिंदा हैं, तो हर सफर फिर भी खूबसूरत बन जाता है। वीना जी ने जिस तरीके से अपने हस्बैंड की तारीफ की, अपने बच्चों की तारीफ की कि सारा परिवार मिलके एक एक इकाई की तरह काम करता है, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। चलते चलते आज की इस सुहानी शाम के नाम बस ये दो मिसरे, यादों के चिरागों को दिल में सजाए रखना, यादों के चिरागों को दिल में सजाए रखना, सुरों के सफर में ये मिठास भी बनाए रखना।

0: इसी प्यारे से ख्याल के साथ अब आपकी दोस्त आरती रॉय आपसे चाहती है इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अल्फाजों, कुछ नए एहसासों और किसी नई सुरीली कहानी के साथ। तो सुनते रहिए तब तक आप 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो तांड्या भील। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनों से बहुत मोहब्बत करिएगा, अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते भी रहिएगा, गुनगुनाते भी रहिएगा। तो शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
2: तो दोस्तों, कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगे आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, खेतीवाड़ी कार्यक्रम मां एक बार फिर तमारू बहुत बहुत स्वागत करिए से रेडियो टाटिया भील 90.8 FM छापवानी आवाज आपड़ी हरू खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी हंगला किसान भाइयों तक खेतीवाड़ी थी जोड़ेली अलग अलग जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। खेतीवाड़ी ना इना कार्यक्रम ना माध्यम थी आपड़ किसान जो है आपड़ खेतरों में आवेरी अलग अलग समस्याओं ने तीनों निदान की कम करवानो ते हंगली जानकारी आपू इना रेडियो टांडिया भील ना खेतीवाड़ी ना कार्यक्रम ना माध्यम थी आपू ली सकी। साथ ही आपड़ जो किसान है वो आपड़ रेडियो स्टेशन पर फोन भी करी सके अने हमू जो अपड़ केवी की है अपड़ कृषि विज्ञान केंद्र है अपड़ झाबुआ जिला ना तीना विशेषज्ञ थी तमारी बात करावी ने कि कम तरीके थी तीनी फसल मा अगर जो नुकसान थई रो है तेना नुकसान थी कि कम वसवानू है अने अगर आप उते खेती करी रहा है तेने खेती बार वाड़ी मा एक पूरी तरीके थी जानकारी आपूं लेवानी जरूरत है ते जानकारी आपूं कहाती मल है तीनी जानकारी ने आपूं लेवा हरू जो केवी के ना विशेषज्ञ है तीना माध्यम थे भी हमू कोशिश करूँ कि जो भी जानकारी है जो भी किसान है तो अपनी अपनी जो अलग खेती करवा मांगे है तो तमू वो खेती नी जो मैसेज है जो फोन पर हमू आपू फोन पर तमू हमू बताड़ी सको अने हमू अपन केवी की ना विशेषज्ञ ना माध्यम थी तमारी तक तीनी खेती ना बारा मा पूरी जानकारी आलवानो प्रयास करूँ। किसान भाइयों आपू असल तरीके थी वाकिफ है कि हमने यो समय साली रो है ना समय में पानी पड़ी रो है अलग अलग प्रकार ना कीड़ा मकोड़ा है अपड़ आसपास तो अपड़ इनी पर्यावरण नो बदलाव थई रो है तेना पर्यावरण में अपड़ पशु नी आपू ध्यान रखवानी घनी जरूरी है केम के अपना जो पशु है अधिकतर पशु आपू घेर में बांधेलास राखी तो मतलब त्या तीनी मर्जी था हरे परे फरी नहीं सकी आपू जीव तीना खावानू आली रहा है तो आपू कोशिश करिए कि जहाँ भी अपना पशु रे है अपन वेड में तीना वेड ने आपू साफ सफाई थी राखी तीन में असल सारू आलिए तीना केम के हमने समय है धूप नहीं निकली रही है कीड़ा मकोड़ा ना संख्या बढ़ती जा रही है तो इना समय में अपन तीना देख रेख करवो घणो जरूरी है। साथ ही आज इना कार्यक्रम में आपू बात करी हूँ कि हमने अपन डगरा ने जो लंपी वायरस ना नामनी जो बीमारी है वो आजकल आपू रोज हामली रहा है कि अधिकतर डगरा लंपी वायरस ना नी वजह थी मरी रहा है तो इनी इनी बीमारी थी अपन वसेला की कम अपन डगरान राखूँ अने हूँ कारण से यहाँ डगरा ने ये सब बीमारी झेलवी पड़ी रही है तो इना बारा में आज ना इना कार्यक्रम में आपू चर्चा करूँ जाणूँ अने हम आशा करिए हैं कि तमो जे भी जानकारी आज इना कार्यक्रम में मळे है तीनी जानकारी ने अपना पड़ोसी किसान भाई हाथे भी साझा करवानो ताकि केम के कहीं भी बीमारी है आप जो ज्ञान है वो आलवाती बढ़े है जो भी बीमारी है अगर अपन मालूम पड़े कि आप मेरे वाला किसान ने अगर ते बीमारी है तो उस तीन थी की कम त्यो निजात पावी सके तीना बारा में भी ये जानकारी त्यो ली सके। तो किसान भाइयों आज ना इना कार्यक्रम ने आपू शुरुआत करी है जाणू आज ये लंपी वायरस केम आयो अने इनो हूँ कारण से और कि कम आपू अपने ना डगरा ना इना लंपी वायरस थी वसाड़ेला राखी सकी तो तमारो वधु समय न लेते हुए आज ना इना कार्यक्रम नी आपू आती शुरुआत करी से।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: दिनों आप भी सुन रहे हो के बारे में आज खासतौर से हम बात करेंगे पशु स्वास्थ्य और इसके साथ साथ लंपी स्किन डिजीज या लंपी वायरस जो आपने सुना होगा इस बारे में आज खासतौर से हम यहां बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल में जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान, क्योंकि कई राज्यों की अगर बात की जाए तो इस तरह की खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं कि जो दुधारू पशु हैं उनके जो पशु हैं उनमें जो गांठदार त्वचा रोग हो रहा है ढीलेदार त्वचा हो रही है आखिर ये लंपी वायरस है क्या और जब इसके समाधान की बात कही जाती है। अब से पहले हम देखते थे कोई विशेष टीका जो था इसके लिए नहीं था लेकिन अब राहत राहत की बात यह है, इसके लिए विशेष टीका जो है वो तैयार हो चुका है और कुछ ही समय बाद हम मान सकते हैं कि जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए वो शायद उपलब्ध भी हो जाएगा अपनी अपनी जो उसकी अलग प्रक्रियाएं हैं उनसे पूरा होने के बाद। लेकिन किस तरीके से हमारे जो पशुपालक हैं वो फिलहाल अपने पशुओं का इस लंपी वायरस से बचाव कर सकते हैं और कैसे पशु स्वास्थ्य बेहतर रखकर पशुधन के जरिए अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब हम लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। स्वास्थ्य की बात की जाती है तो कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है, उन्हीं के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और खासतौर से जब इस तरह की जो बीमारी आ जाती है लंपी वायरस की भी अगर हम बात करें इसको लेकर जो सरकार है उसने भी गंभीरता दिखाई, ना सिर्फ बेहद ही कम समय में देखिए जो इसका टीका है वो तैयार कर लिया गया बल्कि इसको लेकर खासतौर से अगर हम बात करते हैं पार्षोत्तम रूपाला जी की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये जानकारी आपको देंगे और कैसे कैसे इस वायरस से आप अपने पशु का बचाव कर सकते हैं, आइए इस बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
3: पशुपालन और डेयरी व्यवसाय की सफलता के लिए जरूरी है पशुओं का सेहतमंद होना। पशुओं और खासकर दुधारू पशुओं की सेहत के लिए उनके आहार पर भी ध्यान देना जरूरी है। साथ ही बदलते मौसम में पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाना भी जरूरी है। आहार की बात करें तो पोषण का प्रभाव पशुओं के शारीरिक विकास और प्रजनन पर भी पड़ता है। ऐसे में पशुओं को बिनौला खल और खनिज मिश्रण दें, सेंधा नमक खिलाएं जिससे पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। पशु को शरीर के भार के अनुसार ही खिलाना चाहिए। अच्छी किस्म का और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तो गाय को 1 किलो और भैंस को 1.5 किलो दाना दें। गर्भावधि के अंतिम 2 महीनों में पशु को 1 से 1.5 किलो दाना प्रतिदिन देना चाहिए। पशु आहार देते समय कई बातों का ध्यान रखें। आहार संतुलित हो और एक निश्चित अंतराल पर पशु को खिलाएं, जिससे पशु को पाचन से जुड़ी परेशानी न हो। गर्मियों में पशु को समय समय पर पानी देते रहें। वहीं अगर रोगों की बात करें तो पशुओं में गलघोटू, लंगड़ा बुखार, थनेला, मुंहपका, खुरपका, ब्रुसेलोसिस और बांझपन जैसे रोग लगने की आशंका रहती है। बांझपन के कई कारण होते हैं, जैसे गर्भधारण कर एक बच्चे को जन्म देने में विफलता, मादा में कुपोषण, संक्रमण, जन्मजात दोष, गलत प्रबंधन और हार्मोनों में असंतुलन। बांझपन से बचाने के लिए ब्रीडिंग कामोत्तेजना अवधि के दौरान की जानी चाहिए। अगर पशु कामोत्तेजना नहीं दिखाते हैं या फिर जिन्हें यौन चक्र नहीं आ रहा हो तो उनकी जांच करा लेनी चाहिए। साथ ही पशुओं को ऊर्जा के साथ प्रोटीन, खनिज और विटामिन वाला संतुलित आहार देना चाहिए। ये गर्भाधान की दर में वृद्धि करता है। थनेला एक संक्रामक रोग है और एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। थनेला होने पर दुधारू पशुओं के थन में सूजन और कड़ापन आ जाता है, जिसका असर पशु की दूध देने की क्षमता पर पड़ता है। बचाव के लिए थनों का समय समय पर परीक्षण करते रहें। थनों में कोई गांठ और दूध में थक्के हो तो पशु चिकित्सक की सलाह लेकर इलाज करवाएं। गलघोटू रोग मुख्य रूप से गाय और भैंस में पाया जाता है और मानसून के समय व्यापक रूप से फैलता है। लंगड़ा बुखार में दुधारू पशुओं में तेज बुखार आता है और घुटने के ऊपर वाले हिस्से में सूजन होती है। खुरपका मुंहपका रोग विषाणु से होता है। ये रोग किसी भी उम्र की गाय या भैंस में किसी भी मौसम में हो सकते हैं। खुरपका मुंहपका होने पर पशु सूख जाता है, पशुओं की काम करने और दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। देश के कुछ हिस्सों में लंपी वायरस का प्रकोप भी देखा जा रहा है। ये बीमारी पशुओं में तेजी से फैलती है। मवेशियों या जंगली भैंसों में ये रोग लंपी स्किन डिजीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इसके होने पर पशुओं को सामान्य से ज्यादा बुखार होता है, मुंह से लार, आंख और नाक से पानी निकलने लगता है, दूध उत्पादन कम हो जाता है, मादा पशुओं में गर्भपात हो जाता है, पूरे शरीर में गांठें बनने लगती हैं और गांठें घाव में बदलने लगती हैं। इस बीमारी के लक्षण दिखने पर बीमार पशु को बाकी पशुओं से अलग कर दें। साथ ही बाहरी लोगों का प्रवेश बाड़े में बंद कर दें और पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं को सेहतमंद रखने के लिए पशुओं को समय समय पर टीके लगवाते रहें। ध्यान रखें कि टीकाकरण के समय पशु का स्वास्थ्य अच्छा हो। बीमार होने का अंदेशा होने के कम से कम एक महीना पहले टीकाकरण कराना चाहिए।
2: तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से कितना जरूरी हो जाता है कि इस मौसम में भी हम जो पशु स्वास्थ्य है उसका जरूर ख्याल रखें। और खासतौर से डॉक्टर केमल पाठक, अगर मानसून की हम बात करते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए तो बेहद ही लाभकारी ये रहता है, लेकिन पशुपालकों की कुछ ना कुछ चुनौतियां बढ़ा देता है। और इस बार मानसून में जब हमने देखा लंपी वायरस जो है इसका प्रकोप ज्यादा तौर पर देखा गया, क्या स्थिति आप देखते हैं इसकी?
4: बिल्कुल, देखिए पशु उत्पादन के लिए जरूरी है कि पशु का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, और पशु के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि हम पूरा ध्यान रखें, उसका जो खान है, उसका पानी है, उसका क्या भोजन देते हैं, उसका क्या आवास है। लेकिन साथ साथ बीमारियों का, विशेष रूप से अभी आपने जिक्र किया कि इस समय जो मौसम है, गर्मी की मौसम भी बनी हुई है, बरसात का मौसम भी है, हमारे देश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, कई क्षेत्रों में बारिश कम हो रही है, ऐसे में जहां मनुष्य भी प्रभावित हो रहे हैं बरसात से, बाढ़ से, कहीं न कहीं वहां पशु का स्वास्थ्य भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। बरसात के दिनों में सभी जो पशुपालक हैं उन भाइयों को हम सलाह देते हैं कि आप अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। इस समय एक नई बीमारी, जिसको हम नई, हालांकि ये बीमारी हमारे यहां 2019 में भी आई थी, लेकिन उस समय इसका प्रकोप उतना नहीं था, लंपी स्किन डिसीज, जिसको हम जो है गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं, एक वायरस से होने वाला रोग है। और ये अभी हमारे 20 प्रदेश जो है, हमारे जो राज्य के हैं उनको जो है, हमारे देश के 20 राज्य हैं जिनके पशुओं को प्रभावित कर रही है। और ये बीमारी जो है विशेष रूप से गौवंश और भैंसों में, लेकिन ज्यादा गौवंशों को प्रभावित कर रही है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर इस बीमारी से गौवंशों की मृत्यु भी हुई है। इसका वजह से जो है पशुपालकों को काफी नुकसान हो रहा है, पशु का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पशु बीमार हो रहा है। और जिस काम के लिए हमारे पशुपालक भाई पशुओं को रखते हैं, उत्पादन, अगर जो गाय भैंस है, ये दोनों जो है हमारे देश में दूध के लिए पाली जाती हैं, और दूध जो है, इससे ये देखा गया है कि जिन पशुओं में लंपी स्किन डिसीज हो जा रही है उनका दूध उत्पादन भी कम हो रहा है और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है।
2: जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं हमारे जो पशु हैं और उनका जो पशु स्वास्थ्य है। यहाँ अजीत जी आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार कोशिश यही होती है कि जो हमारे पशु हैं उनका स्वास्थ्य पर अगर किसी भी तरह का असर आता है तो उसके लिए हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और उपचार से बेहतर बचाव माना जाता है, यहाँ पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो पशुपालक हैं उनको?
5: अभी आपने सुना डॉक्टर पाठक को और इतनी अच्छी बातें पशुपालकों को बताई कि हमारा पशुधन अपने देश की आर्थिक जो एक प्रकार से अपनी एक इनकम है, देश की इनकम, उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है
2: जी।
5: अब इसमें अपने को जो पशुधन है उसको बचाने के तरीके अपने अपनाएं, और किसान भाइयों को हम बार बार अवगत कराएं कि कैसे वो अपने पशुओं को समय रहते उनसे बीमारियों से बचा सकते हैं। इसमें प्रमुख बात यह है कि किसान भाइयों को बार बार ये बताना जरूरी है कि आप समय पर टीकाकरण जरूर कराएं। आपने अभी सुना कि लंपी स्किन डिजीज अपने देश में आ गई है, अब ये बीमारी अपने देश के लिए नई है, और इसमें भारत सरकार ने बहुत तेजी दिखाई है, अभी टीका इसका विकसित किया जा चुका है। लेकिन मैं किसान भाइयों को एक और बात बताना चाहूंगा, ये बीमारी अपने देश में बहुत तेज गति से फैल रही है, लेकिन भारत सरकार ने अपने प्रयासों में इसको रोकने की पूरी तैयारी की है, और इसके लिए अपने पास गोटपोक्स
2: जी,
5: जो कि पहले से बनी हुई वैक्सीन है, उसको लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और किसान भाई अपने इस वैक्सीन को अपने पशुओं को, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी आने का खतरा बना हुआ है, उसको लगवाएं। और इसके साथ साथ ये पाएंगे कि हमें जिन पशुओं को ये बीमारी लग चुकी है उनको अलग कर दें अपने घर के अंदर, साथ में कोशिश ये करें, क्योंकि ये मच्छरों से फैलती है, मच्छरों के काटने से फैलती है, तो इसमें मक्खियां भी आ गई, तो इसमें किसान भाइयों को क्या करें कि अपने उन पशुओं को जिनको ये बीमारी आ गई है उनको अलग तो करें, साथ में चूना का छिड़काव भी करें उनके जो दरवाजे हैं, उनके जो दरवाजे के आसपास, और साथ में अगर कोई मच्छरदानी अपने लेकर के अपने दरवाजों पे लगा दें, तो ताकि वो मच्छर उन बीमारी के पशुओं को न काटेंगे और आगे ये न फैलेगी। इसके साथ साथ ये पाया गया है कि जो बीमारी से ग्रसित है उनको अपने निकटतम पशु चिकित्सक को तुरंत इसके इलाज के लिए बुलवाएं और उसका इलाज तुरंत करवाएं, क्योंकि इससे पशु बच सकता है। और साथ में ये मैं अभी और बताना चाहूंगा कि ये बीमारी तो बहुत अपने देश में नई है और इसके प्रयास भी किए जा

0: तरीके से कोई वायरस रोग आता है तो आमतौर पर पशुपालक भी घबरा जाते हैं, किस तरह की आवश्यकता कि घबराएं नहीं बल्कि अगर किसी को ये इस तरह का रोग हो भी जाता है तो कितने दिन में हम मान सकते हैं कि पशु उससे बाहर निकल कर आ सकता है, ठीक हो सकता है?
1: देखिए, जो इसका पीरियड है कम से कम 14 से 21 दिन का इसका पीरियड रहता है जिसमें कि पशुपालक जो है ग्रसित रहता है
0: जी।
1: इसके अलावा इसमें सिम्टम्स बहुत जानने बहुत जरूरी है क्योंकि सिम्टम्स की पहचान के दम पर ही हम ये इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लंपी स्किन डिजीज है
0: जी।
1: इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, बुखार जो है 103-104 और कुछ दिनों के बाद तो देखा गया है हमने हमारे हॉस्पिटल में जैसे पशु आते हैं 106 के करीब भी बुखार होता है। इसके अलावा जो स्किन में लीजन्स आ जाते हैं, पस्ट्यूल्स होती हैं, वेसिकल नहीं होती, एक पस्ट्यूल होती है गोल 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर के करीब और पूरे शरीर में वो हो जाती है
0: जी।
1: इसके अलावा स्कैपुलर लिम्फ नोड और प्रीफेमोरल लिम्फ नोड जिसको एक पशु चिकित्सक इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है वो उसमें एनलार्ज हो जाते हैं
0: जी।
1: पशु जो है दूध प्रोडक्शन इसका कम हो जाता है और जैसा डॉक्टर अजीत यादव जी ने भी बताया है कि गोटपॉक्स वैक्सीन जो है ये हमें लगाना है, खास ध्यान ये रखना है कि जो भी पशु ग्रसित हो चुका है उसको हमें वैक्सीन नहीं लगानी है, ये केवल स्वस्थ पशु को लगाई जा सकती है। इसका भी 70% एफिकेसी बताई गई है, इस वजह से है क्योंकि यह एक कैप्री पॉक्स वायरस है जो कि गोट्स के उससे है और कैप्री फैमिली में से आता है और इसके जिस तरह से सिम्टम्स देखे गए हैं उसका हमें इम्यूनिटी जो है पशु की जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसको हमें बढ़ाना है। सारे जो पस्ट्यूल्स हो जा रहे हैं उसका हमें उपचार करना है, कोई कई हर्बल ऐसी क्रीम और स्प्रे आते हैं जिससे कि उनके अंदर कोई वो फैले नहीं। इसके अलावा बरसात के मौसम में मैगट वूंड हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन बढ़ जाता है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है।
0: आवश्यकता यह है कि हम कैसे पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको बरकरार रख सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर पाठक आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्या जिस तरीके से जब लंपी स्किन वायरस के अगर हमें लक्षण नजर आते हैं, पहला तो ये जो पशुपालक है उनको लगता है कि शायद अब जो पशु है वो बच नहीं पाएगा, इस तरह की धारणा जो है, भ्रांतियां जो है वो पशुपालकों के जहन में आ जाती हैं, तो किस तरीके से क्या इसके साथ साथ दूसरी बीमारी भी कोई पशु में आ सकती है?
2: देखिए, पहली बात तो मैं अपने पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि ये बीमारी है, हाँ आ गई है और नई बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पशु का अगर समय से उपचार कर दिया जाए, और इसका उपचार क्योंकि ये वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाला रोग है, तो वैक्सीन ही इसका सबसे बड़ा जो है उपचार और बचाव है। तो ऐसा नहीं है कि पशु को अगर आप सही ढंग से इसका स्वास्थ्य और भी ध्यान रखेंगे, उसको खाना पीना ध्यान रखें, उसका जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा अच्छा रखें, साथ ही साथ जैसा अभी विशेषज्ञ बता रहे हैं हमारे साथ के कि जो इसकी वैक्सीन है गोटपॉक्स वैक्सीन उसको लगा के रखें, तो पशु की ऐसा नहीं है कि आप, और इसमें किसी तरह का पैनिक होने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े दिन पशु बीमार रहता है तो पशुपालक भाइयों को नुकसान किस रूप में रहता है, पशु का स्वास्थ्य खराब होगा तो उसका उत्पादन घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये बीमारी अगर आपके पास ज्यादा पशु है, एक पशु है कोई बात नहीं, ज्यादा पशु है बाड़ों में, एक पशु से दूसरे पशु में भी जाती है। हालांकि जैसा कि डॉक्टर यादव और डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो खून चूसने वाली जो मच्छर मक्खी और जो टिक्स होते हैं उनके द्वारा संचरित होता है ये वायरस, और इसके अलावा भी एक अगर बीमार पशु हो गया है तो बीमार पशु से जो दूसरे स्वस्थ पशु को भी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट होते हैं इसमें जो काम आते हैं, या कभी कभी देखा गया है कि संक्रमित चारा है वो भी जो है इस वायरस को फैलाने में, या उसका सलाइवा है पशु का दूसरे में टच कर जाता है, तो इनका इसको जानने का तात्पर्य जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पशु को इस तरह के सिम्टम आ जा रहे हैं, एक पशु को आ गए, आपके पास 10 पशु हैं, तो उसको तुरंत उससे आइसोलेट कर दें और मन में कोई किसी प्रकार का डर नहीं बिठाएं
0: जी।
2: अगर समय से अगर आप ये सब सावधानी बरतेंगे, विशेष रूप से जो उसके रखरखाव की सावधानी है, तो आप अन्य पशु को भी उससे बचा लोगे। जो बीमार पशु है अगर उसमें लक्षण आ गए, क्योंकि शुरुआत में इसमें क्या होता है बीमारी में कि ये बुखार रहता है, इसमें 5-6-7 दिन जो है 41 डिग्री सेल्सियस बुखार रहेगा, 106 डिग्री जिसको बोलते हैं वो बुखार रहेगा, पशु स्वस्थ जो है सुस्त हो जाएगा, खाना पीना बंद करेगा, और आप धीरे धीरे देखोगे कि पशु का जो पूरा शरीर है उसके ऊपर धीरे धीरे करके जो है दाने दाने, इसीलिए इसका नाम लंपी स्किन डिसीज या दागदार जो है दानेदार जो त्वचा है इस बीमारी का नाम रखा गया। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो तुरंत अपने पशु को दूसरे पशुओं से अलग कर दें, बाड़े से अलग कर दें और दूसरे पशुओं के संपर्क में नहीं आए। एक चीज यहां और बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों में भ्रांति रहती है, क्योंकि अभी हमारा देश, हम लोगों ने सबने पूरे विश्व ने जो है सफर किया है कोविड से, तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो पशुपालन हल्कों में हो जाएगी।

0: इस तरह की भ्रांति भी कुछ लोग करते हैं कि ये वायरस है तो क्या हो गया, पशुपालक में तो नहीं हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखिए कि ये बीमारी जो है पशुपालक में नहीं होगी या जो हमारे साथ में, क्योंकि पशु हमारे परिवार का सदस्य होता है, हमारे बाड़ों में हमारे घर में रहता है
1: जी।
0: लेकिन आपको अगर पूरी सावधानी बरतेंगे, अगर वहां ध्यान रखेंगे, सफाई रखेंगे, और जैसे डॉक्टर यादव ने भी बताया, क्योंकि ये इसका जो संचारण है, जो इसका ट्रांसमिशन है, ये वायरस जो है, जो चीचड़ होती है या जो मक्खियां होती हैं जो खून चूसती हैं पशुओं का, या मच्छर होते हैं उनके चूसने, उनका खून चूसने के साथ साथ इस वायरस को ये बीमार पशु से स्वस्थ पशु में ले जाके डाल देती हैं। तो आपको क्या करना है, जहां आपकी जो जो जो इसका घर है, जहां आप पशुओं को रखते हैं, बाड़ा है, वहां पर ऐसी व्यवस्था करें कि सुबह शाम आप धुएं की व्यवस्था करें, वहां मक्खी नहीं जाए, वहां मच्छर जो है पशु को काटने की व्यवस्था ऐसा न हो कि पशु के पास वो, इस तरह की व्यवस्था करें कि वहां कीड़े और ये जो चीचड़ है, अगर आपके पशुओं पर चीचड़ लगी हुई है, बरसात में पशु के शरीर पर चीचड़ लग जाती है, सब जानते हैं पशु पालक भाई चीचड़ों का, तो चीचड़ों की दवा आती है आजकल, अगर ज्यादा कम लगे हुए हैं चीचड़ को हटा दें, तो यानी अगर इस तरह का अगर आप ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से आपके गांव में या आपके क्षेत्र में अगर लंपी स्किन आ गई है तो आपके पशु उनसे को आप उनसे बचा सकते हैं।
1: यानी साफ सफाई का देखिए विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसे में जो मच्छर मक्खियां हैं वो वाहक बन जाते हैं इस तरह के जब रोग फैलने लगते हैं। तो साथ ही यहां अजीत जी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लंपी स्किन वायरस जब आ जाता है या पशु में एक गांव में अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो क्या इस बीमारी को हम दूसरी बीमारियों से जोड़कर भी देख सकते हैं, क्या उनके लिए भी ये किसी तरह का प्रवेश द्वार हो सकता है?
2: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और अपने किसान भाइयों के दिमाग में ये चल रहा है। देखो कोई भी बीमारी आ सकती है या आ जाती है तो उसके अंदर दूसरी बीमारी आने के खतरा बना रहता है, क्योंकि इससे पशुओं की जो रोगरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है
1: जी।
2: तो मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि देखो ये बीमारी तो एक नई है, लेकिन पशुओं के अंदर और भी बीमारियां अपने संक्रमण टाइप की पैदा हो सकती हैं। इस बीमारी का तो हमने अभी आपने देखा कि उसके रोग बचाने के उपाय किए कि भाई हमें वैक्सीन करनी चाहिए, लेकिन इस बीमारी के साथ साथ अगर, क्योंकि पशुओं में कई टाइप की संक्रमण बीमारियां हो सकती है जिसमें खुरपका मुंहपका बहुत ही एक संक्रामक रोग है, इसकी साल में अपने को दो बार वैक्सीन करवाते रहने चाहिए। ये बीमारी आ गई साथ में खुरपका भी आ गया तो अपने लिए एक भयंकर रूप धारण कर सकती है। तो खुरपका की बीमारी भी आ सकती है, साथ में गलघोटू नामक बीमारी भी है, वो भी अगर वैक्सीन नहीं करेंगे तो मेरी एक पशुपालकों को बार बार सलाह है कि जो बीमारियां पशुओं में संक्रमण टाइप की हैं और जिनसे बहुत अधिक हानि हो सकती है, खुरपका मुंहपका गलघोटू, और एक अपने भारत सरकार ने अभी एक बहुत 2019 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था जिसके तहत हमें खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस ये बीमारियों को एक प्रकार से अपने बचाव के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी को बचाने के कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसमें वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है।
1: मिशन मोड में यानी इसकी शुरुआत
2: करी। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी है वो पशुओं में तो बीमारी करती है जिसके अंदर गर्भधारण गिर जाता है, और साथ में उसमें ये पाया गया कि वो मनुष्यों में बहुत भयंकर बीमारी पैदा करती है। तो ऐसे में पशुपालक क्यों नहीं अपना ऐसे तरीके अपनाए जैसे कि उसको समय पर, और ब्रुसेलोसिस में 4 से 8 महीने की जो मादा बछड़ियां हैं उनमें टीका करना बहुत जरूरी है। तो ये कार्यक्रम अपने भारत सरकार ने एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर स्टार्ट किया हुआ है
1: जी।
2: गाई ब्रुसेलोसिस भी नहीं आएगी, खुरपका मुंहपका नहीं आएगी, साथ में अपने गलघोटू भी नहीं आएगी अगर अपन समय पर इनका टीकाकरण करते हैं।
1: टीकाकरण इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस बीमारी क्योंकि काफी खतरनाक बीमारी ना सिर्फ पशु बल्कि पशु से मनुष्य में भी आ सकती है। और आमतौर पर हम देखते हैं जब हमारा गर्भित पशु होता है तो उसकी आखिरी तिमाही के दौरान जो गर्भपात की समस्या आ जाती है, लेकिन ये जरूरी कि आप समय रहते टीकाकरण कराएं। डॉक्टर संजीत जानना चाहेंगे आपसे, जब टीकाकरण की हम बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो पशुपालक है उनको ये लगता है अगर हमने पशु का टीका कराया तो उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा या बीमार हो जाएगा, इस तरह की जो धारणा बन जाती है तो कहीं ना कहीं पशुपालक पीछे हटने लगते हैं टीकाकरण से, क्या स्थिति देखते हैं आप?
3: देखिए टीकाकरण की वजह से दूध उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। अगर जिस दिन टीकाकरण किया गया कि कुछ पशुओं में 1% 2% में जैसे बुखार की समस्या हो गई या उनके अंदर कोई ऑफ फीड हो गया, इन वजह से उसका दूध प्रोडक्शन कम होता है। वो प्रोडक्शन भी केवल 1 या 2 दिन के लिए कम होगा, रेगुलर कम नहीं होगा, और वो वापस रिकवरी कमजोरी पे मोड पे आ जाता है। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने देखा है कि फील्ड में जब भी हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो या तो वो ये कहते हैं कि पशुपालक की इससे दूध कम हो जाएगा, या कहते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल है हमारा तो हम अगर इसको लगवाएंगे तो इससे अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भ जो है गिर जाएगा। तो इस तरह की समस्या कभी भी नहीं आती है। दूध उत्पादन एक या दो दिन के लिए कम होता है और पशुपालक को यह समझना होगा कि अगर यह बीमारी आती है तो दुग्ध प्रोडक्शन जो है 15 दिन 20 दिन और एक महीने तक का नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। अगर एक दो दिन का वैक्सीन की वजह से अगर कुछ पशुओं में होता है, वो भी केवल कुछ पशुओं में, हर पशु में नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ अगर कोई उसको कैल्शियम है या मिनरल मिक्सचर है या इस तरह की चीज साथ में अगर हम देते हैं तो दूध प्रोडक्शन जो है मेंटेन किया जा सकता है।
4: किसान भाइयों, आपू लगातार लंपी वायरस थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपू हामली रहा है, जेम के आपू ये हामलियों के लंपी वायरस जो बीमारी है इनकी समकवानी जरूरत नहीं मिले, केम के हाव इनो टीको बनी गयो है, दवाई आपू ने उपलब्ध थी गई है, इनमें लंपी वायरस में हूँ था ये अपना किसान भाइयों प्रोग्राम ने माध्यम थी हमलियो है, हमने आपू चर्चा करते ला के कहीं ना भी जो जाना अपने जीव है अपने गाय बैल को जो भी है तो उनको अगर तिनान अगर आपू देखी के तिनाना जो सामड़ी है तिनी ऊपर अगर डवा हरकू थवा लागे गाठे बनवा लागे तो इन लंपी वायरस के है, तो इन लंपी वायरस थी वसवा हरू जो टीको है वो उपलब्ध है, तो आपू हमने समकवानी जरूरत नहीं मिले, इनथी आपू निदान पावी सकी। अने साथ ही अगर आपू देखी के जो भी पशु है तो हमने दूध आलतू है या दूध पी रू है तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा पोषण हम देख के ये आपू यूं इन पर भी इन टीको लगाड़ी दिन थी बचाव कर सकी है, इतने समकवानी बात नहीं मिले। इन हाथे इन चर्चा ने हजू भी आपू आगे बढ़ाऊँ, इनकी जोड़ेली हजू घनी खरी बातों ने लीने आपू चर्चा करूँ, पर हमने समय थी गयो है एक नाना सा ब्रेक नो, आपू हमने एक आप आहनी संस्कृति नो एक सुंदर छू गानू हम तीन बाद इन चर्चा ने फिर था चालू कर हूँ। इतने बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो डांडिया भील 90.8 FM नी हाथे।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो डांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: किसान भाइयों, हमने आपू एक सुंदर छू प्यार छू अपने पहली गीत ने सांभ्यू अने आपू लगातार लंपी वायरस थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने लीन चर्चा करी रहा है। तो हमने इना कार्यक्रम में हजू आपू इना लंपी वायरस थी जोड़ेली हजू जानकारियों ने हासिल करी जानी केम के क्या हजू हूँ आपू करी सकी हूँ कारण से अने अलग अलग प्रकारनो भी होई सके तो इनी पहचान किकम करवानी अने किकम इनथी आपड़ा आपड़ा बीजा जानवर ने भी वसाड़ेला राखवानो।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: पशु स्वास्थ्य और लंपी वायरस के बारे में किस तरीके से जो लंपी स्किन डिजीज है वो अलग अलग राज्यों के पशुओं में देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ जो पशु स्वास्थ्य है वो कैसे हमारा प्रभावित हो सकता है। खासतौर से यहाँ डॉक्टर पाठक आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे गर्भित पशु हैं अगर उनमें इस तरह के लक्षण हमें नजर आ जाते हैं या अभी नहीं है लक्षण किसी दूसरे क्षेत्र में इस तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं तो उनका जो टीकाकरण है वो कब तक कराया जा सकता है।
3: देखिए अभी जैसे डॉक्टर यादव ने भी कहा, डॉक्टर शर्मा जी ने कहा, पहली बात तो है बरसात का मौसम है, जनरल बात कर रहा हूं कि पहले जितनी बीमारियां हैं खासकर खुरपका मुंहपका HS और BQ इनका वैक्सीनेशन अगर कराया है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराया है तो एक तो तुरंत करा लें। मन में ये भ्रम निकालते हैं कि इसका टीकाकरण से किसी तरह से पशु को कोई नुकसान होगा
2: जी।
3: अब आपने कहा कि जो है जो सवाल किया कि जो गर्भित पशु हैं अगर एडवांस स्टेज में है, अगर हम लंपी स्किन की बात कर रहे हैं तो गोट पॉक्स की जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो अभी बताया गया है कि अगर उसमें लक्षण आ गए तो उसमें नहीं लगानी है, लेकिन क्योंकि ये प्रिवेंटिव है
2: जी।
3: जो स्वस्थ पशु हैं आपके, और ये बात भी हम कर रहे हैं गाय और भैंस की
2: जी,
3: हम और किसी पशु की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बीमारी इन्हीं दो पशुओं की है। तो आप जो है गोट पॉक्स की वैक्सीन जो कि अपने देश में उपलब्ध है, जैसा अभी डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि ये जो वायरस है ये पॉक्स वायरस की फैमिली का है, तो वो ये पाया गया है कि ये जो गोट पॉक्स की वैक्सीन है वो पशु को नुकसान नहीं करती है। को और ऐसा नहीं है, कुछ किसान भाई सोच सकते हैं बीमारी तो मेरे को हो रही है लंपी स्किन मेरे पशु को और आप वैक्सीन दे रहे हो गोट पॉक्स की
2: जी,
3: तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो वायरस उनके साथ जो है उसका मेल है, उसके साथ जो उसका जेनेटिक मेकअप है, और ये पाया गया है कि जो लंपी स्किन डिसीज जो वायरस से हो रही है वो गोट पॉक्स की वैक्सीन लगने से वो पशु आपका सुरक्षित हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वैक्सीन के साथ साथ अगर आपके पशु में ये लक्षण आ गए, मैं फिर कहूंगा इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ये है क्योंकि इसमें जो शरीर के ऊपर गांठें हो जाती हैं इसलिए इसको गांठों वाला बीमारी या गांठों की त्वचा वाली बीमारी कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों को मैंने अभी कुछ पशु पालकों से, मैं परसों कहीं गया था किसी गांव में, तो वो कह रहे थे कि भैया गांव में कैंसर की बीमारी आ गई है
2: जी।
3: तो मैंने उनसे सवाल करा कौन सा कैंसर पशुओं में आ गया, तो उन्होंने कहा जी वो स्किन में गांठ हो जाए। तो ये कोई कैंसर की बीमारी नहीं है, एक वायरस से जनित बीमारी है, और अगर इसका हम ध्यान रखें, पहली बात तो है कि पशु को जैसे डॉक्टर शर्मा ने ही बताया, मैं भी कहता हूं कि एक तो उसको संतुलित आहार दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए, पशु को बुखार अगर बुखार की स्टेज में भी अगर है, अगर आप वैक्सीन लगा देते अर्ली स्टेजेस में तो वो काम करती है, तो अगर आप उसका रखरखाव और उसका जो खाने का पीने का और जो असंतुलित आहार आप देंगे तो जो बॉडी इम्यूनिटी की डॉक्टर यादव बात कर रहे थे कि हमें शरीर की जो क्षमता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता पशु हो चाहे मनुष्य हो, अगर हम स्वस्थ हैं तो कब स्वस्थ होंगे कि अगर हमारे अंदर शरीर के अंदर पशु जो बीमारी है उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। लड़ने की क्षमता काय से बढ़ती है, वो अच्छा खाने से बढ़ती है, अच्छा मिनरल मिक्सचर लेने से बढ़ती है। अच्छा तो पशुओं में मिनरल मिक्सचर पे तो मैं हमेशा जोर देता हूं कि जो कभी कभी पशुपालक ये कहते हैं कि मेरे पशु जो है ब्याया ब्याने के बाद दूध ज्यादा नहीं दे रहा है, दूध की मात्रा कम हो रही है, कभी कभी कहते हैं कि हमारा पशु जो है हीट में नहीं आया, कभी कहते हैं कि जो है पशु का जो दूध है वो निकल नहीं रहा है, तो उसका कारण एक ये भी है, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने पशु को समय से मिनरल मिक्सचर नहीं देते हैं। मिनरल मिक्सचर की हम जब बात करते हैं, पशु के स्वास्थ्य से जोड़ता हूं हमेशा उसको कि मिनरल मिक्सचर भी एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है। जो पशुपालक भाई तमिलनाडु में है, जो पशुपालक भाई पंजाब के हैं, उन आपके क्षेत्र के हिसाब से जो है मिनरल मिक्सचर मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, यानी आपके क्षेत्र में आपके क्षेत्र की जलवायु आपके क्षेत्र की जो सॉइल है उस हिसाब से पशु को कौन से मिनरल की कमी हो सकती है उनकी पूर्ति करने के लिए उसका एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर देते हैं। तो अगर आप उस हिसाब से पशु को मिनरल मिक्सचर भी देंगे तो जो पशु की रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी।
2: जी बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। और खासतौर से अजीत जी अगर देखा जाए, क्योंकि अभी जो पशुपालक हैं, अभी जैसा डॉक्टर पाठक ने बताया कि एक सिर्फ इस तरह की जो अफवाह है वो फैला दी गई कि ये तो कैंसर रोग है, पशुओं की कैंसर बीमारी है, जो पशुपालक है वो अंतर नहीं कर पाते। कभी कभी उनका मानना कहना ये होता है कि जो पशु का थन है उस पर उन्हें किसी तरह की गांठें नजर आई, जबकि कभी कभी जो लंपी स्किन में हम बात करते हैं कि शरीर पर गांठें नजर आती हैं, और जब अगर थन पे इस तरह की गांठें नजर आए तो थनेला का भी वो लक्षण माना जाता है, जो कि एक गंभीर समस्या है पशुपालकों के लिए, पशुओं की। तो वहां पर किस तरीके से वो सही देखरेख कर सकते हैं और अंतर कर सकते हैं बीमारी में?
4: ये आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल किया है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी अपने देश में लंपी स्किन डिजीज आ रखी है और उन पशुओं को आप देख भी रहे हैं। पहले बीमारी अपने देश में नहीं थी, तो उस टाइम क्या अगर थनों पर अगर कोई इस टाइप की गांठें आ जाती थी तो ये लंपी स्किन डिजीज नहीं मानी जाती थी। और अभी देखो आप सारे शरीर पर ही ये गांठें आ रही है, थनों पर भी आ सकती हैं। तो इस प्रकार से अगर सारे शरीर पर ऐसी गांठें नजर आ रही हैं तो इसमें माना जाता है कि एक प्रकार से लंपी स्किन डिजीज है। अगर सिर्फ वो थनों में रह रही थी और अपने देश में ये नहीं थी तब तो ये माना जाता था ये किसी पॉक्स के लीजन से या किसी और बीमारी के लीजन से। तो किसान भाई अभी इस टाइम एक प्रकार से पहचानने की कोशिश करें कि लंपी स्किन डिजीज का जो प्रभाव है वो पूरे शरीर में दिखाई देता है, और गांठें भी ऐसी टाइप की आती है, आप देखना दिखाई देने में बहुत ही भद्दी नजर आती है और उनको एक प्रकार से कैंसर नजर आता है, क्योंकि ये बीमारी अपने देश में पहली बार इतने व्यापक रूप में फैल रही है। तो किसानों को डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर पाठक साहब ने, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको समय पर सबसे पहला इसका कि पशु चिकित्सक को बुला करके पहचान करवाएं क्या उसमें टेम्परेचर तो नहीं है
2: जी।
4: अगर टेम्परेचर है तो उसी टाइम इसका इलाज स्टार्ट कर दें और वैक्सीन का भी काम उसी टाइम करवाएं, क्योंकि ये बीमारी जब ग्रसित हो जाता है पशु और उसमें हम वैक्सीन के लिए इसके लिए रिकमेंड नहीं करते हैं
2: जी। तो यानी पहले से ही बचाव हम करके चलें, टीकाकरण जो है वो करा लें, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही डॉक्टर संजीत, अगर देखा जाए जैसा कि अभी अजीत जी ने भी कहा कि जब शरीर पर गांठें नजर आने लगती हैं और कुछ समय बाद वो गांठें जो है जख्म में तब्दील हो जाती हैं, तब हम मान सकते हैं कि लंपी वायरस का जो प्रकोप है वो हो सकता है। और ऐसे में भी जो हमारे पशुपालक हैं, जो पशु की देखरेख करते हैं, वहां पर लाल दवाई या कोई और इस तरह का जो उपचार जो है वो आप बताना चाहें उनको बचाव के लिए?
5: जी, जो भी लीजन्स बनेंगे, पस्ट्यूल्स बनती हैं
2: जी,
5: उनके ऊपर सबसे पहले आप बीटाडीन ग्लिसरीन का लेप कर सकते हैं। अगर बीटाडीन आपके वहां पे एरिया में अवेलेबल नहीं है तो हल्दी जो है वो हर घर में अवेलेबल होती है, हल्दी को एलोवेरा के साथ मिला करके इसको लगा सकते हैं। और कुछ नहीं तो पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे आपने बताया लाल दवा जिसे बोला जाता है
2: जी,
5: उससे उसको साफ कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान ये रखना है कि जो मैगेट जो होते हैं वो मक्खी होती है, वो बैठ करके उसमें अंडे दे देती है और जिसकी वजह से खूब सारे उसमें कीटाणु बन जाते हैं
2: जी।
5: इस तरह की कोई सिम्टम जो है डेवलप ना हो, क्योंकि अगर मैगेट्स बन जाएंगे तो उसको ट्रीट करना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा साथ में, क्योंकि ये नोड्यूल्स बनते हैं और वो जो नोड्यूल है स्किन में भी है और सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी जाती है और कुछ एरियाज में तो वो मसल को भी इफेक्ट करती है
2: जी।
5: इसके लिए दो तरह की एंजाइम्स हैं, सेरेशियोपेप्टाइडेज

0: है कुछ ग्रंथियां होती हैं, लिम्फ नोड होती हैं, उन लिम्फ नोड में ये वायरस पनपना शुरू कर देता है, उनमें बढ़ना शुरू कर देता है, तो वो गांठें बन बन के निकलती हैं उसमें, और वो गांठें पूरे शरीर पे धीरे धीरे करके पूरे शरीर पे आ जाएंगी। तो ये लक्षण जो इस तरह के गांठों के लक्षण है वो सिर्फ लंपी स्किन डिजीज में ही होते हैं
1: जी।
0: तो इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। और साथ में ये भी देखिए कि ये बीमारी आ कैसे रही है, आपके गांव में कहां से आ रही है, आपके क्षेत्र में कहां से आ रही है, या आप जहां आप रहते हैं जिस मोहल्ले में आपके पशु रहते हैं तो वहां देखिए कि चीचड़ों का प्रकोप ज्यादा तो नहीं है, वहां पर जू तो नहीं है। ये जू का भी, जू को भी पाया गया है कि वो भी जब खून चूसता है पशु से तो इसके साथ वायरस को ट्रांसमिट करता है। जो मक्खी है, जो खून चूसने वाली मक्खियां हैं, मैं उनकी बात करूंगा कि ये वायरस जो है खून चूसने वाली मक्खियों के माध्यम से भी जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अगर ये सब चीजें आप नजर रखोगे तो आप अपने गांव को, अपने क्षेत्र को इस बीमारी से बचा सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा भ्रम न माने मन के अंदर। मैं भ्रम की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाँ ये, क्योंकि ये वायरस से बीमारी है और पहले ये शुरुआत हुई थी इसकी गुजरात से, धीरे धीरे करके एक स्टेट में गया, एक राज्य में गया, आज 20 राज्य के पशु गौवंश है हमारे, भैंसों में कम है लेकिन गौवंश में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और हमारे जो गौवंश हैं, अपने जो स्वदेशी गौवंश हैं, हम ये कहते हैं, मैं खुद कहता हूं एक वैज्ञानिक रूप के रूप में, कि हमारे गौवंशों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है
1: देसी नस्लों की,
0: देसी नस्ल के जो गौवंश हैं, लेकिन फिर भी ये लंपी स्किन डिजीज उनमें भी हो रही है, उनके अंदर भी जा रहा है, क्योंकि ये वायरस है। और ये वायरस जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप सब जानते हो कि जो वायरस है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके अपने पशुओं को अगर आप लंपी स्किन डिसीज से बचाना चाहते हैं, और बचाना चाहते क्या है, बचाना है
1: जी।
0: हमें अपने पशुओं में बीमारी नहीं होने देनी है लंपी स्किन, क्या ना फुट एंड माउथ डिसीज भी ने। अब तो इसके टीके के भी अभी हम बात करेंगे कि इसका जो गोट पॉक्स का टीका है वो अवेलेबल है, सरकार की तरफ से अवेलेबल है
1: जी।
0: और अभी जो डॉक्टर यादव कह रहे थे, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इतनी जल्दी पहल करी है, और पशु स्वास्थ्य पर तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है
1: जी,
0: जिसको हम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कंट्रोल प्रोग्राम जो सितंबर 19 में उन्होंने लॉन्च किया था
1: जी।
0: ये मैं कहता हूं ये तो हमारे पशुपालकों के लिए एक वरदान है
1: जी,
0: क्योंकि आपको ये 100% जो इसकी जो सहायता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट 100% भारत सरकार की तरफ से मिलती है
1: जी।
0: पशुपालक भाइयों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम के तहत आपके पशु का जो टीके लगते हैं, जो अभी डॉक्टर यादव ने भी बताया, उसी बात को मैं फिर दोहराना चाहूंगा, आप ध्यान रखिए इन टीकों के लगाने के लिए आपको एक पैसा नहीं देना है
1: जी।
0: बस आपको क्या करना है, आपने अपने पशु को नजदीक के पशु चिकित्सालय में ले जाना है, और आपका जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉन्च प्रोग्राम है उसके तहत आपका पशु 100% इन बीमारियों के अंडर में कवर होगा
1: जी।
0: ये वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई है, अभी तक नहीं लगवाई है, तो कृपया अपने पशुओं को ये वैक्सीन लगवा लीजिए, एक बात।
1: दूसरा काम का यानी जो ख्याल है वो जरूर रखना चाहिए हमारे पशुपालकों को, और पशु स्वास्थ्य बेहतर रह सके, हमारे पशु निरोगी रह सके, इसके लिए निःशुल्क जो अभियान है देखिए वो चल रहा है टीकाकरण का। अजी जी, और जानकारी आपसे हम इस बारे में लेना चाहेंगे, क्योंकि जो पशुपालक है उनको जानकारी नहीं हो पाती कि क्या जो टीकाकरण है वो निःशुल्क है या कौन सा टीका कब लगवाना है। अभी का जो समय है, हालांकि आमतौर पर तो ये कहा जाता है जब मानसून के पहले से यानी बारिश आने से पहले अगर हम टीकाकरण करा लें, लेकिन क्या अभी भी समय है कुछ बीमारियों के लिए अगर टीकाकरण पशुपालक कराना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं इस महीने में?
2: मैं पशुपालकों को ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो टीकाकरण कार्यक्रम है खुरपका मुंहपका, उसमें साल में 2 बार टीकाकरण किया जा रहा है
1: जी।
2: एक बार बरसात से शुरू होने से पहले और एक बरसात के बाद 6 महीने के अंतराल पे, और ये टीकाकरण निःशुल्क बिना पैसे के अपने पशु चिकित्सा जो अधिकारी है वो घर घर जाकर कर रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि अब भारत सरकार ने एक नई स्कीम जारी की है, पशु स्वास्थ्य इनका कार्ड बनाया गया है
1: जी।
2: उस कार्ड का क्या जानकारी है, उसमें पशुओं के बारे में सब कुछ जानकारी उसमें रिकॉर्ड की जा रही है, ये एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। उसका फायदा क्या रहेगा कि इस पशु को कब टीका लगा था और कब नहीं लगा था, और इससे एक प्रकार से जरूरी किया जा रहा है। इसमें अपन देखेंगे कि अभी लंप स्किन डिजीज आई है, अगर उसका स्वास्थ्य कार्ड, पशु स्वास्थ्य कार्ड बना है तो वो उसमें एक प्रकार से दर्ज हो जाएगा कि हमारे इन पशुओं में लंप स्किन डिजीज का टीका भी लग गया है। पहले खुरपका मुखपका भी लगा हुआ था, एक अपने पास ब्रुसेलोसिस की जो बीमारी में पहले भी बता रहा था, इसका भी भारत सरकार ने निःशुल्क टीकाकरण की योजना बनाई है। और इस योजना के तहत अपने को जो टीके

0: किसानों को दिए जा रहे हैं वो बिना पैसे के और घर घर जाकर के लगाए जा रहे हैं
1: जी।
0: इसमें भी एक जरूरी यह है कि ये टीकाकरण सिर्फ जो मादा बछड़ियां हैं 4 से 8 महीने की, ये नर में नहीं लगाया जाता है,
1: और
0: पशु चिकित्सक इसको घर घर जाकर लगा रहे हैं। और अब लगता है कि अभी वो नहीं लगाए हैं ये टीके, तो आप तुरंत अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें और इन टीकों को तुरंत लगवाएं, और पशु स्वास्थ्य कार्ड में इसकी जानकारी वो दर्ज हो जाएगी। और आगे चल करके ये भारत सरकार के प्रयास चल रहे हैं पूरे देश को सभी पशुओं के बारे में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उसकी जानकारी किसी को भी लेनी हो कि इस पशु में आपके पास 5 पशु हैं, उनमें कौन कौन से टीके कब कब लगे थे, वो सारी आपके तुरंत आपको मुहैया की जाएगी और पशुपालकों को तुरंत बता भी जाएगी। और ऐसा अगर कोई नहीं कर रहा है तो आगे भारत सरकार कुछ नियम इस टाइप के बना रही है ताकि, क्योंकि अपना पशुपालन व्यवसाय एक बहुत अधिक आगे आय का अर्जित करने का एक साधन बन रहा है। अगर समय रहते, मैं बार बार कह रहा हूं समय रहते, जैसे कि अपने पास लंपी स्किन डिजीज आ गई
1: जी।
0: अब इस बीमारी को अगर अपन समय रहते जो पशु इससे ग्रसित नहीं हुए हैं उनके बारे में टीकाकरण के बारे में तुरंत सोचें और लगवाएं। सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे भी टीकाकरण आ रहा है आप लगवाएं ताकि ये उन पशुओं के पशु स्वास्थ्य कार्ड में दर्ज हो सके और अपने देश में ये मालूम हो सके कि कितने पशु टीकाकरण किए जा चुके हैं और कितने बिना है।
1: बिल्कुल, यानी एक नई पहल देखी, क्योंकि तो जाहिर तौर पर हमें भी दिखता है पशुपालन क्षेत्र के लिए अलग से देखिए मंत्रालय अब हमारे देश में है, और जिसका जिक्र अभी यहां अजीत जी भी कर रहे हैं, जो हमारा जो ई पशु हाट पोर्टल की अगर बात की जाए वहां सारी जानकारी आपको मिल जाती है टीकाकरण पशु का कब हुआ है और कब हमें कराना चाहिए, और इसके साथ साथ यूआईडी नंबर जो है वो जनरेट किए जा रहे हैं जिससे आप पहचान कर सके। टैगिंग जो है वो लगातार चल रही है, और खासतौर से डॉक्टर संजीत अगर देखा जाए जिस तरीके से ये एक आधुनिक बदलाव जो है अब हम पशुपालन क्षेत्र में भी देख रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जो डेयरी फार्मिंग का क्षेत्र है उस पर बहुत से लोग हैं जो आत्मनिर्भर हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक हम देखते थे कि जो हमारी आर्थिक स्थिति है वहां पे कहीं ना कहीं कृषि एक रीढ़ की भूमिका निभाती थी हमारे देश के लिए, लेकिन अब वहां जो योगदान है लगातार पशुपालन क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है।
2: देखिए पशुपालन एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रहा है। इसके तहत पहले क्या होता था कि एक पशुपालक के पास 2 पशु होते थे, 4 पशु होते थे, 10 पशु होते थे। अब क्या है, जैसे दिल्ली में हम बात करें तो दिल्ली में बड़ी बड़ी डेयरी कॉलोनीज हैं, डेयरी कॉलोनीज के अंदर किसी पशुपालक के पास 500 बफलोज हैं, 500 भैंस हैं, किसी के पास 50 गाय हैं, किसी के पास 100 गाय हैं। इसी प्रकार जैसे भारत सरकार ने इंडिजिनस ब्रीड को बढ़ावा देने के लिए, अपनी जो देसी गायों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, तो जगह जगह पर जो हमारी गिर नस्ल है, थारपारकर है, उनको लेकर के अलग अलग जो पशुपालक हैं और जो उसको एक बिजनेस के रूप में ले रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं
1: जी।
2: और डेयरी जो है, डेयरी सेक्टर में बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे एक्सपोर्ट है, बफलो मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, और मिल्क का है, मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जो सोमेटिक सेल काउंट होता है मिल्क के अंदर उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। इन चीजों को देख करके भारत के जो दूध की डिमांड है विदेशों में बढ़ेगी, इसीलिए हमें इस पे कार्य करने की जरूरत है ताकि हमारा जो है दूध, हम दूध प्रोडक्शन में तो आज नंबर 1 हो गए लेकिन एक्सपोर्ट की बात करें, बफेलो मीट एक्सपोर्ट में है और बफेलो मीट एक्सपोर्ट को भी आगे हमें लगातार मेंटेन करने के लिए जरूरी होगा कि जो एफएमडी है, जैसे जो भी एफएमडी अफेक्टेड एरिया होता है वहां से बफेलो मीट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो जो भी कंट्रीज यहां से लेती हैं मीट, उनको यह देखना होता है कि उस एरिया में कोई भी एफएमडी का आउटब्रेक नहीं हुआ है, तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए भारत सरकार ने एफएमडी कार्यक्रम चलाया है। एफएमडी की वजह से 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ का एनुअल लॉसेस भी होते हैं
1: जी, बिल्कुल।
2: इसको भी रोकने की जरूरत है, दूध प्रोडक्शन में भी कमी आती है।
1: तो देखिए अगर हम सावधानी बरतेंगे तो सीधे तौर पर जो हमें आर्थिक नुकसान होता है, एक पशुपालक को जो नुकसान हो सकता है वो आप रोक सकते हैं, उसे बचा सकते हैं, और उसके साथ ही अगर आपका नुकसान थम जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो मुनाफा है वो बढ़ने लगेगा। और पशुधन के साथ साथ हर पशुपालक की उम्मीद यही होती है कि जिस तरीके से दूध उत्पादन वो चाहते हैं बढ़े, साथ ही उनका मुनाफा भी बढ़ता रहे, लेकिन इसके लिए सावधानी अपनाना बेहद जरूरी।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।
1: जब आ जाती हैं हमारे पशुओं में तो क्या उनका इलाज हो सकता है, ना सिर्फ लंपी स्किन डिजीज की बात की जाए बल्कि जो तमाम रोग हैं वहां पर आपको सावधानी अपनाना बेहद जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण यही कि जो सावधानी अगर आप अपनाएंगे, साफ सफाई अगर आप रखेंगे, तो काफी हद तक तमाम जो रोग बीमारियां हैं उनसे आप अपने पशु का बचाव कर सकते हैं। लेकिन यहां जिस तरीके से हमने डॉक्टर पाठक शुरुआत में बात की कि जो लंपी स्किन डिजीज है इसके लिए बाकायदा एक विशेष टीका जो है वो तैयार किया गया है, और ये टीका कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश में ही तैयार किया गया है, इस बारे में आप क्या जानकारी साझा करना चाहेंगे?
4: हाँ देखिए मुकुल जी, ये बहुत अच्छी जो है ये खुशी की बात है, क्योंकि ये जो लंपी स्किन जितनी जल्दी हमारे देश में आया उतनी जल्दी हमारे जो पशु चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने वो दिन रात उन्होंने मेहनत करके और स्वदेशी निर्मित, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल एनिमल हेल्थ में, पशु स्वास्थ्य में अगर है तो ये है कि लंपी स्किन डिसीज की जो वैक्सीन है स्वदेश में निर्मित हमारी तरह पूरी तरह से भारतीय, यानी भारतीय का कहने का तात्पर्य है कि जो वायरस हमारे देश में सर्कुलेट हो रहा है, हमारे पशुओं में वायरस सर्कुलेट हो रहा है, उसी वायरस पे काम करके दिन रात मेहनत करके हमारे जो वैज्ञानिक हैं पशु चिकित्सा क्षेत्र से, इसके लिए विशेष रूप से हमारे दो संस्थान के वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा और हमारे पूरे देश के पशु पालकों को जानकारी होनी चाहिए कि एक हिसार में इक्वाइन का, घोड़ों का एक संस्थान है, और एक इज्जत नगर में हमारा IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिसार का इक्वाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके लंपी प्रोवैक वैक्सीन जो है वो बनाई है
1: जी।
4: ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्निक से बनाई गई वैक्सीन है और ये बड़ी इफेक्टिव है। इसके जो शुरू के जो परिणाम देखे गए और इसका जो इसको जो लॉन्च किया था वो हमारे माननीय कृषि मंत्री और माननीय पशुपालन मंत्री के द्वारा किया गया था, तो वैज्ञानिकों को मैं इस बधाई दूंगा और उनका जो प्रयास था, और इस तरह से एक नया एक आयाम खोला गया है कि धीरे धीरे करके जैसे ही बीमारी आई हमारे पशुओं में, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत शुरू कर दी और इसकी वैक्सीन आज हमारे देश में उपलब्ध है। हालांकि वैक्सीन का अभी कॉमर्शियली ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बहुत शीघ्र ही इस वैक्सीन का कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात हम करते हैं। क्या मतलब है, जिस तरह से FMD की वैक्सीन बहुत सारी कंपनी बना रही है, प्राइवेट कंपनी जो है इसको लेंगी, तो स्वदेश निर्मित यानी मेक इन इंडिया वैक्सीन जो है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा लंपी स्किन बीमारी के लिए बनाई गई है
1: जी। तो देखिए लंपी प्रोवैक नाम से अभी तक ये जो वैक्सीन तैयार की गई है, और जैसे हमने आपको कहा क्योंकि जब भी कोई नई वैक्सीन आती है तो उसमें समय लगता है, जितना समय पहले लगा शोध में उसके बाद इसको बाजार तक पहुंचाने के लिए या पशुपालकों तक पहुंचाने के लिए जो उसमें समय लगता है, अब उसकी प्रक्रिया हम मान सकते हैं कि वो लगभग शुरू हो चुकी है और कुछ समय बाद ये पशुपालकों को मिलने भी लगेगा। लेकिन अजीत जी, अगर देखा जाए तो कभी कभी जो पशुपालक हैं उनकी समस्या यही रहती है कि या तो उनको जो टीकाकरण है उसकी जानकारी नहीं हो पाती या जो वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं हो पाती। इस दिशा में किस तरीके से सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है?
0: मैं भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि भारत सरकार ने इस बीमारी को एक प्रकार से रोकथाम करने के लिए बहुत अधिक तेज गति से प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि क्योंकि अभी डॉक्टर पाठक साहब ने बताया कि भाई देखो, हमारे पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई है
1: जी,
0: और ये वैज्ञानिकों के बहुत अच्छे प्रयास हैं और अपने देश में ही निर्मित है, तो एक प्रकार से ये मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन क्योंकि देखो कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसकी एक प्रक्रिया है
1: जी।
0: उस प्रक्रिया में कॉमर्शलाइज करने के लिए कई एक प्रकार से कदम है जिसको एक प्रकार से जो कंपनी जाने उसमें समय लगेगा
1: जी।
0: और उस समय को नष्ट न करने के लिए, क्योंकि अपने पास ये पाया गया है कि जो अपनी गोटपोक्स है, अगर गोटपोक्स के टीके अपने पास कम उपलब्ध है तो शीप पॉक्स पे भी जा सकते हैं, वो भी इससे मिलती जुलती वैक्सीन है। लेकिन क्योंकि अब भारत सरकार के प्रयास हो रहे हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी कंपनी है
1: जी,
0: वो इसमें उनको ये कहा जा रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपनी गोट पॉक्स अभी आप तुरंत स्केल पे, बहुत अधिक स्केल पे बनाएं, क्योंकि इससे क्या है ना कि अपने को बीमारी तो अभी आ रखी है
1: जी।
0: अब अपने को मान लो इस प्रक्रिया में और 6 महीने लग जाएंगे कॉमर्शलाइजेशन में, लंपी स्किन डिजीज जो लंपी प्रोवैक जो बनाई है उसको समय को बर्बाद होने से और अपने पशुधन को बचाने के लिए अभी भारत सरकार ने नियम बनाए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अभी प्रोडक्शन बढ़ाएं गोटपोक्स वैक्सीन का
1: जी।
0: और इसमें हमें कामयाबी ये मिल रही है कि ये प्रोडक्शन अच्छा दे रही है, मतलब पशुओं को बचाने में ये काफी कारगर सिद्ध हो रही है
1: जी। बिल्कुल देखिए
0: इससे क्या होगा कि आगे चल चल करके अपने देश को अभी एक प्रयास किए जा रहे हैं कैसे न कैसे इसको यहीं रोका जाए, क्योंकि ये पशुधन को बहुत नुकसान कर रही है। तो गोट पॉक्स की बहुत तीव्र गति से प्रोडक्शन किया जा रहा है और इसकी सप्लाई चेन, क्योंकि ये देखो गोट पॉक्स भी एक प्रकार से कोल्ड चेन की जरूरत है इसको पहुंचाने में, तो सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे ये गुणवत्ता के साथ, देखो टीका जब बनाया जाता है और जब तक लगाया जाता है उसमें पाया गया है कि गुणवत्ता किसी तरह से कम न हो, तो उस प्रकार से नियम कायदे बनाए हैं कि भई ये अपनी जो वैक्सीन है गोट पॉक्स की, ये जब तक लंपी प्रो वैक्सीन नहीं आ रही उस टाइम तक इसको अच्छी तरह से लगाया जाए, इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करी जाए और सभी पशुपालन के जो विभाग अपने देश के उनको बार बार भारत सरकार ने कई प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए, और क्योंकि एक प्रकार से एक अपने देश के अंदर एक बहुत बड़ा इस टाइम ये डिजीज का अटैक हुआ है, तो इसको प्रयास के रूप में भारत सरकार बहुत अधिक प्रयास कर रही है और इसमें अपने को ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी वैक्सीन इसको कारगर सिद्ध हो रही है उसको तुरंत लगाएं और आगे आने वाले समय में, क्योंकि अपनी एक प्रकार से ये जो लंपी प्रोवैक बनाई है एक बहुत अच्छी वैक्सीन
1: साबित होगी। विशेष टीका जब मिल जाएगा तो तभी सहूलियत रहेगी पशुपालकों को, और अभी अगर वो आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप उस जो गॉड पॉक्स का टीका है वो लगवा सकते हैं, जिससे पशु इस तरह की बीमारियों से बचा रहे। साथ ही डॉक्टर संजीत, और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे बचाव के लिए, क्या जो हमारे पशुपालक हैं अगर किसी पशु में इस तरह के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरे पशुओं को अलग कर दें बचाव के लिए, क्या ये भी संभव
2: है? आइसोलेशन जो है ये पहली चीज है, जब भी किसी पशु के अंदर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं उसको हमें अलग कर देना है। इसके अलावा मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये ध्यान रखें कि जब भी क्या होता है कि पशु जो है नया पशु को खरीद के लेके आते हैं या अपने पशु जो है उसको बेचते हैं, इसमें ध्यान रखें जब भी कोई नया पशु आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने डेयरी फार्म पे उसका ध्यान रखें कि उसमें कोई भी इस तरह के लक्षण ना हो, क्योंकि आपके अगर सपोज आपके पास 10 पशु हैं और कोई नया पशु आप लेकर के आते हैं, नई गाय आप लेकर आते हैं, उसमें अगर थोड़े बहुत भी लक्षण हैं तो वो आकर के ये संभावना है कि 10 के 10 पशुओं को वो संक्रमित कर सकती है। इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी नया पशु जो इंट्रोड्यूस ना करें, कोई भी बीमार पशु अगर है तो उसको आइसोलेट कर दे, जो चारा पानी और इवन जो बाहर के जो लोगों की विजिट है उसको अवॉइड करें, जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको एक संतुलित आहार दें, और किसी भी प्रकार के कोई लक्षण अगर नजर आते हैं तो चाहे वो बुखार है, चाहे उसमें लेजन्स आ जाते हैं, कोई निमोनिया की शिकायत है, पैर में सूजन आ रही है या कोई और भी किसी प्रकार का कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसका समुचित उपचार करें।
5: किसान भाइयों, ते आपण हमने समकवानी जरूरत नहीं मळे, केम के जो भी ये लंपी वायरस है इनो इलाज है, आपण मेरेवाला स्वास्थ्य केंद्र पर जाइन आपू इनो इलाज करावी सकी, आपणा जो भी डॉक्टर है इना टीका लगाड़वा शुरू करना क्या है। ते किसान भाइयों, यहाँ आहार के आपण समकवानी जरूरत नहीं मळे, जो भी पशु है अगर आपण लागी रहे के इना इना जानवर ने ये तकलीफ थई रही है तो तेना पशु ने आपण बाकी पशु थी थोड़ूक अलग मेल देवानू, अने आपण असल तरीके थी उनो ध्यान रखवानी जरूरत है, तेना पौष्टिक आहार आलवानी जरूरत है। एमनी के आप बीमार थई गयो है आप नहीं खबर एम करीने आपू नहीं आली, पर तीनो वहां पर वधु ध्यान रखवानी जरूरत है। तो किसान साथियों, आजना कार्यक्रम में हम आशा करी है कि तमने लंपी वायरस थी जे भी शिकायत थी, जो भी समक थी, ती आंगळी मरी गई है, अने हाव आपू इनी बीमारी थी लड़वा हरू आपू तैयार है, अने अपना जानवर जो है वो वसी सके है। तो आप एक एक काम करूँ है कि आप ढीले ही नहीं करवी है, कि अगर आपने लागी रहो है कि थोड़ी घनी तकलीफ है अपना पशु ने, तो आप हूँ करवानू के मेरे वाला स्वास्थ्य केंद्र पर ले जावानू, अने इना बारा में डॉक्टर ने बताड़वानू कि एमें अपना डगरा ने ये तकलीफ है। साथ ही हम आशा भी करी है कि तमू आप मेरे वाला जो भी तुम्हारा किसान साथी है, पड़ोसी किसान मित्र है, तिनान भी इना बारा में बताड़ो कि हमने जो लंपी वायरस है इना बारा में जे बातें साली रही है, हमने घनी खरी भ्रांतियों भी साली रही है, तो इन्हीं भ्रांतियों ने आप नहीं होसवानू, आप भी आजना इना कार्यक्रम ना माध्यम थी आपने जानियो है कि इनो इलाज है, इनी दवा बनी चुकी है, और अपना पशु जो है वो फिर थी स्वस्थ थी सके, अने जो भी अगर दूध कम भी थी गयु है तो तीनों दूध भी पासू बराबर आवी जाए। इतने किसान भाइयों, आजना इना कार्यक्रम में इतरुस आपू अपनी काल मुलाकात था है इना समय पर, इतने बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो 90.8 FM पर।
6: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपू
7: રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.
5: किसान भाइयों एक बारी फेर था बहुत बहुत स्वागत करिए है तमार सबूनो रेडियो टंटिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम मा किसान भाइयों रेडियो टंटिया भील 90.8 FM छवानी आवाज आपड़ा हंगला किसान भाइयों हरु खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है किसान साथियों इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी આપણ કિસાન ભાઈ જો હે અલગ અલગ પ્રકારની ખેતી કરવાના બારામાં જાણકારી હાસિલ કરી શકે અલગ અલગ પ્રકારની ખેતી કરવાથી અમારો જો કિસાન હે તેની આયમાં વૃદ્ધિ થાય અને સહી તરીકાથી ખેતી કિકમ કરવી જોવે તેના બારામાં આપું કેવીકેના માધ્યમથી કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના વિશેષજ્ઞોના સહયોગથી આપું એની સબ સમસ્યાનો સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ આપણું કરીએ છે તે કિસાન ભાઈઓ આશા કરીએ હે કે અમારા કિસાન ભાઈઓને સમય સમય પર એક સલાહકારની જરૂરત પડે હે અમારા ખેતરોમાં કેમ કે દિન પ્રતિદિન આપણ જો વાતાવરણ છે તે બદલતો જઈ રહ્યો હે આપણી જગા બી હે જગામાં હર સાલ આપણું ખેતી કરીએ હે તો ધીરે ધીરે જો ખેતીમાં આપણ ખેતરોમાં આપણી જમીનમાં જો બદલાવ આવી રહ્યો હે તેને હિસાબે અગર આપણું દેખીએ તે તેનો આપણું એક હી તેનો રસ્તો નકાળીએ હે કે વધુ ખાતર નાખ દઈએ હે તો યુ વધુ ખાતર નાખેલું બી તાજું નિમળે હે તો કિસાન ભાઈઓ અગર એવી સમસ્યાએ અગર આપણા કિસાન ભાઈઓને અગાડી આવે હે તો કિસાન ભાઈને શું કરવું જોવે સાથે અગર આપણું દેખીએ તે અમારા કિસાન ભાઈ હે ત્યાં મુખ્યતઃ જુવાર મુખ્યતઃ મક્કા હૈ કપાસ હૈ સોયાબીન હૈ ચના હૈ ગેહું હૈ બસ એની ફસલોની ખેતી કરે હૈ એની અલાવા ભી આપણો કિસાન જો હૈ ફલોની ખેતી કરી શકે હૈ ફૂલોની ખેતી કરી શકે હૈ ઔષધિ પૌધાની ખેતી કરી શકે હૈ પરંતુ જાણકારીઓના અભાવને કારણ અમારો જો કિસાન હૈ એની હંગલી ખેતીને નહીં કરી શકે હૈ એટલે આપણ એના ખેતીવાડી કાર્યક્રમના માધ્યમથી આપણું કોશિશ કરું કે કિકમ આપણ આપણું આપણી ખેતીને સુધારી શકીએ અને અગર કમ ખેતી બી હોય તો તેમાં આપણું કઈની કૃષિનો કઈનો પદ્ધતિ અપનાવીને વધુથી વધુ ખેતી કરી શકીએ અને લાભ લઈ શકીએ કિસાન ભાઈઓ અગર આપણું દેખીએ કે હમણે જો આપણે કૃષિ હૈ તે ઘણી અગાડી નકળી ગઈ હે હાવ વગર જમીનનો બી ખેતી કરી જઈ રહી હૈ ખાલી પાણીમાં ખેતી કરવી બી સંભવ હે તો કિસાન ભાઈઓ હજુ બી ઘણી એવી ચીજે હે જૈસે કે આપણું ખાલી ખેતર દેખીએ લેકિન મત્સ્ય પાલન હૈ મુર્ગી પાલન હૈ પશુ પાલન હૈ ભેંસ પાલન હૈ દૂધ કા ઉત્પાદન હૈ અંડા કા ઉત્પાદન હૈ યા હંગળા જો કારોબાર હૈ એમાં બી આપણો કિસાન ઉઠી શકે હે ઉપર આવી શકે હે તો કિસાન ભાઈઓ કહીં ના કહીં હમુને આપણા જો જાણકારી હૈ તેના એક દૂસરાથી સાઝા કરવાની જરૂરત હૈ તો કિસાન ભાઈઓ એના કાર્યક્રમમાં આપણું ના કેવલ વિશેષજ્ઞોથી આપણું રાય લઈએ હે પર આપણા કિસાન ભાઈઓના સવાલ બી આપણું એના વિશેષજ્ઞો તક પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરીએ હે સાથે આપણું એક સફળ કિસાનની કહાની બી સાંભળું તેની કહાનીને માધ્યમથી આપણને એ જાણકારી મળે હે કે એવી રીતે ની તે પહેલી રીતે બી કિકમ થઈને ये खेती करी जाई सके है तो किसान भाइयों आशा करिए हैं कि यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम तमोन लाभकारी है अने ये भी आशा करिए हैं कि जो भी जानकारी आपून इना रेडियो टांटा भील 90.8 FM ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम थी मळे है तिनी जानकारी ने आपू आपरी तक के सीमित नहीं रखी तिनी जानकारी ने आपू आपड़ा पड़ोसी किसान भाइयों हाथे भी साझा करिए ताकि આપણ તેનથી બી કંઈ હિક મળી શકે અને આપણી હિકથી તેઓ બી આપણા ખેતરોમાં બદલાવ લાવી શકે તો કિસાન ભાઈઓ ખેતીવાડીના એના કાર્યક્રમની આપણું શરૂઆત કરીએ હે અને આજના એના કાર્યક્રમમાં જો બી આપું હિક હું તો આપું આપણા ખેતરમાં તેનો ઉપયોગ કરું ખાલી સાંભળીને એની ચીજોને ભૂલવાનું નહીં હે જો ભી જાણકારી હે તેની જાણકારી પર આપણે ગોર કરવાની જરૂરત હે અને આપણે કિસાન ભાઈઓને તેની જાણકારી લઈને તે ખેતી કરવાનો જરૂરત હે. તો કિસાન ભાઈઓ આપણે વધુ સમય ના લેતે હવે આજના એના કાર્યક્રમની આપું

0: आतिश शुरुआत करिए से।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: हैं और पहले जैविक खेती के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दवाल, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आज की तारीख में क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि जो किसान है वो जैविक खेती को अपनाए, क्या महत्व है इसका?
3: मोनालिसा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारा किसान है आज उसकी उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, उसको उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल पाती है, साथ साथ में जो उपभोक्ता है वो काफी इस समय चाहता है कि उसको ऐसा भोजन मिले जिसमें किसी प्रकार के जहर का अंश ना हो, यानी कि रेजिड्यू ना हो। इसलिए जैविक खेती की जो बहुत अधिक आवश्यकता पड़ रही है और जैविक के जो पदार्थ हैं उनका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है, उपभोक्ता उसको लाइक करता है और साथ साथ में किसान की उत्पादन लागत कम होती है।

0: जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का काफी महत्व होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है। इसे ही बायोगैस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी को किसान खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा रासायनिक खाद की तरह फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10 से 20% बढ़त हो जाती है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर, पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खाद के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप काफी कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती हैं।
1: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगले मेहमान का और बांस की खेती के बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अजय ठाकुर, आपसे सबसे पहले हम बांस के बारे में जानना चाहते हैं। बांस से जुड़ी हुई कई रोचक बातें हमने सुनी है, जैसे कि बहुत ही तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है बांस, और हमें बताएं कि इसकी खेती के क्या फायदे हैं किसानों के लिए।
2: जी हाँ, बांस के नेचुरली आपने जैसा कहा फास्टेस्ट ग्रोइंग जिसको बोलते हैं, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। और एक साल में, आपको एक रोचक तथ्य बताऊं, कि एक साल में अपनी पूरी लंबाई ले लेता है। अगले साल ये बढ़ता लंबा नहीं होता है, तो जितना लंबा होना है एक साल में हो जाता है वो। दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसकी मोटाई भी 2 साल में पूरी हो जाती है, तो ये तैयार 2 साल तैयार होने वाला कोई भी वृक्ष यानी लकड़ी दान करने वाला पौधा नहीं है। जी। अगर आप कंपेयर करेंगे कि सुगर केन की जो हम खेती करते हैं गन्ने की, उसकी भी हम 2 साल की पैदावार लेते हैं, और गन्ने और बांस की में तुलना करें तुलना नहीं है। आज के डेट में बायोमास को प्रोड्यूस करने वाला सबसे अच्छा पौधा है। और भारत जो है एक कास्ट में डेफिसिट कंट्री है, मतलब हमको अभाव है पूरे। आपको शायद पता होगा कि हम 50,000 लकड़ी का आयात करते हैं, उसमें बांस भी शामिल। अब हम इतना सारा आयात करते हैं तो बांस, अगर हम ऐसा तेज बढ़ने वाला पौधा लगाते हैं,
1: बिल्कुल, तो काफी जो आयात है हमें करना पड़ता है। ऐसे में अगर किसान बांस की खेती में रुझान ले, बांस की खेती को अपनाए, तो आयात पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सकता है। और साथ ही किसानों के लिए ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि बांस के कई तरह के उपयोग हैं और ऐसे में जो उसकी मांग है वो काफी अच्छी है बाजार में, तो बांस की खेती को अपनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विस्तार से जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
0: पारंपरिक खेती से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। घटते वन क्षेत्र और लकड़ी के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए भी बांस काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौध मुफ्त दिए जाते हैं। इस समय बांस की करीब 136 किस्में मौजूद हैं। अगर इसकी खेती को व्यावसायिक रूप देना है तो क्षेत्र और इस्तेमाल के हिसाब से इसकी किस्मों का चयन करें, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बांस की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस

0: पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं पड़ता। ज्यादा ठंड और दलदल में भी पौधे ठीक से वृद्धि कर लेते हैं। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है। इसके लिए नर्सरी में बीजों को तैयार कर लिया जाता है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रुपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें और सतह पर बैठे बीजों की रुपाई क्यारियों में कर दें। रुपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रुपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना जरूरी है, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहे।
1: बांस की खेती पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जैविक खेती के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर डबास आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जैविक खेती जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता के लिहाज से हो या पर्यावरण की दृष्टि से हो या फिर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की दृष्टि से हो, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों के मन में संशय ये रहता है कि रासायनिक खेती के मुकाबले अगर जैविक खेती को अपनाते हैं तो उत्पादन कम होगा और ऐसे में उन्हें नुकसान की चिंता होती है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ये चिंता हमारे किसानों को काफी लगी रहती है, लेकिन अगर नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान कब होता है? जब हम पौधों को सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाते, और वो पोषण कब नहीं दे पाते हैं? जब हम सही खाद का सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमारे जितने भी किसान भाई, उनके पास पशु हैं
1: जी,
2: उन पशुओं से जो गोबर मिलता है उसको हम बायोगैस सलरी के कन्वर्ट कर ले, यानी कि बायोगैस प्लांट के माध्यम से उसका खाद बनाए, तो एक तो खाद की गुणवत्ता अच्छी होगी
1: जी,
2: दूसरा उसमें किसी प्रकार के खरपतवारों के बीज नहीं होंगे, और तीसरी बात है इस खाद को खड़ी फसल में
1: जी
2: पानी के साथ दिया जा सकता है। इनके जब आपको नाइट्रोजन के तौर पे यूरिया देते हैं तो उसकी जगह अगर आप इस खाद को जैविक खेती में देते हैं तो आपके पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा
1: जी।
2: और जब पोषण सही मात्रा में मिलेगा, किस्म अच्छी है, खेत अच्छा है, तो आपकी उत्पादन कम नहीं होगा बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन उत्पादन तभी बढ़ेगा जब आप सही मात्रा में सही समय पे सही खाद देंगे
1: जी।
2: और ये जो बायोगैस सलरी होती है इसमें खाली एक पोषक तत्व नहीं होता, खाली नाइट्रोजन, बल्कि हमारे पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो सभी के सभी पोषक तत्व इस खाद के अंदर संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और जब पौधे को सभी के सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधे की बढ़वार भी अच्छी होती है, चाहे वो जड़ों की हो चाहे पत्तों की हो, और जब बढ़वार अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा आएगा। और क्योंकि किसी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं है तो इस प्रकार की फसल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी कम होता है। और एक और खास बात है, जब इस खाद का हम प्रयोग करते हैं बायोगैस सलरी का, तो ये हमारी मिट्टी के अंदर तीन तरह से प्रभावित करती है
1: जी।
2: एक तो मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को बढ़ाती है, मिट्टी की फिजिकल यानी कि जो भौतिक गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जो रासायनिक गुणवत्ता है उसमें बढ़ावा करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम पानी का उपयोग करते हैं तो कम पानी में भी हम अधिक पैदावार ले पाएंगे, यानी कि अगर जैविक खेती करेंगे तो हमारे पास पानी की भी बचत होगी और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो घटने की बजाय बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फसल का उत्पादन कम होने के बजाय अधिक होगा, और साथ ही साथ जो उत्पाद की गुणवत्ता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। और इस तकनीक में एक और फायदा ये होता है बायोगैस में कि हमारे किसानों को घर में खाना बनाने के लिए बहुत ही स्वच्छ और अच्छी गैस मिल जाएगी, अच्छा खाद मिल जाएगा। यानी कि किसान की दो आवश्यकता, एक तो ऊर्जा की आवश्यकता, दूसरा खाद की आवश्यकता, उन दोनों की आपूर्ति ये करता है। और यह तकनीकी हमारे छोटे और मझोले किसानों के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि छोटे और मझोले किसानों के पास में पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और साथ साथ में उनके पास भूमि के जो क्षेत्रफल कम है, और इस खेती में इस खाद का अगर प्रयोग
1: छोटे किसान है उनके लिए ये काफी उपयोगी है। डॉक्टर,
2: मैं आपको बताना चाहूंगा कि लागत इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्लांट किस आकार का लगाएंगे
1: जी,
2: और आकार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोबर उपलब्ध है, यानी कि जो इनपुट अवेलेबल है
1: जी।
2: क्योंकि अगर हमारे पास पशुओं की संख्या ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा गोबर होगा तो हमें बड़ा प्लांट लगाना है, पशुओं की संख्या मध्यम है तो मध्यम प्लांट लगाना पड़ेगा, और पशुओं की संख्या कम है तो छोटा प्लांट लगाना पड़ेगा। तो जो प्लांट का आकार है वो घन फुट या घन मीटर इनमें नापा जाता है। सबसे छोटा प्लांट जो किसान के लिए उपयोगी हो सकता है वो 35 घन फुट या 1 घन मीटर का होता है, और इस प्लांट के लिए 25 किलो गोबर की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी किसान के पास दो पशु हैं तो वो इस प्रकार के प्लांट को लगा सकता है, और इससे उसको जो खाद मिलेगा वो उसके 1.5 से 2 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। साथ साथ में जो गैस मिलेगी वो 5 आदमियों के परिवार के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त रहेगी, और जितना आपके पास गोबर है उसी के आधार पे प्लांट का हम साइज बढ़ाते जाएंगे। यानी कि 50 किलो गोबर है तो 2 घन मीटर का हो जाएगा, यानी कि 70 घन फुट का
1: जी,
2: और अगर आपके पास 75 किलो गोबर है तो 105 घन फुट या 3 घन मीटर का प्लांट हो जाएगा। तो इसी आधार पे हम ये गणना करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना अवेलेबल है, यानी कि गोबर कितना अवेलेबल है। और मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके लिए जरूरी नहीं गोबर ही अवेलेबल हो आपके पास। अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है तो पोल्ट्री वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, पिगरी फार्म खोल रखा है उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है, आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है जिसमें आप कोई भी जो हमारे अनाज या फलों का या सब्जियों का वो कर रहे हैं प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी वेस्ट है वो भी काम आ सकता है। आपका अगर स्लॉटर हाउस है तो उसका वेस्ट भी इसमें काम आ सकता है। जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं वो सभी हमारे बायोगैस प्लांट के लिए इनपुट है।
1: जी बिल्कुल,
2: हम जब भी बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो बायोगैस प्लांट का जैसे हमारा खाना होता है या पशुओं का खाना होता है इसी प्रकार से प्लांट का भी खाना होता है, और प्लांट का खाना है जो भी गोबर है या बायोवेस्ट हमारे पास अवेलेबल है वो उसका खाना है
1: जी।
2: तो हमें जितना भी हमारा जिस आकार का प्लांट है उसी के आधार पे उसको रेगुलर फीडिंग करनी है, यानी कि लगातार खाना खिलाना है। क्योंकि इसमें बायोगैस प्लांट में भी 2 किस्म के प्लांट होते हैं, एक तो रेगुलर फीडिंग वाले होते हैं और एक ऐसा होता है कि एक बार आपने फीडिंग कर दिया तो जब तक वो पूरा खत्म ना हो जाए तो उससे आपको गैस भी मिलती रहेगी, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे फिर दोबारा फीडिंग करेंगे
1: जी।
2: इस ऐसे प्लांट में सॉलिड फीडिंग ज्यादा होती है, तो जहां पे हमने फसलों का अवशेष का प्रयोग करते हैं तो वहां इस किस्म के प्लांट होते हैं। लेकिन इस किस्म के प्लांट में आपको जो गैस की मात्रा मिलेगी वो लगातार बराबर नहीं मिलेगी, कभी कम मिलेगी कभी ज्यादा मिलेगी
1: जी।
2: दूसरा होता है रेगुलर फीडिंग वाले प्लांट, यानी कि जिसको रोज ही खाना चाहिए। जिन प्लांट को आप रेगुलर फीडिंग करते हैं और सही मात्रा में करते हैं तो उनसे आपको लगातार गैस मिलती है, बराबर मात्रा में मिलती है, और लगातार आपको खाद भी मिलता है और बराबर मात्रा में मिलता है, और इसका जो खाद है वो बिल्कुल सड़के निकलता है, तो इसके खाद के ऊपर किसी प्रकार के मक्खी या मच्छर नहीं बैठते हैं, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, तो इसका खाद वही हम खाद अच्छा मानेंगे जिसमें बदबू ना हो और मच्छर मक्खी ना बैठे, यानी कि खाद पूर्णतः सड़ गया है। क्योंकि जब ये खाद हमारे खेत में जाएगा तो ये खेत के लिए ज्यादा लाभदायक होगा।
1: बिल्कुल,
2: अगर कई बार कुछ किसान गलती कर देते हैं कि छोटा प्लांट बना लिया उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो जब फीडिंग ज्यादा करेंगे प्लांट का आकार छोटा है तो कच्चा खाद निकलेगा
1: जी। किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
3: गोबर गैस बनाने के लिए अलग अलग विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। कोई लोहे का जो ऊपर कैन आती है उसको रख के बनाते हैं, कोई पूरा सीमेंटेड होता है, और भी अलग अलग विधियों से बनाया जाता है। तो आज आइए जानते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपर्ट की राय कि कौन सा बायोगैस अच्छा होता है और कौन से बायोगैस विधि से हमें बनाना ज़्यादा मुनाफे में हो सकता है।
2: एक बनते थे लोहे के ड्रम वाले जिसको हम केवीआईसी मॉडल कहते हैं, और दूसरे बनते थे ईंट और सीमेंट के
1: जी।
2: वो जनता बायोगैस था, लेकिन अभी एक नया प्लांट या काफी दिनों से चल रहा है जिसको हम कहते हैं दीन बंधु मॉडल, यह भी ईंट का सीमेंट का कंक्रीट का बनता है, और इस प्लांट का रखरखाव भी कम है, इसकी लागत भी कम है, और साथ साथ में इससे किसान को ज्यादा लाभ मिलता है और किसान के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो आजकल भारत सरकार या अधिकतर जो सरकारें हैं या जो एजेंसियां हैं वो दीन बंधु प्लांट को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं, और ये ज्यादा उपयोगी भी है क्योंकि सर्दी के मौसम में जो केवीआईसी मॉडल है उससे लगभग 25% गैस कम मिलती है, जबकि परिवारों को गैस की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो दीनबंधु प्लांट है इसमें गैस कम नहीं मिलती है, बराबर गैस मिलती रहती है, और गैस में बहुत कम फर्क पड़ता है। और दूसरी जो बात खास ये है वो है कि दीनबंधु मॉडल में रखरखाव बहुत आसान है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है और कम लागत आती है। तो किसान के हिसाब से जितने भी जो हमारे बाराबंकी के किसान हैं वो जो लगाना चाहते हैं तो उनको दीनबंधु लगाना चाहिए, और लगाना चाहते नहीं बल्कि सभी किसानों को लगाना चाहिए। क्योंकि आपका चित्र काफी फेमस है केले की खेती के लिए, आपका चित्र काफी फेमस है कुछ सब्जियों की खेती के लिए, आपके क्षेत्र में फूलों की खेती होती है और ये सभी खेती में इसका खाद बहुत ही उपयोगी हो सकता है और आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है।
3: जी हाँ बिल्कुल, आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। इसी के साथ किसान साथियों यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM छावा की आवाज।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: ब्रेक ने बाद एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीबाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों आपू लगातार खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने लीने आपू चर्चा करी रहा है, तो इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइए जानिए हजू खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने।
2: बायोगैस प्लांट है ये MNRE मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये केंद्र सरकार से राज्य सरकार के माध्यम से सभी किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो आप अपने जिले के जो खंड विकास अधिकारी हैं या जिला विकास अधिकारी हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको सब्सिडी मिलेगी और सब्सिडी में बदलाव आता रहता है। तो अभी भी शायद सब्सिडी में कुछ बढ़ाव होने की संभावना है, तो इसका कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है, तो आपको बिल्कुल सब्सिडी मिलेगी और ये आपकी सरकार के माध्यम से मिलेगी। जो अपने जिले के अधिकारी हैं उनके आप संपर्क में रहें और उनसे संपर्क करके आप सब्सिडी के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है प्लांट, इससे आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आपका खर्चा बचता है, आपका पैसा बचता है, आपकी मिट्टी सुधरती है, आपके जो महिलाएं हैं उनको सुविधा कम होती है, बल्कि मैं तो कहूंगा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है और खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए।
3: जी जी बिल्कुल। तो विपिन जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहां पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर रबास आपने बताया था बायोगैस प्लांट के दीन बंधु मॉडल के बारे में, मैं चाहूंगी कि थोड़े विस्तार से इस मॉडल के बारे में हमें बताएं।
2: जो दीनबंधु मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत सिंपल है। एक तो इसको बनाने में अच्छी सुविधा है और गांव में इसका रखरखाव में फायदा है और साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है और बाद की मेंटेनेंस ना के बराबर है और इसकी लाइफ भी काफी लंबी होती है।
3: जी।
2: इसको बनाने के लिए केवल आपको कुशल कारीगर चाहिए और अच्छे किस्म का आपका बिल्डिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसको एयरटाइट बनाना होता है। अगर एयरटाइट डोम नहीं बना तो आपका प्लांट फेल हो सकता है, इसलिए जो कारीगर बनाने वाला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में जो भी आप सामग्री इस्तेमाल करेंगे, खासकर सीमेंट है, रोड़ी है, बदरपुर है, तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए और इसको सही। तो जो दीनबंधु मॉडल है ये काफी उपयोगी है और खासकर जितने भी छोटे और मझोले किसान हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि घर में ये नीचे बन जाता है अंडरग्राउंड और उसके ऊपर ये कोई भी काम कर सकते हैं, आपको अलग से जगह की आवश्यकता नहीं होती है, खाद आपको लगातार मिलता रहता है और इससे इसका रखरखाव भी आसान है और बनाना भी आसान है, लागत भी कम है और सरकार इसको काफी प्रोत्साहित कर रही है और इस समय काफी कारीगर, इसके निपुण कारीगर अवेलेबल हैं जो इस प्लांट को बना सकते हैं और किसान को बाहर के इनपुट पे कम निर्भर करना पड़ता है, तो ये एक प्लांट अच्छी किस्म का प्लांट हो सकता है जिसको आप बनाएं उसका लाभ उठाएं।
3: बिल्कुल। जो बायोगैस प्लांट है वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम करे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, किस तरह की सावधानियां किसानों को बरतनी चाहिए?
2: बायोगैस प्लांट को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस आकार का आपने प्लांट बनाया है
3: जी
2: उसको उसका खाना रोज मिलना चाहिए और जब खाना रोज मिलेगा तो वो आपको गैस भी लगातार देगा, खाद भी लगातार देगा और अच्छी देगा। दूसरी बात आती है जब हम गोबर डालते हैं तो गोबर को पानी में अच्छी तरह से घोल के डालना है, यानी कि एक भाग गोबर का और एक भाग पानी का अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
3: अच्छा।
2: और जिन किसानों के फर्श पक्के हैं, जो पशुओं का पेशाब इकट्ठा कर सकते हैं या जो पशुओं के नहाने धोने का जो वेस्ट है वो इकट्ठा कर सकते हैं, तो आप उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गैस का अमाउंट भी ज्यादा होगा, खाद की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और आपको अलग से पानी लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात आती है जो प्लांट का बनाने की जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जो किचन के पास भी हो, साथ साथ में हमारी जो पशुशाला उसके भी नजदीक हो, वो ऐसी खुली जगह हो जहाँ पे सर्दियों में धूप अवश्य आती हो और प्लांट के ऊपर धूप रहती हो
3: जी।
2: तो ये चीजें ज्यादा लाभदायक हैं और साथ साथ में आपको फीडिंग, खासकर सर्दी के मौसम में आप इसमें फीडिंग दो तीन बार कर सकते हैं एक बार की बजाय, क्योंकि अगर आप एक बार करते हैं तो जो गोबर होता है, जो वो कोई भी पशु गोबर करता है तो उसका जो तापमान है वो लगभग 35 डिग्री के आसपास होता है, उससे ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि सर्दी का मौसम है बाहर का तापमान काफी कम है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है और जितना ही ठंडा हो जाएगा उतना ही प्लांट की एफिशिएंसी कम होती जाएगी।
3: अच्छा।
2: अगर आप उसको दो तीन बार यूज करेंगे, सुबह का सुबह यूज कर लिया, शाम का शाम को यूज कर लिया, दोपहर को यूज कर लिया, तो जो गोबर हमारे प्लांट के अंदर जाएगा उसका तापमान सही होगा तो आपका जो हमारे जो गैस बनाने की प्रक्रिया है वो ज्यादा सुचारू रूप चलती रहेगी, ठीक चलती रहेगी, आपको गैस बराबर मात्रा मिलती रहेगी, आपकी ये शिकायत नहीं होगी कि सर्दी के मौसम में गैस कम बन रही है
3: जी।
2: दूसरी बात ये कि जब भी आप प्लांट बनाते हैं, प्लांट बनाने के बाद जो डोम होता है जिसको हम कहते हैं किण्वन क्रिया होती है, उस डोम को मिट्टी में जरूर दबाना है।
3: अच्छा,
2: अगर मिट्टी में नहीं दबाएंगे क्योंकि वो सीमेंट और कंक्रीट का बना हुआ है तो तापमान के उतार चढ़ाव से उसके अंदर क्रैकिंग आ सकती है और अच्छा। जब क्रैकिंग आ जाती है तो उससे गैस लीक कर जाती है और गैस लीक कर जाती है आपका प्लांट फेल हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर चार उंगल भी मिट्टी चढ़ा देंगे तो ये जो मिट्टी है तापमान के

0: उतार चढ़ाव को रोकेगी और उसमें किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होगी तो आपकी जो प्लांट की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। एक और बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, खासकर कृषक महिलाओं को,
1: जी
0: वो गैस का प्रयोग करते हैं, अगर गैस बिल्कुल सही जा रही है तो उसकी लो बिल्कुल नीली होगी।
1: अच्छा।
0: लेकिन क्योंकि प्लांट में जो गैस के साथ कई बार जो पानी का भाप बन के जाता है और वो भाप आगे कन्वर्ट हो पानी में हो जाती है तो आपकी पाइपलाइन जो गैस की पाइपलाइन है उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है।
1: अच्छा।
0: अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पानी इकट्ठा होने से जो आपकी गैस की लो है वो पीली हो जाएगी और धुआं आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके बर्तन काले होने शुरू हो जाएंगे।
1: अच्छा।
0: तो आपको जो प्लांट की जो फिटिंग करे खासकर गैस की पाइपलाइन की उसमें जहां वो सबसे नीची जगह है वहां पे एक वाटर रिमूवर आता है छोटा सा, वो 20 या 50 रुपए का होता है, अगर वो आप लगा देंगे तो आपको केवल एक बटन दबाना है, उसके दबाने से जो भी पानी को निकल जाएगा तो ये समस्या आपके में नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल, इससे से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर डवास, कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बायोगैस प्लांट से मिलने वाले गैस से जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें बदबू आती है, जबकि आपने बताया कि बायोगैस प्लांट अगर सही तरीके से बनाया गया हो तो बदबू नहीं आती है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
0: मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि ये हमारे किसानों की जो सोच है उसमें मैं हो सकता हूँ गलत सोच रहे हैं।
1: जी जी।
0: गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं आती है, केवल अगर हमने अपने बायोगैस प्लांट से लैट्रिन को लिंक किया हुआ है।
1: अच्छा।
0: या हम कहीं से वो जाते चीज डाल रहे हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में H2S गैस बनती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, अगर वो गैस बनती है तो थोड़ी सी बदबू आ सकती है और उसका भी प्रबंध हो सकता है। अगर हमारे पास हमने ऐसा यूज कर रहे हैं तो उसमें छोटा सा एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, उससे वो गैस भी रिमूव, जो खराब गैस वो रिमूव हो सकती है। अदरवाइज इस गैस में किसी प्रकार की बदबू नहीं होती और ना ही खाद में बदबू होती है। और गैस पे जो खाना बनाते हैं वो चूल्हे जैसा बनता है। गांव में एक भावना आती है कि जो ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है या रागी की रोटी है, मोटे अनाज वाली रोटियां, उनको बनाने के लिए चूल्हा जरूरी है।
1: जी।
0: लेकिन इसकी गैस पे चूल्हे जैसी रोटियां बन सकती हैं क्योंकि इसका जो चूल्हा है वो LPG के चूल्हे से काफी डिफरेंट है।
1: अच्छा।
0: साथ साथ में उसकी लो भी अच्छी आती है और इसमें जो आंच है वो भी ज्यादा होती है, तो इससे आपको शिकायत आपको रहेगी नहीं कि रोटी अच्छी नहीं बनी, रोटी अच्छी बनेगी और इसका चूल्हा भी अच्छा होता है। और इसके प्लांट से अगर आपने बहुत ज्यादा पशु रखे हैं तो गैस से आप प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस से जो आपका दूध है उसका मावा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, ये किस्म से जो घरेलू कुटीर उद्योग में भी काम आ सकता है।
1: जी बिल्कुल।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: और गोबर के अनुसार आप इस प्लांट बनाएंगे ज्यादा बेटर है, अगर आपके पास गोबर की मात्रा ज्यादा है तो मैं आपको कहूंगा कम से कम 20 घन मीटर का प्लांट बनाएं, जिसके लिए आपको 5 क्विंटल गोबर की हर रोज आवश्यकता होगी। इससे आप इंजन भी चला सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं और इसका जो खाद है वो लगभग 30 से 50 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। तो इस किस्म का प्लांट बनाएंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा फायदा रहेगा। अगर प्लांट के आकार की बात करें तो वो बना सकते हैं, और इस प्लांट के किस्म के जो प्लांट बनाएंगे उसकी जो लागत आएगी वो लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास आएगी, क्योंकि आप 20 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना रहे हैं और इससे गैस जो मिलेगी वो लगभग 100 आदमियों का खाना हर रोज उस गैस पे बन सकता है। तो 100 आदमियों का खाने का मतलब ये हो सकता है, अगर आपके परिवार में सदस्य कम है तो 5 आदमियों का खाना, जो बाकी जो गैस है उससे आप बिजली भी बना सकते हैं जनरेटर के थ्रू, उस गैस से आप कोई प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस का और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य उत्पाद है, गैस मुख्य उत्पाद नहीं है, गैस तो सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है।
1: जी जी।
0: जो आपकी जैविक खेती के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, और तो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे छोटे और मझोले किसान काफी हैं और वहाँ पे हमारे किसानों को इस किस्म की जरूरत भी है, तो उन किसानों को जरूर अपनाना।
3: जी हाँ बिल्कुल, बायोगैस से आपको फायदा ही होगा, इससे लाभ ही लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही कहीं कहीं कुछ किसानों को हमने देखा है जो बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने में करते ही हैं, साथ में जो जो खाद है, जो बायोगैस बनने के बाद जो खाद बाहर निकलती है वहां पर केचुए खुद ही आ जाते हैं, वहाँ आपको केचुए डालने की तक जरूरत नहीं होती है। और वहाँ पर अगर आप वहाँ का जो अवशेष निकलता जाता है, जैसे हमारा गैस बन गया, गैस बनने के बाद जो खाद निकलती जाती है, तो उसमें अपने आप वहाँ पे केचुए आ जाते हैं और केचुए खुद ही आपको जो अपना केचुआ खाद है वो उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल सकता है। खाद की जो गर्मी निकालने के लिए भी वो बहुत ही सहायक है। उसके बाद जो गैस है उसके हम खाना बना उसके साथ हम खाना बना सकते हैं, और जो उसका अवशेष बच रहा है जो ठंडी हुई घास उसको केचुए बहुत ही चाव से खाते हैं, और जो खाद जो बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कई गुना तक बढ़ जाती है। चर्चाओं का ये सिलसिला जारी रहेगा, पर यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: ब्रेक ने बाद एक बार फिर था बहुत बहुत स्वागत करिए हैं तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में किसान भाइयों आपू लगातार खेतीवाड़ी थी जोड़ेली घनी खरी महत्वपूर्ण बातों ने लीने आपू चर्चा करी रहा है तो इन चर्चा ने आगे बढ़ाता जाइए जानिए हजू खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण बातों ने
2: खेती किसान कर रहे हैं उनके खेतों के फसल के पोषक तत्व प्रबंधन में इसका क्या महत्व है।
3: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो आजकल तीन ही खादों को ज्यादा जानते हैं, डीएपी, यूरिया और कुछ लोग पोटास, और कुछ बहुत ही कम किसान ऐसे जिंक या दूसरी चीजों को जानते हैं। और क्योंकि सघन खेती की वजह से हमारी जो मिट्टी है उनमें इन पोषक तत्वों काफी कमी हो गई है और इनके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी भी कमी हो गई है। अगर हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें। और जब संतुलित मात्रा की बात आती है तो किसान को हम बताते हैं आपको ये करना है ये करना है, तो उसको किसान की समझ में नहीं आता कितना करें। तो किसान को जो दिखाई देता है तो यूरिया का लाभ सबसे ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए साधारणतर किसान यूरिया ज्यादा प्रयोग करते हैं और जिसकी वजह से फसलों में बीमारी और कीट का प्रकोप भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो बायोगैस सलरी है इसके अंदर पौधे को 16 से 17 जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो किसान को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है
2: जी, जी।
3: उसको केवल ये देखना है कि बेसल में यानी कि बुआई से पहले कितनी देनी है,
2: ठीक है,
3: और बुआई के बाद तो कुछ कंपनियां 1 या 2 घन मीटर के छोटे प्लांट जो हैं वो एचटीबी के भी बना रही हैं, यानी कि आपको बने बनाए मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने जो अपना जिला है अधिकारी उनसे संपर्क करें, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपके जिले में कौन कौन सी कंपनी के प्लांट उपलब्ध हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पशुओं की संख्या ज्यादा है, बड़ा प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप प्लांट स्वयं बनवा सकते हैं, उसमें भी आप अपने जिले के अधिकारियों के संपर्क कर सकते हैं या अथवा किसी अन्य तकनीकी आदमी से संपर्क करके आप अपना प्लांट बनवा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट बनवाएंगे उसकी लाइफ भी ज्यादा है, लागत कम होगी और वो आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनेगा
2: जी, जी।
3: तो आप उसको ठीक से हैंडल भी कर पाएंगे और जब बनाएंगे तो आपको जो बनाने वाला है वो आपको सारी बातें बताएगा कि इस प्लांट में कब और कितनी मात्रा में गोबर डालना है, कैसे इसका प्रबंध करना है, तो वो आप जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आप एचडीपी का भी प्लांट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपको पूरा समझाएगी बताएगी तो वहां से ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि इसके जो प्लांट बनाने वाली कंपनी है वो सभी निजी कंपनियां हैं तो किसी एक कंपनी का नाम लेना यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आप अपने जिला अधिकारियों से या अपने उनसे जो कृषि अधिकारी हैं या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करके उनसे लाभ उठा सकते। तो मैं आप संजय जी को बताना चाहूंगा कि आपके अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, क्योंकि आज हमारे जितने भी जिले हैं सभी में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध है। तो जो भी कृषि विज्ञान केंद्र आपके नजदीक संपर्क में हो, नजदीक से नजदीक हो, आप उससे संपर्क कर सकते हैं या आप अपने जिला के कृषि अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं या जिला के विकास विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आपको जानकारी मिल जाएगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा से भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। तो आप कहीं से भी जानकारी लें और आप प्लांट अवश्य लगाएं क्योंकि प्लांट आपके लिए काफी हितकर होगा, आपके लाभदायक होगा। और ये एक ऐसी तकनीक है जो वातावरण हितैषी तकनीक है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जिसका हमें बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और आज सुन रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट कमाने में भी इस तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है अगर हम इसका सही लाभ उठाना चाहें तो।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
4: तो बांस में कर सकते हैं, उसमें अलग अलग प्रजातियों का चुनाव करना पड़ता है। अगर उनका इलाका जो है 1000 मीटर के ऊपर की ऊंचाई का है तो उसके लिए पतले टाइप की जो बांस होती है वो होता है। और एक बांस अभी जो होता है वो थोड़े से मंडी में नीचे इलाके में 1000 या 1200 मीटर की ऊंचाई पे वहां पे मगर के नाम से प्रचलित बांस है, मोटा बांस है
2: जी।
4: और हो जाता है वो बर्फ भी सह लेने की क्षमता होती है, बहुत ही उम्दा किस्म का बांस है। साइंटिफिक नेम डेंडोकैलामस सोमदेवाई बोलती है। हाल के दिनों में एक भूटान बांस के नाम से प्रसिद्ध है, डेंड्रोकैलामस सिकिमियांसिस, जो बहुत ही अच्छा बांस है फर्नीचर बनाने के लिए। वहां दो तीन मोटे बांस की और एक बैम्बूसा निकल्स, तीन जातियों की खेती हो सकती है।
2: बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, आपसे जानना चाहेंगे कि बांस की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
4: बांस की अच्छी पैदावार करने के लिए किसानों को सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि आप सबसे सही समय पे इसको लगाएं। बरसात का जो मौसम है बांस लगाने का उपयुक्त समय होता है, और सबसे अच्छे पौधों का चुनाव करें, क्योंकि बांस में पहचानना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप छोटी सीडलिंग देंगे तो इवन हमारे जैसे वैज्ञानिक की धोखा खा जाते हैं, तो हमेशा ही उचित और बढ़िया जगह से, जो रिलायबल जगह होती है या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करके ही आप बांस का पौधा खरीदें या बांस के पौधे की बात जानकारी। FRI में ये पौधा बांस के बहुत सारी 16 से ज्यादा प्रजाति उपलब्ध है और किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो एक तो पहले प्रजाति का चुनाव है, दूसरा कहते हैं गड्ढा इसका 2x2x2 फीट, उससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस जो है सरफेस फीडर ही होता है। इसकी जड़ बहुत गहरी नहीं जाती लेकिन फैलती है, तो अगर शुरू में इसको बहुत अच्छा मिले तो तीसरे साल से ही बांस बहुत ही अच्छी मोटे किस्म का बांस निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप चौथे साल के एंड में या पांचवें साल के एंड में काट सकते अलग अलग उपयोग के लिए।
2: जी बिल्कुल डॉक्टर ठाकुर, इसके साथ ही हमें ये बताएं कि जो बांस है उनके अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस तरह से करना चाहिए, रोग व कीट का खतरा जो है वो कितना हो सकता है बांस के खेतों में?
4: जी हाँ, पोषक तत्व का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से इसमें जरूरी है। अगर कोई जैविक माध्यम से और जो हम नॉर्मल किसान रासायनिक खाद के साथ करते हैं, दोनों ही बताते हैं। बांस के लिए हम सबसे पहले कहते हैं कि गड्ढा एकदम समय पे बना लें, गर्मियों में बना लें तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बरसात में बना लें। साइज वही 2x2 फीट के गड्ढा बनाएं, और हर गड्ढे में आधा बाल्टी गोबर, गोबर मतलब कंपोस्ट की खाद डालें, और 100 ग्राम खली डालें, और 25 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP, अगर DAP नहीं है, सिंगल सुपर फास्फेट है तो भी लगभग 120 ग्राम के आसपास डालें, और 125 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। बांस को पोटास की जरूरत बहुत ज्यादा होती है
2: जी।
4: ये पहले साल के लगाने के समय में ही डालें, फिर अगले साल के जो मौसम आएगा आपका, जब बारिशें होती है थोड़ी सी फरवरी वाले में, तो फिर बांस में एक निराई गुराई करके उसमें आप कम से कम किलो भर जो हम केचुआ खाद बोलते हैं, और 100 ग्राम के आसपास खली, और 25 ग्राम यूरिया, ये तीन को मिक्स करके उसके चारों तरफ डाल दें। फिर यही चीज अगले बरसात में जो है, यानी हम 25 ग्राम यूरिया बोलते हैं बांस में खाद, हम नाइट्रोजन कम डालते हैं, और आधा बाल्टी जो कंपोस्ट खाद है, और 100 ग्राम खली, और 100 ग्राम DAP या 120 ग्राम SSP, और 125 से लेके 150 ग्राम तक म्यूरेट ऑफ पोटास डालें। एक्चुअली बहता हुआ जो नाला होता है, बांस में पानी रुकना नहीं चाहिए, पर बहता हुआ पानी बांस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैरायटी आपको हमने देखा है 6-7 वैरायटी बहुत अच्छा कर रहा है। आप अभी लगाइए बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमार्फा पंजाब में इसका, क्योंकि ये फर्नीचर के लिए और स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ मात्रा में बैम्बूसा बालखोआ लगाएं, हम अभी पंजाब में 3-4 किसानों को लगवा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा ग्रोथ उसका आ रहा है
2: जी।
4: तो आप तीन वैरायटी जो हमारे FRI में अवेलेबल है और भरोसेमंद भी है, मतलब हमने इसको अच्छे से सेलेक्ट करके इसकी अच्छी नर्सरी जी। बांस में आपको एक समस्या बताता हूँ कि बांस आपको पानी बहुत चाहिए, लेकिन 15 दिन से ज्यादा अगर पानी रुकता है तो बांस का ग्रोथ कम हो जाता है, क्योंकि बांस की जो जड़ें हैं वो जमीन के बहुत गहरी नहीं जाती। तो उसके क्रम में हम ये कहते हैं कि जहां जहां जल भराव है उसके मेड़ पे, मतलब जो बांध जैसा है
2: जी,
4: वो लगाएं, या फिर कई जगह हम लोग बोलते हैं कि JCV से बांध बना दें, जिससे कि बांस की कुछ जड़ें ऊपर की तरफ हो और वो सांस ले सके।
2: तो
4: अगर वो 2 से 3 महीने पानी वहां रुकता है तब हम उसको कहते हैं कि वहां बांस लगा, मरेगा तो नहीं लेकिन उसके उत्पादन में बहुत कमी आ
2: जाए। जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर ठाकुर बताएं हमें कि रोग और कीट का प्रकोप कैसा हो सकता है बांस के खेतों में, जिसके लिए किसानों को सचेत रहना चाहिए?
4: जी सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर बांस के पत्तों को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। बांस सिलिका से भरा होता है और इस सिलिका से भरे होने के कारण इसके प्रमुख रूप से बहुत ही कम जिंदा बांस में बहुत ही कम कीट और बहुत ही कम रोग आते हैं।
2: जी
4: जो भी इसमें रोग आता है वो सेकेंडरी होता है, मतलब कोई उसमें डैमेज हो गया तो वो बाद में आता है। तो अगर कोई प्रचलित अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है लेकिन हाँ जब खेती बाड़ी में इसका प्रचलन बढ़ेगा तो कुछ नए तरह के रोग आ सकते हैं। नॉर्मली हम दो चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, चूंकि आपने कहा था तो हम जब शुरुआत में लगाने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कवकनाशी कोई ना कोई लगा दें। हम सबसे जो हमारी प्रेफरेंस है वो है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम पेवेस्टीन या बहुत सारे नामों से मार्केट में आता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जब हम 2 ग्राम प्रति इसको तो चूंकि पाउडर फॉर्म में अगर होता है, अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो उतना ml प्रति लीटर के दर से करीब 5 लीटर का बना के यानी 10 ml प्रति लीटर का बना के हम एक गड्ढे में डालते हैं और ये पहले साल में बस
2: जी।
4: और दूसरा इसमें होता है दीमक का प्रकोप, क्योंकि बांस ये वुडी है, टिम्बर है, उसमें लकड़ी होती है तो दीमक का हो सकता है। तो जो भी दीमक के लिए हमारे साधारण प्रतिरोध इस्तेमाल किया जाता है
2: तो उसका जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ठाकुर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी है बांस की खेती के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: खाते हैं और चलते चलते बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर दबास आपसे जानना चाहेंगे बायोगैस प्लांट के स्लरी के बारे में, अगर आप देना चाहें।
3: मैं अपने सभी किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जो बायोगैस स्लरी 2 समय इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो फसल बोने से पहले जिसको हम बेसल कहेंगे, तो जितनी भी आपको स्लरी प्रयोग करनी है उसका लगभग आधा भाग बेसल में आप प्रयोग कर लेंगे, यानी कि जो पलेवा करेंगे उसके अंदर दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो भी स्लरी देनी है वो आपको प्लांट की ग्रोथ के आधार पर देनी है, यानी कि प्लांट जो पौधे का अगर 120 दिन की फसल है तो पहले 60 दिन तक की फसल देनी है, खाद देना है, 60 दिन के बाद खाद नहीं देना है। और यही टाइम होता है जिसमें पौधे को खाद की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे गेहूं है, गेहूं में पहली 3 सिंचाई पे आप इसका खाद दे सकते हैं। धान में लगभग 50-60 दिन की जब तक फसल होती है जब तक इस खाद को पानी के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन जो बड़ी मात्रा है वो बोने से पहले देनी है, जिससे कि जैसे हम फसल लगाएं तो उसको सही मात्रा में पोषक तत्व मिल जाए। और जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे फसल का जमाव भी अच्छा होता है और साथ साथ में उसका दूसरा लाभ ये होता है कि पौधा शुरू में जब स्वस्थ होगा तो उसमें किसी प्रकार की बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। किसान भाईओ आप ये लगातार खेतीवाड़ीना इना कार्यक्रम में खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारी ने जानियो है, आप ये जानियो है कि कम जो जैविक खेती है और गोबर गैस है तो अपना गोबर गैस अपन की कम बना भी सकिए और इनमें कई ना प्रकार ना गोबर गैस है और यह की कम तरीके थी आपड़ी हरू फायदेमंद हो सके। केम के किसान भाई आप जानिए है कि लकड़ी हमने मलवी थोड़ी सी मुश्किल है अने अलग अलग प्रकार ना जो बायोगैस है इनमें आप कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफो ले सकें। तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं ये भी एक बढ़िया मौको है हमारे किसान भाइयों और कि इन उपयोग करिए, जैसे गोबर है गोबर नो आप गैस में तीनों उपयोग कर जो खातर है ते बनवानी जो प्रक्रिया है ते भी थोड़ी सी फास्ट थी जाए इन्हीं द्वारा। तो किसान भाइयों आप करी सकिए और इना जो गोबर नकल है इना गोबर थी अगर आप केचुआ खाद बनावा मांगी तो भी तीनी जो गति है तीनमा भी बढ़ावो मळे से। तो किसान भाइयों आजना इना कार्यक्रम में आप ये घनी खेतीबाड़ी ना बारा में जाणियो अन समय पर भी आप खेतीवाड़ी से जोड़ेली हजू भी महत्वपूर्ण बातों ने लेने चर्चा करिए, लेकिन आजना इना कार्यक्रम में बस एतरूस आप फिर काल मुलाकात था है इना समय पर इतने बनेला रहो हमारी हाथे रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नी हाथे झाबुआ नी आवाज पर।

0: हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम के कलाकार हैं अजय अनंत पनगंती जी। अजय जी पुणे से हैं, बाकी सारी जानकारी इन्हीं से सुनते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका जन्म स्थान क्या है, आप कहां पैदा हुए थे, उस जगह के बारे में हमें कुछ बताइए जिससे हमें पता चले कि आपकी आवाज में ये सुरूर किस जगह से आया है।
1: मेरा जन्म स्थान पुणे है। पुणे के बारे में कुछ रोचक जानकारी अगर दी जाए तो किसी जमाने में ये साइकिल का शहर हुआ करता था। काफी मात्रा में साइकिल, कहा जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा साइकिल पुणे में ही थे। फिर बाद में टू व्हीलर का जमाना आया, टू व्हीलर की संख्या भी काफी हो गई, शायद टू व्हीलर भी ज्यादा ही थे पुणे में, है अभी भी। कार की संख्या भी काफी बढ़ी हुई है पुणे में।
0: तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को अजय जी के गाए हुए इस सुरीले से गीत से।

0: तो अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या कुछ रोचक है वो बताइए।
1: अभी मैं पुणे में रहता हूँ। मेरा जन्म स्थान कर्म स्थान यही है। और कुछ जानकारी दी जाए तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गढ़ किले फोर्ट जिसे हम कहते हैं वो आते हैं, जो हमारे वंदनीय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। और भी बहुत सारे रोचक जानकारी है, अभी जिसे वर्णन किया जाए तो काफी समय लग जाए।
0: तो फिर चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी आवाज में एक और गीत।

0: आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं, व्यवसाय में हैं या नौकरी में हैं, जॉब में हैं और कब से हैं?
1: हमारे फैमिली का कला क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान रहा है। धातु से जुड़े हुए काफी सारे कलाकृतियों का निर्माण हमारे यहाँ से हुआ है। फिलहाल हम उसी से जुड़े हुए ट्रॉफीज, मेमेंटोस, कप, शील्ड्स आदि मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। मैं इसी फैमिली से 7 जनरेशन से हूँ, 7वीं पीढ़ी है मेरी।
0: तो फिर चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी आवाज में एक और गीत।

0: आपको गाने का शौक कब से हुआ? मतलब आपको कब लगा कि आप गाना गाना चाहते हैं, गाना गाना अच्छा लगता है, लोग भी आपकी तारीफ करते हैं, कब महसूस हुआ आपको ऐसा और फिर आप चल निकले?
1: जैसे कि कला से हम बचपन से जुड़े हुए हैं, बचपन से ही संगीत का भी संगीत से भी लगाव रहा है।
0: तो लीजिए दोस्तों, हो जाए इन्हीं की आवाज का एक और सुरीला नगमा।

0: आपको संगीत में क्या क्या पसंद है, म्यूजिक में क्या पसंद है, किस तरह के गाने पसंद हैं, किस तरह की रचनाएं पसंद हैं, किस तरह का संगीत आपको पसंद है?
1: संगीत में बचपन से ही फिल्मी गाने पसंद करते आया हूँ और उसी को गाना, उसी को गुनगुनाते रहना बचपन से ये आदत लग गई। वैसे मैंने तबला सीखा हुआ है, गाना तो मैं सीख नहीं पाया, गाने सीखने की काफी इच्छा थी, लेकिन जितना भी सुन सुन के समझ पाया वही गा लेता हूँ।
0: तो फिर चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी आवाज में एक और गीत।

0: आपका सबसे पसंदीदा गायक कौन है या गायिका कौन है, और वैसा क्यों क्यों पसंद करते हैं आप उन्हें?
1: वैसे तो सभी गायक मुझे पसंद है, सभी गायकों के गायिकाओं के गाने सुनते रहता हूँ, लेकिन मेरे फेवरेट बचपन से रहे हमारे सभी के प्यारे किशोर दा, किशोर कुमार जी, और उन्हीं के गाने खास करके मैं गाता हूँ।
0: तो फिर चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी आवाज में एक और गीत।

0: और सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत या रचना कौन सी है आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: हमारे सभी के पसंदीदा गायक, प्यारे गायक किशोर दा, इन्हीं को ज्यादा सुनते आया हूँ, उन्हीं के गाने ज्यादा पसंद करता हूँ और उन्हीं के गाने ज्यादा करके गाता हूँ। उनके लगभग सभी गाने मैं पसंद करता हूँ, उनमें से एक गाना के दो बोल आपको सुनाना चाहता हूँ।

0: वैसे तो किशोरदा के काफी सारे गाने मैं पसंद करता हूँ, लेकिन अभी जो गाना मैंने सुनाया बस वो एक गाना ऐसे कि जिसमें जीवन के बारे में का सार पूरा आ जाता है उसमें।
1: तो लीजिए दोस्तों, हो जाए इन्हीं की आवाज का एक और सुरीला नगमा।

0: आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके शौक क्या हैं, जब भी आपको वक्त मिलता है तो आप क्या करते हैं उस वक्त में।
1: हॉबीज के बारे में बताया जाए तो काफी सारे हॉबीज मेरे हैं। उसमें से अगर खास करके दो का नाम लिया जाए तो रीडिंग मैं पसंद करता हूँ, पढ़ना, और घूमना मुझे बहुत पसंद है, वो भी खास करके बाइक पे, मोटरसाइकिल पे। और इसी शौक के वजह से मैंने ऑल इंडिया सोलो एक्सपीडिशन किया है मोटरसाइकिल पे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम भी है मेरा। ये 1998 में मैंने किया हुआ है रिकॉर्ड।
0: बेहतरीन दोस्तों, बेहतरीन। तो हमारे अजय जी रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, इन्हें बाइक पर पूरी दुनिया घूमने का शौक है। आइए सुनते हैं इसी शौकीन व्यक्ति की आवाज का एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुनने वाले आपके जैसे सिंगर्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें उत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि गाना गाना है, अगर वो भी अगर फिल्मी गाना गाते हैं, तो जो सिंगर का आप गाना गाना चाहते हैं उसे कम से कम 50-100 बार सुनिए, गाने को समझिए, जब जाके आप उसे ठीक तरह से गा पाओगे।

0: हमारे श्रोतागण जो आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने आपका प्रोग्राम आज सुना है, जिन्होंने आपकी गायकी आज सुनी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें?
1: सभी सुनने वालों को इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा संगीत सुनते रहिए। संगीत जीवन का एक ऐसा अंग है कि जब कभी आप सुनते हो तो आपको आनंद ही मिलेगा।
0: तो लीजिए दोस्तों, हो जाए इन्हीं की आवाज का एक और सुरीला नगमा।

0: आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। हमारे श्रोताओं को आपके गीत सुनकर जरूर बहुत मजा आया होगा, और मुझे तो जाहिर सी बात है आपसे बातचीत करके भी बहुत मजा आया। मुझे उम्मीद है हम लोगों की मुलाकात फिर होगी और आपके गाने आपके गीत हम सुनते ही रहेंगे। धन्यवाद।
1: हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप सभी से जुड़कर आपके इस प्रोग्राम में आकर। धन्यवाद, थैंक यू।

तो दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे। सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए। फिर मुलाकात होती है, सुनते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत सा एपिसोड आज के कलाकार का, जो आपका फेवरेट प्रोग्राम है, मैं लेकर हाजिर हूं। और जिस तरह के टैलेंट, प्रतिभा, गायिका आज हमारे साथ हैं, आप सुनेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा दैट यू वुड बी फ्लोटिंग ऑन द एयर, क्लाउड्स के ऊपर हैं आप। हमारे साथ आज है वर्षा राव जी। बाकी जैसा मैं हमेशा करता हूं, मेरा सिग्नेचर है और आज के कलाकार का भी सिग्नेचर है कि कलाकार अपने बारे में खुद बताते हैं। तो वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि हमारे सारे फैमिली मेंबर्स आज के कलाकार के आपको सुन रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ रहते हैं आप?
1: फर्स्ट नमस्ते समीर जी, थैंक यू नितिन जी फॉर इस फैमिली में मुझे इंक्लूड करना, आपने इंक्लूड किया
0: जी,
1: थैंक्स अ लॉट। एज फार एज प्रोफेशनली, आई वाज बैंकर, मैं बैंकर थी। फिर बैंक में थी तभी मैंने कंप्यूटर साइंस में भी पोस्ट ग्रेजुएशन की। फिर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था बैंक में काम करना, तो देन मैंने बहुत फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करके, बट माय हस्बैंड सपोर्टेड मी, मैंने बैंक रेजिग्नेशन देके फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग में कोर्स किया। आई वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट, बट अब तब, सो आफ्टर सो मेनी इयर्स इन द बैंक आई कुड नॉट डू आर्किटेक्चर, तो मैंने फैशन डिजाइनिंग में कोर्स किया और फिर खुद का बिजनेस शुरू किया। आई ओपन्ड अ बुटीक।
0: अच्छा।
1: And, yeah, and बहुत अच्छा ही चल रहा था, it was going very well, we were three friends, and then for some reasons, personal reasons, got married, one left the country, I was left alone, and during that time only my husband started a business into corporate interiors, interiors करते हैं companies का, residence का, so that was again aligning with my interest. So then I joined the company there, and as of today, I am a part of that company.
0: अरे वाह, that's very nice.
1: Yeah.
0: ये तो कुछ amazing सी चीज सुनाई दी, interior designing, architecture के साथ हमेशा हाथ से हाथ पकड़ कर चलते हैं, I understand that. लेकिन कंपनी डिजाइनिंग नाउ, दैट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, बड़ी मजेदार चीज है, क्या बात है। हम लोग अपने घर को डिजाइन कराते हैं, तो दोस्तों वर्षा जी कंपनी डिजाइन करती हैं, नाउ दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑफिसेज, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि देखिए इतना कार्बन उत्सर्जन होता है इतनी कंपनीज की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, हीटिंग, देन एयर कंडीशनिंग, एंड देन सो मेनी थिंग्स, आई अंडरस्टैंड,
1: एवरीथिंग।
0: तो बहुत खूब, ये बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो इतने टेक्निकल फील्ड से निकलकर वर्षा जी अपने पैशन को परस्यू करती हैं, गीत गाती हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और सुनते हैं ये गीत जो वर्षा जी ने हमारे लिए प्रिपेयर किए, हमारे लिए तैयार किए।

0: बढ़िया, बहुत ही प्यारी शुरुआत है। वर्षा जी चलिए, अब आपने अपने बारे में बता दिया कि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, बैंकिंग छोड़कर अब आर्किटेक्ट में आ गए, आर्किटेक्चर में आ गए। अब अपने संगीत के बारे में बताइए, कब शुरुआत करी आपने गाना गाने की, संगीत से मोहब्बत की, संगीत के साथ चलने की शुरुआत आपकी कब से हुई और किसने किया आपको मोटिवेट?
1: सब बचपन से ही म्यूजिक तो बहुत ही पसंद था
0: जी,
1: क्योंकि हम लोग चित्रहार देखते थे, तभी दूरदर्शन पे मूवीज देखते थे, तो म्यूजिक हमेशा आई स्टार्टेड डेवलपिंग एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक, लेकिन कभी मैंने सीखना सोचा नहीं था। लाइक आई सेड, मैंने बैंक में नौकरी की, फिर छोड़ दिया, फिर बिजनेस में गए, गाने सुनते थे, लाइव कॉन्सर्ट सुनने को बहुत अच्छा लगता था, मोर देन सिंगिंग सुनने को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। जगजीत सिंह का कॉन्सर्ट हो, ए आर रहमान जी हो, अभी अजय अतुल जी हो, देन क्लासिकल सिंगर्स हो, गजल सिंगर्स हो, तो सब सुनने को भी बहुत जाते थे। सीखना कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीखूंगी। देन वन ऑफ माई हजबेंड्स फ्रेंड्स वो कहीं सीखते थे, तो फिर माई हजबेंड एनकरेज्ड मी कि यू ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग, एंड दैट्स व्हेन आई जॉइन द एकेडमी, एंड एज ऑफ टुडे आई एम लर्निंग फ्रॉम आवर म्यूजिक सर।
0: बहुत खूब, अमेजिंग। तो इस तरीके से वर्षा जी की संगीत प्रेम की, उनकी यात्रा की शुरुआत हुई दोस्तों, आपको पता चला। और जाहिर सी बात है, बहुत क्लियर कट सुनाई दे रहा है कि वर्षा जी के हस्बैंड ने उनको बहुत मोटिवेट किया है कि वो सीखें, आगे बढ़ें इस चीज़ में, और उसी की वजह से हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उसकी वजह से आज हमें वर्षा जी के गीत सुनने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद उठाएं और फिर वापस आएं वर्षा जी के पास।

0: बहुत सुंदर गायकी। चलिए एक छोटी सी चीज और बता दीजिए अपने संगीत के बारे में ही, किस तरीके का संगीत आपको पसंद है? देखिए मैं मानता हूँ जो भी म्यूजिक प्रेमी होता है वो 99.99% यही कहता है जी मुझे तो सारी तरीके का म्यूजिक पसंद है। नदी के बहती हुई आवाज, हवा की सरसराने की आवाज, झिंगुरों के बोलने की आवाज, आफ्टरऑल ये सारा भी म्यूजिक ही है। लेकिन फिर भी जब बफे लगता है हमारे सामने तो कोई एक डिश हम चूज करते हैं ना, तो आप कौन से संगीत को अपने दिल से पसंद करते हैं? फर्ज कीजिए क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सूफी, फोक, गजल, मराठी, कन्नड़ म्यूजिक, कर्नाटका म्यूजिक, या फिर जैज, या फिर रॉक, क्या?
1: सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज गजल एंड फोक। फोक तो मुझे दिल से पसंद है। जो हम लोग छुट्टियों में जाते थे मेरी ग्रैनी के यहाँ पे, तो शी यूज्ड टू लिव इन अ विलेज, तो गांव में किसी का बर्थडे हो, किसी के घर में पूजा हो, तो वो लोग जोर जोर से लाउड स्पीकर पे गाने बजाते थे। एंड दोज यूज्ड टू बी वेरी मच, यू नो, आई वाज इन महाराष्ट्र, तो वेरी मच महाराष्ट्रियन जो फोक म्यूजिक है, कोली गीत है, या अभंग है हमारे जो जो संत के जो, तो ऐसे से, तो आई यूज टू गेट मोर, आई वाज अट्रैक्टेड टू दैट म्यूजिक, एंड देन फिल्म म्यूजिक ऑफ कोर्स, एंड गजल्स, यस सर, गजल्स भी, जगजीत जी, चित्रा जी, यस,
0: ओके, ब्यूटीफुल। जैसे आपने बताया आपको अभंग पसंद है, फोक, आई एम वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन फोक म्यूजिक। बड़ी मजेदार बात है कि कोइंसिडेंटली अभी तक हम लोगों ने फोक म्यूजिक के ऊपर कोई प्रोग्राम हम नहीं बना पाए हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि रेडियो एसएन पर और रेडियो टांटिया भील पर एक फोक म्यूजिक का प्रोग्राम भी बने। अगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप उसमें आप शुरुआत करना चाहें एक नए विधा की हमारे रेडियो स्टेशन पर, तो बड़ा अच्छा लगेगा फोक म्यूजिक को लेकर। आप गाने इकट्ठे कर लीजिए या जो भी संगीत है आपके पास उसे इकट्ठा कर लीजिए, उसके बारे में हमें बताइए और हम लोग फोक म्यूजिक का एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए तब तक वर्षा जी ने जो मेहनत की है, हमारे लिए जो गीत तैयार किए हैं दोस्तों, पहले वो सुने और उसके बाद हम लोग वापस आए वर्षा जी को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जानने के लिए।

0: बहुत खूब, बहुत खूब वर्षा जी। चलिए अब थोड़ा सा ना अपने बारे में बताइए। आपके म्यूजिक के बारे में बात हो गई, आप बैंकर थे फिर आर्किटेक्ट बनना चाहते थे और अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, सब पता चल गया। अब थोड़ा सा आपके डीप डाइव करते हैं, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी शख्सियत में, है ना। आज से 10-20 साल पहले, आज से 20 साल पहले आपके व्यवहार के अंदर ऐसा क्या था, थोड़ा सा सोच के बताइएगा, टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके व्यवहार में ऐसा क्या था जो आज नहीं है, मतलब 20 साल में वो क्या बदल गया, आप कितने मैच्योर, किस लेवल पर, किस एस्पेक्ट में हो गए, थोड़ा सा बताइए ना।
1: सर, 20 इयर्स बैक वी मेट आवर स्पिरिचुअल गुरु, उनका नाम है स्वामी सुखबोधानंद जी।
0: जी,
1: ही रन्स अ ट्रस्ट कॉल्ड एज प्रसन्ना ट्रस्ट इन बैंगलोर।
0: ओके,
1: तो वी आई वॉज ब्रॉट अप, मी एज अ पर्सनली, जहाँ हम बड़ों को उल्टा जवाब नहीं दे सकते।
0: ओके,
1: हम बहुत आवाज कम से छोटी आवाज करके बात करे। माई डैड वॉज अ मोस्ट लविंग डैड, बट दीज वर सम थिंग्स विच वर इनकल्केड इन अस, यू नो, इन द फैमिली। तो आई वॉज नॉट एक्सप्रेसिव।
0: ओके,
1: हमें ये स्वामी जी का, हमने एक प्रोग्राम जिसका नाम था लाइफ अटेंड किया। हाँ, एंड लाइफ का मतलब है लिविंग इन फ्रीडम एंड इंक्वायरी वॉज द नेम ऑफ द प्रोग्राम।
0: वेरी नाइस।
1: एंड देयर ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू मेडिटेशन, ही इंट्रोड्यूस्ड, ही वॉज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑल्सो। तो वो, और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम सर, वी हैड टू गो एंड कलेक्ट द सर्टिफिकेट्स।
0: Okay.
1: So, and when I go to collect the certificate from my seat to where Swamiji is standing, I have to dance and go.
0: Oh, all right, that's
1: so
0: nice.
1: So, I was so shy, and this was what a transformation I had to bring in me to do this. And then Swamiji aur hamari itni gehra rishta ho gaya, wo hamare जब प्रोग्राम्स होते थे तो हमारे साथ रहते थे। नाउ यस्टरडे ओनली ही हैज लेफ्ट फॉर यूएसए, या फॉर प्रोग्राम्स देयर। तो उनको, उन्हें मिले, फिर उनके ये जो प्रोग्राम्स से हम ऑर्गेनाइज करने लगे बॉम्बे में रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स। तो धीरे धीरे करके किस तरह से हम चेंज आ गया, इट्स लाइक एक एक लीफ गुलाब की पंक्ति, यू नो, इट स्टार्ट्स ओपनिंग अप, यू नो, वैसे धीरे धीरे करके मुझमें बहुत चेंज आ गया, जो विच आई डिडंट नोटिस आल्सो, बट इट वाज अ वेरी पॉजिटिव चेंज फ्रॉम व्हाट आई वाज टू व्हाट आई एम टुडे।
0: वाओ, आई एम रियली रियली इंप्रेस्ड वर्षा। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था वर्षा जी से, और ये सोचा था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रूटीन में लोग लड़खड़ा जाते हैं, उतना गहराई से सोच नहीं पाते हैं, लेकिन वर्षा जी ने मोस्ट एप्रोप्रिएटली इस बात का जवाब हमें दिया है। अगर आपने गौर से उनके जवाब को सुना हो ना, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है वर्षा जी ने, जो सच बोलूं सबके अंदर होता रहता है, लेकिन हम ना रियलाइज नहीं कर पाते, हम उसको पकड़ नहीं पाते, होता हमारे अंदर सब में है, लेकिन बस यही तो सीखना है। आज वर्षा जी ने हमें ये चीज़ सिखाई है, इस चीज को पकड़िए दोस्तों। और चलिए, म्यूजिक का साथ देते हुए वर्षा जी के इस प्यारे से गीतों का आनंद उठाइए, एंड देन वी विल कम बैक।

0: बहुत खूब, बहुत ही खूब वर्षा जी. ओके चलिए वर्षा जी, आप तो जितना मैंने अभी तक आपकी बातचीत से, आपके गीतों से मुझे सुनाई दिया और मेरे दोस्तों को भी सुनाई दिया होगा 100%, मैं तो सिर्फ एक एंकर हूँ, आपको उनसे जोड़ने का काम कर रहा हूँ, एक मैसेंजर हूँ, एक कोरियर वाला हूँ, लेकिन फिर भी जितना समझ पाया हूँ अपनी छोटी बुद्धि में, दैट यू आर अ लाइव वायर्ड परफॉर्मर. तो एक और दिमाग में सवाल उछल रहा है, वो आपसे पूछ लेता हूँ चलते चलते.
1: Yes, sir.
0: आपने बैंकिंग, देन आर्किटेक्चर, देन कॉरपोरेट, यू नो वो क्या बोला, डिजाइनिंग है ना, ये सब किया. उसके बाद आपने क्लासिकल और म्यूजिक को सीखने की भी कोशिश की, और फिर आपने स्वामी जी के बारे में भी बताया, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताया. तो अब आपके नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आप अपने म्यूजिक को अगले 5 सालों में किस लेवल पर ले जाना चाहते हो? व्हाट आर योर प्लान्स अबाउट योर म्यूजिक?
1: म्यूजिक इज समथिंग व्हिच इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, ना उसमें फील बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: एब्सोल्युटली,
1: इट्स लॉट ऑफ, देयर इज अ डिवोशन इन म्यूजिक, देयर इज सो मच. तो मैं दिल से गाती हूँ और उसको और भी फील करके समझ के उसको गाना चाहती हूँ. और टू टेल यू फ्रेंकली, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग माय सॉन्ग्स. आई हैव नेवर रिकॉर्डेड एनीथिंग.
0: वेरी क्यूट. ओके,
1: सो आई विल, मे बी आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग मे बी 4-5 songs. दैट कैन बी माय जर्नी हेंसफोर्थ इन अ ईयर, 4-5 songs. वैरायटी, जैसे आपने फोक का बोला, आई विल ट्राई टू लिसन टू फोक सॉन्ग्स, ट्राई टू लर्न हाउ टू सिंग दोज सॉन्ग्स. So, and I don't want to plan. I want to plan only for 1 or 2 years at a time, not more than that.
0: Okay. देखो वर्षा, पॉइंट इज कि आई टू हैड बीन वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स फॉर क्वाइट सम टाइम, फॉर 35 years आई वाज इन कॉर्पोरेट, सो आई नो हाउ कॉर्पोरेट्स थिंक एंड वर्क. और आप तो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हो, तो आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, वो लोग 2-3 साल की प्लानिंग करके चलते हैं, है ना, सो दैट दे कैन यू नो एम टू ग्रो. सिमिलरली मैं आपको सिर्फ इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सही कहा, 1 साल में 2 साल में 5 साल में कैसे आप अपने संगीत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओगे, बस मैं सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ आपको. और आपकी बात में बड़ी ही प्यारी बात सुनाई दी मुझे, दैट इज फोक. ये जमाना ही ऐसा है कि हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, हर चीज में इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. आई नॉट टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हियर, लेकिन बहुत इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. यंग जनरेशन कई कई चीजों को अलग अलग रूप में दे रही है. तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया होगा आपका कि आप फोक को, फोक म्यूजिक को जिंदा करो वापस से. आपने अभंग की बात की, मेरे बहुत सारे लोगों से अभंग सुना, मैं कलाकारों से, मतलब मैंने अभंग नहीं सुना है, अभंग शब्द सुना और सुन के बड़ा अच्छा लगता है. तो आप उसको डेवलप करो ना कुछ, मतलब यू क्रिएट योर ओन सिग्नेचर फोक में, अभंग में, व्हाई नॉट.
1: So I'm learning Hindi also and I'm learning Marathi music also.
0: That's beautiful.
1: तो मराठी में ये सब आ जाता है, अभंग आ जाते हैं, फोक आ जाता है.
0: That's very nice. तो चलिए दोस्तों, वर्षा जी का तो प्लान सेट हो गया, आपका क्या प्लान है? चलिए ना, तब तक म्यूजिक सुनते हैं, गीत

0: बहुत खूब वर्षा जी, हम अपने प्रोग्राम की उस जगह आ गए जहां पर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज हमारे सभी आज के कलाकार मेंबर्स से बात कीजिए। जो भी दिल में आपकी बात हो, कोई संदेश हो, कोई मैसेज हो, कुछ भी बात है जो आप दिल से कह देना चाहती हूँ, कह दीजिए।
1: सर, मैंने बोला ना, हमारे जो स्वामी जी है तो उनके ट्रस्ट का एक मिशन स्टेटमेंट है सर, विच इज विंग्स ऑफ फ्रीडम विथ रूट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, इफ यू वॉन्ट टू बी सिर्फ फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम की बात करते हैं, मैं ये करना चाहूंगा, मैं वो करना चाहूंगा, यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, बट देन दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ इज अ लिटिल शैलो। फिर अगर सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहीं फोकस करते हो, देन ऑल्सो योर लाइफ इज नॉट वाइब्रेंट, यू मे गो इन टू डिप्रेशन बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक टू डू। सो वेर देर इज अ बैलेंस, वेर देर आर विंग्स ऑफ फ्रीडम and roots of responsibility, जब ये balance हो, when we try to develop इस तरह का combination, I mean this is the insight that जो मुझे मिला स्वामी जी से, and unconsciously उसी I've tried to work towards it, and I would love के my family, this family, new family, people try to inculcate this attitude in their
0: राइट
1: लाइफ।
0: वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो जाहिर से बात है, बड़ी क्यूट सी, बड़ी ही क्रिस्प और बहुत ही मीनिंगफुल टीचिंग हमें सामने दिखलाई दे रही है। दैट यू गो अहेड, फ्लाई, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यू शुड बी रूटेड। क्योंकि पैरों के नीचे जमीन ना हो तो फिर फ्लाई करने का मतलब नहीं है। कोई भी पक्षी उड़ता भी है ना तो वो जमीन पर वापस आता भी है। वाओ, चलिए दोस्तों, वर्षा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनके प्यारे गीतों के लिए, उनके विचारों के लिए। वर्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू
1: समीर जी, थैंक्स अ लॉट।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।